1.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्स और FM 102 और FM 103.6 MHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 30वीं तिथि तदनुसार दिनांक 20 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी का स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। सुबह के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: 跟史达森。
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये दो दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमरीका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा

0: करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 kHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना।

गोविंद मोल, इसका तो अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा मोल लिया। जब भी कुछ खरीदा जाता है तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है, तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में। तो मीरा का

श्रोताओं, इस भजन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब यहीं पर संपन्न होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने स्वर सुने अनुराधा पौडवाल, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, कविता कृष्णमूर्ति और अनूप जलोटा की।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीतमय प्रसारण।

राजा जनक की यज्ञशाला में अपने को वीर तथा पराक्रमी समझने वाले राजे महाराजे शिव के धनुष को करोड़ों प्रकार से उठाने की चेष्टा कर असफल लज्जित हो अपने अपने स्थान पर वापस जा चुके हैं। तब 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाने की चेष्टा की, किंतु शिव का धनुष है जिसे उठाना तो दूर, वे उसे तनिक डिगा भी नहीं सके। एक एक कर सभी वीर तथा पराक्रमी राजे महाराजे अपनी कीर्ति और वीरता गंवाकर उसी प्रकार उपहास के पात्र बन गए जैसे वैराग्य बिना सन्यासी हंसी का पात्र बन जाता है। राजा जनक के मन में संशय पैदा हुआ।

क्यों उन्होंने ऐसा प्रण ठाना जिसे सुनकर न केवल द्वीप द्वीप के राजा आए वरन मनुष्य रूप धारण कर देवता तथा दैत्य भी उपस्थित तो हुए, किंतु धनुष तोड़कर सीता के हाथों जयमाल पहनने वाले को विधाता ने मानो रचा ही नहीं। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे तोड़ना तो दूर, कोई भूमि पर ही उसे हिला भी नहीं सका। जनक जी की अकुलाहट नैराश्य में परिणत हो गई। ब्रह्मा ने सीता के ललाट में विवाह शायद लिखा ही नहीं। राजा जनक के निराशा भरे वचन सुनकर उपस्थित समाज तो खिन्न हुआ, किंतु लक्ष्मण की भ्रिकुटि तन गई, होठ फड़कने लगे और क्रोध से आंखें लाल हो आईं। यदि उन्हें राम की आज्ञा मिले तो वो धरती को गेंद के समान उछालकर कच्चे घड़े की भांति फोड़ दें, फिर इस पुराने धनुष की तो बिसात ही क्या है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का और मुख्य स्वर श्रीकांत परगांवकर का। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए पर्यावरण चेतना का कार्यक्रम आबोहवा। आज की लघु वार्ता का विषय है पर्यावरण संरक्षक मधुमक्खियां। मनुष्य जैसे जैसे विकसित हुआ वह अकेला पड़ता गया है। इंसानों की पिछली पीढ़ियां जब विज्ञान को इतने अवैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल नहीं करती थी, तब हम प्रकृति के उपकरणों के सहारे प्रकृति के संदेशों को ज्यादा आसानी से समझ लेते थे। लेकिन हम जितने वैज्ञानिक हुए उतना ही हमने अपने उपकरणों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। कुछ दशकों पहले तक कई तरह की चिड़ियों के घोंसले व मधुमक्खियों के छत्ते हमारे घरों पर या आसपास के क्षेत्र में बहुतायत की मात्रा में दिखाई पड़ जाते थे, किंतु ना तो वे घनी झाड़ियां और पेड़ ही बचे हैं और ना ही उन पर अपना जीवन यापन करने वाले जीव जंतु। खेतों की मेड़ों पर उगी झाड़ियों व बड़े वृक्षों की ऊपरी शाखाओं पर लगने वाले छत्तों में से टपकते हुए उस शहद को कोई कैसे भूल सकता है, जिसकी मिठास आज भी याद आने पर स्वतः ही आभासित हो जाती है। पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभाने वाली मधुमक्खी प्रकृति द्वारा रचा हुआ एक ऐसा जीव है जो अपने शांत तथा लगातार चलते रहने वाले स्वभाव के कारण सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे

कई प्रकार के गुणों की खान भी कहा जा सकता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य व संतुलन बनाने के लिए लगातार इस डाली से उस डाली, इस फूल से उस फूल तक चलते हुए प्रेम व समर्पण का संदेश देना इसका मुख्य कार्य है। किंतु आज के इस प्रदूषित वातावरण के कारण इस प्राणी ने अपना निवास स्थान ही बदल लिया है। अब यह समतल व आवासीय क्षेत्रों से दूर पहाड़ी व नदियों वाले स्थानों की ओर पलायन कर चुकी हैं। जब मनुष्य को इनके दूर होने का आभास हुआ कि ये हमारे लिए और हमारी खेती के लिए बहुत आवश्यक है, तब इसके विकल्प के रूप में मनुष्य ने मधुमक्खियों की कुछ प्रजातियों को अपने घरों या खेतों पर पालना शुरू कर दिया है। मधु, परागकण आदि की प्राप्ति के लिए मधुमक्खियां पाली जाती हैं। यह एक कृषि आधारित उद्योग बनता जा रहा है। मधुमक्खियां फूलों के रस को शहद में बदल देती हैं और उन्हें अपने छत्तों में जमा करती हैं। जंगलों से मधु एकत्र करने की परंपरा लंबे समय से लुप्त हो रही है। इसके विपरीत बाजार में शहद और इससे बने उत्पादों की मांग भी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते यह एक उद्यम के रूप में स्थापित हो चला है। मधुमक्खी पालन से अनेक लाभ प्राप्त हो रहे हैं, जैसे पुष्प रस व पराग का सदुपयोग, शुद्ध शहद, मोम उत्पादन, मौनी विष की प्राप्ति, बगैर अतिरिक्त खाद, बीज, सिंचाई एवं शस्य प्रबंधन के मात्र मधुमक्खी के मौन वंश को फसलों के खेतों व मेड़ों पर रखने से कामेरी मधुमक्खी के पर परागण प्रक्रिया से फसल, सब्जी एवं फलोद्यान में 1.5 से 1.5 गुना उपज में बढ़ोतरी हुई है। मधुमक्खी उत्पाद जैसे मधु पराग के सेवन से मानव स्वस्थ एवं निरोगित होता है। शहद एकत्र करने के लिए पारंपरिक तरीके में मधुमक्खियों के जंगली छत्ते नष्ट कर दिए जाते हैं। इसमें मधुमक्खियों को बक्सों में रखकर और घर में शहद उत्पादन कर रोका जा सकता है। मधुमक्खी पालन का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खियां कई फूल वाले पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई पहाड़ी स्थानों पर जहां परागण के लिए कोई विकल्प नहीं होता है, वहां इनके द्वारा ही परागण किया जाता है। लगभग सभी फसलों में फूल आने पर परागण की प्रक्रिया में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं मधुमक्खियों की होती है। इस प्रकार ये मधुमक्खियां भी पर्यावरण के विकास में तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में कई तरह से हमारी सहयोगी है। यदि हम इनका संरक्षण करेंगे तो ये हमारे प्रदूषित होते पर्यावरण व उससे होने वाली कई समस्याओं से बचने में हमारी मददगार साबित होंगी। अभी श्रोता सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षक मधुमक्खियां, इस विषय पर लघु वार्ता कार्यक्रम आबोहवा में। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोता ये प्रसारण सुन रहे हैं FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलो हर्ट्ज के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप के जरिए। आइए कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आपको जानकारी देते हैं हमारे आज प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। श्रोताओं इस सभा में सुबह 8:15 पर सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं और सर्जरी से निदान। डॉक्टर मनीष अग्रवाल हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। सुबह 9:30 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज चर्चा का विषय रहेगा डिजिटल दुनिया से छीनती मानसिक शांति। साथ ही साथ एक भेंटवार्ता आपको सुनाएंगे खतरे में गुंजन, ये रहेगा भेंटवार्ता का विषय। जानकारी देंगे कैसे हो ऊर्जा संरक्षण, इस विषय पर भी, और बहनों के लिए होंगे कुछ टिप्स।

0: संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर और सुबह 9:10 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दोपहर 12:00। और इस बीच आप लगातार जुड़े रहेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों के साथ। उसके बाद हमारे केंद्र से शाम 5:00 सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का संवाद होगा उपभोग न होकर उपयोग करने की प्रवृत्ति बढ़े, ये रहेगा आज का संवाद। और रंग रंगीलो राजस्थान सेगमेंट में आज आपको जानकारी दी जाएगी जूनागढ़ का किला इस बारे में। और नॉलेज कॉर्नर में विश्व मधुमक्खी दिवस और सुमित्रा नंदन पंत की जन्म जयंती इन विषयों पर बातचीत की जाएगी। रोजगार सूचनाएं होंगी आपके लिए, होंगे करंट अफेयर्स। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुन सकेंगे शाम 7:00। आज चर्चा का विषय विश्व मधुमक्खी दिवस। साथ ही साथ आज का ये कार्यक्रम रहेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम। श्री अतीश कुमार शर्मा हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे और चर्चा होगी किसानों के लिए कृषि विभाग की योजनाएं इस विषय पर। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सुनिएगा शाम 7:00 से 7:30 तक कार्यक्रम चौपाल। और कार्यक्रम चौपाल के बाद लेकर हाजिर होंगे आपके लिए लोक संगीत। और लोक संगीत के बाद रात 8:00 से 8:45 तक यानी 8:45 तक सुनिएगा चित्रपट संगीत। नौ बजे से 10:00 तक एक और फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे आज के कलाकार। आज के कलाकार होंगे कुणाल गांजावाला। और सभा के अंत में रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम विवरण हमारी आज की सभा का। और आपको बता दें अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:00 सुनिएगा कार्यक्रम नमस्कार कोटा। अभी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचारों का समय हो चला है, तो आइए आप और हम रुख करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और प्रतीक्षा करते हैं संस्कृत में समाचारों की।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं हरित प्रौद्योगिकीं नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं सम्बोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च

श्रोताओं, सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि अपनेपन का एहसास भी है, ताकि रिश्ते भी जिंदा रहें और यादें बनी रहे। हर सुबह एक नया अवसर है कुछ पाने का, कुछ नया सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। तो एक अच्छी सोच के साथ शुरू कीजिए आज का दिन आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल के साथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है नमस्कार कोटा, और स्वीकार कीजिए अपनी साथी सीमा का प्यार भरा नमस्कार। और नमस्कार के साथ लीजिए सुनिए आज का विचार। जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, सुन रहे हैं ना आप? जी हाँ, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, होते भी हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे आपको संतुष्टि मिले या आपका मन खुश हो और दूसरों को कष्ट बिल्कुल भी ना हो। एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, होते भी हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट ना हो। और इसी सुंदर विचार के साथ अब बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

श्रोता सुन रहे हैं अपने दिलों की सुरीली धड़कन आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल और इस समय आप जुड़े हुए हैं प्रोग्राम नमस्कार कोटा के साथ। और श्रोताओं लीजिए अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं और पर्यावरण से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। पर्यावरण

संतुलन में हमारी क्या भूमिका है, इस विषय पर भी बात करते हैं। पर्यावरण प्रकृति का वो अनमोल तोहफा है जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, हरे भरे पेड़ पौधे, नदियां, पर्वत और जीव जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है उसके संरक्षण की। जब प्रकृति के ये सभी तत्व संतुलित रूप से कार्य करते हैं तो पर्यावरण संतुलित रहता है, पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। लेकिन आज बढ़ते हुए प्रदूषण, पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गर्मी, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और अनेक बीमारियों के रूप में हम देख भी रहे हैं। ऐसे समय में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हम सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयास करके पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकते हैं। सबसे पहले हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और उनकी देखभाल भी करनी है। ये नहीं कि पेड़ लगाए और बस फिर उन्हें देखा ही नहीं, देखभाल ही नहीं कि उनकी देखभाल भी करनी है और देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं ये हम सभी जानते हैं और वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। तो ये कितना जरूरी है, अब इसकी आवश्यकता को और इसके महत्व को हम सब समझते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ ये सब चीजें होती चली जा रही है। लेकिन फिर भी हमें छोटे छोटे प्रयास तो करने ही होंगे। पानी और बिजली का अनावश्यक उपयोग रोकना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। यदि हम आवश्यकता अनुसार ही पानी और बिजली का उपयोग करें तो प्राकृतिक संसाधनों की बचत की जा सकती है। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े या कागज के बैग का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और इसके अलावा हमें अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। कचरा इधर उधर फेंकने की बजाय उचित स्थान पर डालना चाहिए और गीले तथा सूखे कचरे को अलग अलग करना चाहिए। और ये हम देख भी रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में जो कचरा उठाने वाली गाड़ियां आती है उनमें भी सरकार की ओर से हमें ये सुविधा दी गई है कि हम गीला कचरा अलग डालें और सूखा कचरा अलग डालें। वाहनों का कम उपयोग करके साइकिल चलाना या पैदल चलना भी प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है, होता है और हमारे स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। हमें दूसरों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना चाहिए, क्योंकि सामूहिक प्रयासों से ही बड़ा परिवर्तन संभव है। विद्यालयों, समाज और परिवारों में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना समय की बड़ी मांग बनती जा रही है। यदि आज हम प्रकृति की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण नहीं मिल पाएगा। पर्यावरण संतुलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें ये समझना होगा कि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानव जीवन सुरक्षित रहेगा। तो यही कहा जा सकता है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि हर व्यक्ति अपने स्तर पर ईमानदारी से प्रयास करे तो पृथ्वी को फिर से हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही भविष्य में बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाती है। इसलिए हमें आज से ही पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार कोटा FM 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं और इस समय आपका और हमारा साथ बना हुआ है कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। श्रोताओ आज है विश्व मधुमक्खी दिवस। विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता को बनाए रखने में मधुमक्खियों और उन और अन्य परागणों के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आपको बताते हैं कि ये दिन मनाने के लिए आज ही का दिन क्यों चुना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सन 2017 में इस दिवस की घोषणा की गई थी और पहली बार ये 20 मई 2018 को मनाया गया। 20 मई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इसी दिन आधुनिक मधुमक्खी पालन के जनक माने जाने वाले एंटोन जानशा का जन्म वर्ष 1734 में आज के दिन हुआ था। श्रोताओं इसके महत्व की बात करें तो हमारे भोजन का आधार कहा जा सकता है क्योंकि हम जो भोजन करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा विशेष तौर पर फल और सब्जियां और जो नट्स हम खाते हैं मधुमक्खियों और अन्य परागणों पर निर्भर करता है। पर्यावरण संरक्षण इसके सुरक्षा में भी मधुमक्खियां फूलों के परागणों में मदद करती है जिससे पौधों का प्रजनन होता है और जंगलों व हरियाली का विस्तार होता है। हम देख ही रहे हैं कि आजकल कीटनाशक पदार्थों का उपयोग असीमित तरीके से किया जा रहा है। कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग जलवायु

0: परिवर्तन और इनके आवास छिन जाने के कारण मधुमक्खियों की आबादी तेजी से घट रही है, जिन्हें बचाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसी क्रम में मधुमक्खी दिवस पर अक्सर दुनिया भर में कृषि और पर्यावरण संगठनों द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और जैविक खेती अपनाने और इसके संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम और वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। और इसी क्रम में श्रोताओं, हमने फोन लाइन के जरिए जोड़ लिया है डॉक्टर हरिप्रसाद मेघवाल जी को, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एवं परियोजना प्रभारी मधुमक्खी पालन कृषि विश्वविद्यालय कोटा से हैं। आइए उनसे इसी विषय पर बात करते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: स्वागत करते हैं डॉक्टर हरिप्रसाद मेघवाल जी का कार्यक्रम नमस्कार कोटा में। हेलो, आपको आवाज आ रही है?
1: हाँ आ रही है मैडम
0: जी। साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: और सबसे पहले आपको विश्व मधुमक्खी दिवस की बधाई देना चाहेंगे।
1: आपको भी।
0: जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन का हमारे कृषि और पर्यावरण में क्या महत्व है?
1: देखो, मधुमक्खी पालन का बहुत महत्व है। एक तो हमारे को इससे उपज मिलती है
0: जी,
1: उपज में बढ़ोतरी होती है। ये पॉलिनेशन करती है मधुमक्खी, तो उससे किसान भाई जो मधुमक्खी पालन कर रहे उनको तो कई सारे उत्पाद मिलते हैं, जैसे शहद है, मोम है, प्रोपोलिस है, बी वेनम है, रॉयल जेली है
0: जी,
1: पराग है, इस तरह के उत्पाद मिलते हैं। और जो मधुमक्खी पालन नहीं कर रहा है उसको भी उत्पादन में वृद्धि होती है, ये परागण करती है जिसके द्वारा।
0: जी जी जी। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे आज के समय में किसानों के लिए मधुमक्खी पालन किस प्रकार अतिरिक्त आय का अच्छा साधन बन सकता है?
1: देखो, मधुमक्खी पालन में आय का अच्छा साधन बनता जा रहा है, क्योंकि आज खेती ये जो मशीनों के द्वारा होती है और किसान के पास बहुत समय मिल जाता है
0: जी,
1: तो उस समय का अगर सदुपयोग करके मधुमक्खी पालन करता है तो वो अपनी आय बढ़ा सकता है। साथ साथ किया जाने वाला व्यवसाय है और खेती के जिन्हें जो फल उसमें मिलता है उस समय का इसमें सदुपयोग करके मधुमक्खी पालन कर ले। बस इसमें यही कि थोड़ा सा माइग्रेशन करना पड़ता है, जैसे अपने यहाँ पे फूल नहीं है तो फिर बाहर ले जाना पड़ता है। सर्दी का टाइम अपने यहाँ सरसों में, धनिया में, फिर बबूल में, फिर पत्ती में, इसमें आ जाते हैं फूल। उसके बाद फिर यहाँ फूल खत्म हो जाते हैं तो इसको माइग्रेशन करना पड़ता है। और ये बहुत अच्छा साधन है, इसमें प्राकृतिक आपदा का खतरा भी नहीं है। बहुत बात है कि इसको भूमिहीन किसान भी कर सकता है, इसमें जमीन की आवश्यकता नहीं है। अगर किसान के पास जमीन की नहीं है तो भी मधुमक्खी पालन करके अपनी आय बढ़ा सकता है, अपनी आय भी वृद्धि कर सकता है, क्योंकि इसमें कम लागत में शुरू करके अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी सीधी सीधी सी गणित ये है कि मधुमक्खी की एक जो कॉलोनी होती है जिसको पक्षा बोलते हैं
0: जी,
1: वो कॉलोनी की कीमत 4-4.5 हजार रुपए होती है और वो लगभग 4 महीने में 30 किलो शहद बना देता है। और वो 30 किलो शहद अगर 150 रुपए किलो से भी बिकता है तो 4 हजार का शहद बेच देता है।
0: इसके
1: अलावा मोम भी मिलता है, शहद का 2% मोम निकल जाता है
0: जी,
1: और वो 300-400 रुपए किलो बिक जाता है। उससे भी अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पैसा लगा वो 4 महीने में वापस आ गया
0: जी,
1: फिर बाद में वो अगर यहाँ रखता है तो उसको एक कॉलोनी के ऊपर 400-500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जिसमें उसका गर्मी में चिड़ियाँ भी खिलाएगा और दूसरा खर्चा है छोटा मोटा वो निकल जाएगा, एक कॉलोनी के ऊपर 500-600 रुपए का खर्च आएगा। और अगले साल जब सीजन शुरू होगा शहद का तो उसको करीब भी नहीं है, केवल एक पास जो शहद आएगा फर्स्ट ईयर में तो उसमें 4.5 हजार रुपए निकालने पड़े थे कॉलोनी खरीदी पे, में तो उसको केवल 500-600 रुपए निकाल नहीं, बाकी जो बचा हुआ पैसा है वो उसका मुनाफा है।
0: जी जी जी जी।
1: तो काफी अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि मैंने बताया ना इसमें प्राकृतिक आपदा का खतरा नहीं है।
0: जी जी।
1: सकता है शुरू किया जा सकता है, तो अच्छा व्यवसाय है।
0: जी जी जी। अच्छा, मधुमक्खियां फसलों के उत्पादन और परागण में किस तरह मदद करती है, थोड़ा ये भी बताएं।

0: देखो मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी का भोजन दो तरह का भोजन होता है, मकरंद और पराग।
1: जी
0: कौन खाने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों पे जाती है, फूलों के अंदर अपनी जीभ घुसा के उससे तो लेती है ये मकरंद और पराग लेती है पैरों से। इसमें पैर में एक पोलन बास्केट होता है जिसमें ये पोलन इकट्ठा करके लाती है कॉलोनी में, क्योंकि ये बच्चों को चाहिए इसका, वो पोलन में प्रोटीन होता है तो प्रोटीन इकट्ठा करके लाती है। तो वो जब इकट्ठा करती है तो एक फूल से उठाती है, दूसरे फूल से उठाती है तो एक का दूसरे पे गिर जाएगा, दूसरे का तीसरे पे गिर जाएगा।
1: जी।
0: तो पोलन एक फूल से दूसरे फूल से ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे वो परागण की क्रिया हो जाती है और फल और बीज बढ़ने के लिए परागण की क्रिया जरूरी है।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: खाने पर परागण की क्रिया हो जाती है तो वहाँ फल और बीज की क्वालिटी अच्छी होती है, गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही बढ़ती है।
1: जी जी।
0: विशेष तौर से पर परागण वाली फसलों में। परागण वाली फसलों का पता जैसे हमने तो किताबों में पढ़ा कि ये टेबल में ये फसलें परागण वाली होती है, ये पर परागण की, ये सौ परागण की, सौ परागण वाली फसलों में मधुमक्खी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पर परागण वाली फसलों में मधुमक्खी की अत्यंत आवश्यकता है परागण के लिए। हिमाचल प्रदेश में सेब के बगीचों में पोलिनेशन सर्विस के नाम से मधुमक्खी के कॉलोनियों को अपवाद है ताकि उनकी सेब की क्वालिटी अच्छी हो सके और उन मधुमक्खी पालकों को वो लोग उल्टा पैसा देते हैं।
1: जी,
0: तो पोलिनेशन बीज और फल बनने के लिए आवश्यक है। इसीलिए एक वैज्ञानिक हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि मधुमक्खी नहीं हो तो मानव जीवन 4 साल में खत्म हो जाए, तो उन्होंने शायद बड़ा सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि मधुमक्खी जो आज हम खा रहे हैं फल बीज वो मधुमक्खियों की देन है मैक्सिमम, क्योंकि परागण के कई सारे माध्यम है, मोड है, उसमें से सबसे ज्यादा कीड़ों का महत्व है। कीड़ों में भी 95% मधुमक्खी का है, क्योंकि मधुमक्खी एक फूल से 5-7 मिनट में बैठती है, 1 मिनट में 7-8 फूलों को कवर करती है और एक कॉलोनी में लगभग 30,000 से 40,000 मधुमक्खियाँ होती है, तो वो कई सारे फूलों को कवर कर देती है। तो मतलब पोलिनेशन में मधुमक्खी का एक अहम रोल होता है।
1: जी जी जी डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। अब आपसे अंत में चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि मधुमक्खियों के संरक्षण और जागरूकता को लेकर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: देखो मधुमक्खियों का अगर अपने को प्रकृति बचानी है, अपने की फसलें बचानी है, तो मधुमक्खी का संरक्षण करना पड़ेगा। मधुमक्खी को मारे नहीं, भगाए नहीं, उनको रहने दें, क्योंकि वो अपना काम करती है, अपना पोलिनेशन करती है फसलों में, अपना सेब बनाती है।
1: जी,
0: और
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: अपने को मिलता है, उनको मारे नहीं।
1: अगर
0: उनको मारेंगे तो आगे अपने को खतरा पैदा होगा, और मधुमक्खी अपने लिए खतरा नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी का डंक है, वो मधुमक्खी अगर कोई काटती है तो वो मर जाती है, तो वो क्यों मरना चाहेगी? तो वो अपने को काटती नहीं है, अपन आगे होगी उनके पास जाएंगे तो वो काटेगी, इसलिए उनको भी उनका काम करने दें, अपन उनको छेड़े नहीं, उनको मारे नहीं, उनको भगाए नहीं, जहाँ पे लग रही है तो वो वहाँ लगी रहने दे उनको, वो आगे होके आदमी के ऊपर हमला नहीं करती।
1: जी, जी,
0: आप फांसी जाए तो उनका संरक्षण करना चाहिए। मधुमक्खी का संरक्षण करेंगे तो प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं।
1: जी जी जी जी। तो डॉक्टर हरिप्रसाद मेघवाल जी, आपने सवेरे सवेरे हमारे श्रोताओं को आज के इस विशेष दिवस पर इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप जानकारी सुन रहे थे डॉक्टर हरिप्रसाद मेघवाल से, और आज हम मना रहे हैं विश्व मधुमक्खी दिवस इस विषय पर। अब प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपको देना चाहेंगे बिजली बंद से संबंधित जानकारी। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक जिन स्थानों पर बिजली बंद रहेगी उन स्थानों के नाम आपको बताते हैं। शिव सागर 1 और 2, आरके सिटी, गोपाल विहार, शिवाजी नगर, वैशाली नगर, शिवाजी नगर द्वितीय स्पेशल और विनायक रेजिडेंसी, चंदन नगर और कृष्णा विहार। सुबह 8:30 बजे से 11 बजे तक वसंत विहार स्पेशल और बालाकुंड में बिजली बंद रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्रीनाथपुरम सेक्टर बी में बिजली बंद रहेगी और 9:30 से 11:30 बजे तक फ्रेंड्स कॉलोनी लाजपत नगर में बिजली बंद रहेगी।

एक पुण्यतिथि है विशेष व्यक्तित्व बिपिन चंद्र पाल की। बिपिन चंद्र पाल एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और भारत में क्रांतिकारी विचारों के जनक थे। वे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध तीन महान स्वतंत्रता सेनानियों की त्रिमूर्ति में से एक थे पाल। उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। अपने काल के बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी श्री बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर सन 1858 को सिलहट जिले के पोइल ग्राम में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। पिता का नाम श्री रामचंद्र पाल और माता का नाम नारायणी देवी था। सन 1866 में उन्हें सिलहट शहर स्थित अंग्रेजी माध्यम के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। उसके बाद उन्होंने दो मिशनरी विद्यालयों में अपनी पढ़ाई की और बाद में सन 1874 में

का नाम श्री रामचंद्र पाल और माता का नाम नारायणी देवी था। सन 1866 में उन्हें सिलहट शहर स्थित अंग्रेजी माध्यम के एक स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। उसके बाद उन्होंने दो मिशनरी विद्यालयों में अपनी पढ़ाई की और बाद में सन 1874 में सिलहट राजकीय उच्च विद्यालय से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश की परीक्षा पास की। तो उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हमारा छत वंदन, हमारा बारंबार प्रणाम।

बात करते हैं मौसम की, तापमान की। अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिन में गर्मी बढ़ने की संभावना है, यानी जो अभी तापमान चल रहा है उससे भी ज्यादा तेज गर्मी हमें झेलनी होगी। तो इससे बचने की जो साधन है, जो हमें सावधानियां रखनी है गर्मी से बचने की, वो हम अपनाते रहें और अपना ख्याल रखें। शहर में आज प्री डीएलएड परीक्षा आयोजित की जाएगी और कहां होगी, जेडीबी कॉलेज सहित 24 सेंटर तय किए गए हैं जहां पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है और समय है सुबह 7:30 बजे से।

अच्छा, इन बातों और जानकारियों के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार कोटा को समाप्त करने का समय हो चला है, तो आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखें, गर्मी से बचने के उपाय करते रहें, ठंडा खाएं, सूती पहने, ढक कर रहें, बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहें और अपने आसपास साफ सफाई रखें और पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगा दें तो उनकी देखभाल जरूर करें। और इन सब बातों के साथ साथ सुनते रहें आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। और आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम की का संयोजन रहा तेजराम मीणा जी का और प्रस्तुति राजेश महावर जी की। और अब अपनी साथी सीमा को दीजिए अनुमति। नमस्कार कोटा।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे दैनिक कार्यक्रम नमस्कार कोटा। श्रोता, ये प्रसारण आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से किया जा रहा है और इसे सुनने के लिए आपने ट्यून किया है FM 102 और FM 103.6 MHz और साथ ही साथ मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। समय है फिल्म संगीत का। आइए कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।
1: राय साहब भूपेंद्र सिंह से बड़ा बदमाश, खतरनाक और जालिम गुनाहगार शायद ही कोई हो। वो पैसे के लिए देश को बेचता है, अय्याशी के लिए खून करता है। वो तुम्हारा बाप कहलाने के लायक नहीं, उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद न करो।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। और श्रोताओं आपको बता दें, आज शीर्षक गीत आपको सुनवाएंगे। आज का शीर्षक है बाबुल और पहला गीत आपने सुना फिल्म जॉनी मेरा नाम से। आवाज थी लता मंगेशकर की, इंदिवर के बोल थे और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: बाबुल, बाबुल एक ऐसा शब्द जिसमें बेटी का बचपन, प्यार और घर की ढेर सारी यादें समाई होती है। बाबुल का आंगन सिर्फ एक घर नहीं, भावनाओं का संसार होता है, जहां हर बेटी खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती है। जब भी बाबुल शब्द सुनाई देता है तो मन में अपनेपन, स्नेह और विदाई की हल्की सी मिठास उतर आती है।

श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और आज का फिल्म संगीत यकीनन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा हर रोज की तरह। आज का शीर्षक है बाबुल। और अभी आपने गीत सुना किशोर कुमार और अलका याग्निक के युगल स्वरों में, फिल्म का नाम दाता। गीत लिखा था अनजान ने और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ पंक्तियां साझा करना चाहेंगे कि बाबुल की दुआएं बेटी के साथ हर कदम पर चलती है, बेटे के साथ भी चलती है, लेकिन बेटी और बाबुल का रिश्ता जो होता है बहुत ही नाजुक, बहुत ही प्यारा। और बाबुल एक ऐसी छांव है जिसकी याद उम्र भर बेटी के साथ रहती है। बाबुल का नाम आते ही आंखों में बचपन की तस्वीरें और मन में अपनापन जाग उठता है। बाबुल का प्यार अक्सर कम शब्दों में लेकिन बहुत गहराई तक महसूस होता है। आइए अब सुनते हैं बाबुल की भावनाओं से जुड़ा एक और खूबसूरत गीत। और गौर से सुनिएगा इस गीत से पहले के जो डायलॉग्स हैं उन्हें सुनिएगा। गीत आपका जाना पहचाना है, फिल्म का नाम है झील के उस पार। लता मंगेशकर की आवाज है और ये खूबसूरत गीत लिखा आनंद बख्शी ने और उस पर चार चांद लगाए अपने संगीत से आरडी पर।

0: मन्ने,
1: अरे तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए।
2: इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटी, आएगी अब मैं सुनते सुनते आराम से सो जाऊंगा।
1: अच्छा बाबू।

श्रोता आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर फिल्म संगीत का। श्रोताओं, आपको याद दिलाना चाहेंगे, आज सुबह 8:15 पर सुनना ना भूलिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं और सर्जरी से निदान। डॉक्टर मनीष अग्रवाल हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। यदि आप इस विषय में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो से जुड़े और डॉक्टर साहब से सीधे बात कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

0: और श्रोताओं, सैनिक फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचार प्रभात का आज का अंक आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।

0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
3: इंडिया इज एक्सेलरेटिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज।
4: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 185,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
3: पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रूपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
4: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम

0: गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
1: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, मैं सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
2: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
4: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
5: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोक सत्य

0: सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते, भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द, नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 102.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज के साथ साथ श्रोता हमें दूर दराज सुन रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल मोबाइल ऐप पर। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य वाणी।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा। किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाए अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध। आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
2: श्रोताओं, आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम आरोग्य वाणी में। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या पर जिससे आज हर उम्र का व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रभावित हो रहा है, रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन से जुड़ी समस्या। लगातार बैठकर काम करना, मोबाइल और लैपटॉप का बढ़ता उपयोग, गलत लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी शरीर की रीढ़ की हड्डी पर कितना गहरा असर डाल रही है, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
2: और सबसे पहले आपके हालचाल जानना चाहेंगे।
4: बिल्कुल
2: जी। और श्रोताओं, आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें फोन करें हमारे स्टूडियो के नंबरों पर। 2941142 हमारे स्टूडियो का नंबर है और उससे पहले आप कोटा का एसटीडी कोड 0744 यानी 0744 जरूर लगाएं, नहीं तो आपका फोन हमारे स्टूडियो से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा कार्यक्रम को और जहां आपको लगता है कि डॉक्टर साहब से आपको सवाल करना है तुरंत हमें फोन करें और आपके सवालों के जवाब के लिए डॉक्टर मनीष अग्रवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आपके हालचाल के बाद रुख करते हैं आज के विषय की ओर। जैसा कि आज का विषय है कि रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं और सर्जरी से निदान, तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरल भाषा में आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाती है।
4: रीढ़ की हड्डी, सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो ब्रेन से जो अपना बाकी का हिस्सा, जो अपन बोलते हैं कि बैक बोन, गर्दन से लेके टेल बोन तक जो हिस्सा होता है उसको रीढ़ की हड्डी बोला जाता है
2: जी।
4: ये एक पिलर की तरह होता है, बीम जिसको बोल सकते हैं कि जो अपन आजकल मकान बनाते हैं तो जिसमें अपन बीम बनाते हैं, तो बीम अपने पूरे

0: मकान को एक स्टेबिलिटी देता है, बाकी की फिर अपन दीवारें बनाते हैं चारों तरफ। तो बीम की तरह ही रीढ़ की हड्डी होती है जो कि सर को, पूरे थड़ को पैरों पे बैलेंस करती है और उसको सीधा रखने में, अपने को चलने में, बैलेंस बनाने में अपने को सहायता करती है।
1: जी।
0: दूसरी चीज, कभी भी अपन कुछ भी हैवी वर्क करते हैं, जंप करते हैं, तो उसको एक मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन जो देती है वो रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी सहायता ही से अपन सारे काम कर सकते हैं।
1: जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, बात करें।
0: जी।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो, आपका फोन लग चुका है। आकाशवाणी कोटा में बात करना चाहेंगे? कौन बात कर रहे हैं, नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बताएं।
2: बोल रहा हूँ,
1: आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, हम पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे हैं आपको।
2: मैं बोल रहा हूँ कोटा से।
1: जी जी बोले।
2: मैं चाहता हूँ, जब मैं ज्यादा से पढ़ाई करता हूँ तो मेरा वो पीठ में दर्द होती है।
1: आप पढ़ाई करते हैं बैठकर, तब आपकी पीठ में दर्द होता है
2: ज्यादा देर तक करता हूँ।
1: ज्यादा देर तक करते हैं तो? जी जी डॉक्टर साहब,
0: इसके लिए आपको अगर सिर्फ बैठ के पढ़ने पे ही दर्द होता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर 1 घंटे से 1.5 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें और थोड़ा सा वॉक करें। लगातार कभी भी 5 से 6 घंटे लगातार एक ही पोजीशन में कुर्सी पे नहीं बैठे रहें, इसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, नियमित, और अच्छा खाना खाएं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बैक पेन अपने आप मिट जाएगा।
2: ठीक
1: है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, तो कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमारे जागरूक श्रोता जो हैं, उन्होंने सवाल किया और बहुत ही सवाल बिल्कुल सटीक, बिल्कुल जैसे जैसा आपने ब्रीफ किया उसके
0: बस
1: हिसाब से उन्होंने सवाल अपना पूछ लिया और आपने बहुत ही संतुष्टि भरा जवाब उन्हें दिया। अच्छा, आजकल लोगों को रीढ़ की समस्याएं हैं जो वो तेजी से बढ़ रही है। उम्र का कोई एक वो नहीं रह गया। पहले सुनते थे कि जो बड़े बूढ़े होते हैं या एक उम्र बढ़ते बढ़ते उम्र के साथ जैसे हड्डियां गलती है या हड्डियों की भी उम्र बढ़ती है, उसके हिसाब से कमजोरी आना या रीढ़ की हड्डी की परेशानियां, समस्याएं खड़ी होती है। लेकिन अब हम देखते हैं कि कम उम्र के बच्चे भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्या कारण है?
0: जैसा कि हम देख सकते हैं कि जनरली स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं पहले बुजुर्ग लोगों में देखी जाती थी और बहुत ही कम जवान लोगों में देखी जाती थी, जिसके कुछ स्पेसिफिक कारण हो सकते थे, जैसे इन्फेक्शन, टीबी होना, या फिर कैंसर का होना, या कोई चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से जवान लोगों में, यंग लोगों में देखी जाती थी और बाकी की समस्याएं बुजुर्ग लोगों में देखी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे चीजें डेवलप होती जा रही हैं, अगर अपन देखें कि अपने बच्चे अपने से ज्यादा एडवांस है, तो बीमारियां भी एक उम्र से पहले ही लोगों में होने लग गई हैं। जो बीमारी पहले 60 साल की उम्र में देखी जाती थी, वो बीमारियां, सेम बीमारियां आज की 45 से 50 की उम्र में भी देखी जा रही हैं।
1: जी।
0: दूसरी चीज, यंग लोगों में मोबाइल एडिक्शन, कंप्यूटर वर्क, एक्सरसाइज नहीं करना, जंक फूड्स खाना, इसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: जी। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं, बात करते हैं। हेलो,
3: तो जयराम
1: जयराम जी की, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बताएं।
3: द्वारिकालाल बात करूँ?
1: जी द्वारिकालाल जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछे क्या पूछना चाहते हैं।
3: डॉक्टर साहब, नहीं कह रहे सवेरे रात को सोते हैं तो सवेरे उठ के ड्यूटी जबरदस्ती की है।
1: आप अपना सवाल फिर से दोहराएंगे?
3: अपन रात को सोते हैं, सवेरे उठते हैं, डूंडी दर्द करती है, इसका कारण क्या है?
1: अच्छा, डूंडी दर्द करती, कमर दर्द करती है।
0: सुबह उठने के बाद अगर आपको कमर में दर्द होता है और कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, इसके अलावा आपको हाथ पैरों में भी दर्द होता है, हाथों के पैरों के जॉइंट्स में?
3: नहीं, कमर
0: में दर्द होता है। तो इसका कारण मैकेनिकल पेन है। ये क्या है कि जब अपन थक जाते हैं तो उसकी वजह से अपने को बोन पेन होना, मसल्स पेन होना, इस तरह का कॉमन होता है। लेकिन अगर ये किसी और जॉइंट से संबंधित है तब तो आपको गठिया की जांच करानी चाहिए। नहीं तो आपको इसके लिए बेस्ट इलाज है कि सुबह उठने के बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, पर्याप्त नींद लें। नींद का मतलब होता है कि 6 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद आपको लेनी है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो भी आपको कमर में दर्द सुबह हो सकता है। अगर आप बहुत हैवी वर्क करते हैं तो अपनी डाइट प्रॉपर रखें और एक्सरसाइज पे फोकस करें, आपका दर्द ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा।

0: है।
1: और कोई सवाल आपका?
0: नहीं, यही सवाल था कि मैं परेशान हूँ, इसलिए मैंने दूसरा सवाल पूछा।
1: जी जी जी, तो डॉक्टर साहब के जवाब से आप संतुष्ट हुए? आप प्रोग्राम को पूरा सुनिएगा, ये हमारा अनुरोध है आपसे। आपको आगे और भी अच्छी जानकारी मिलेगी कार्यक्रम में, और फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे रीढ़ की हड्डी और बुजुर्गों की समस्या जो है आजकल जो कम उम्र के लोगों में। आपकी बात आधी रोक दी थी, प्लीज कंटिन्यू कर।
2: तो अभी समस्याएं जो हैं वो यंग लोगों में भी देखी जा रही हैं, जिसका मेन कारण यह है कि मोबाइल एडिक्शन अपन कह सकते हैं, लेकिन साथ में जो बच्चों की पढ़ाई है वो भी मोबाइल डिपेंडेंट, लैपटॉप कंप्यूटर डिपेंडेंट हो गई है, जिसकी वजह से पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा होने लग गए हैं। तो जिसकी वजह से डी जनरेशन जो कि बुजुर्गों में देखी जाती थी, डी जनरेशन मतलब बुजुर्गों की बीमारी, तो वो अब जवान लोगों में भी देखने मिली है।
1: जी जी जी, तो उसका मेन कारण जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाइफस्टाइल जो है वो जो बदल रहा है, उसी की वजह से कम उम्र में भी ये लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। लाइफस्टाइल की बात करें तो हम मोबाइल और लैपटॉप की और थोड़ा और आएंगे, क्योंकि 90 में से 100 में से 95 लोग यूज करते हैं, फोन भी करते हैं, बड़े बूढ़े बच्चे तो कर ही रहे हैं, और हम लोग जो काम से जुड़े लोग हैं उन्हें भी करना ही पड़ता है, तो ये एक तरह की आवश्यकता भी हो गई है। क्या ध्यान रखें?
2: अगर आपका कोई भी वर्क जो है वो मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको ये सावधानी रखनी है कि आपका जो नेक का और बैक का जो पोस्चर है उसको स्ट्रेट रखें जितना हो सके, कंप्यूटर की हाइट को थोड़ा सा ज्यादा रखें, मोबाइल चलाते टाइम मोबाइल को हाथ में थोड़ा ऊपर लेके चलाएं, और मोबाइल का उपयोग उतना ही करें जितना की आपको जरूरत है। ये आवश्यकता से अधिक यूज करने पे नेक जो है उसका पोस्चर खराब होता है, इसी तरह से कमर का, कमर और गर्दन दोनों ही, जो कि एक नॉर्मल लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस मतलब कि जो कमर और गर्दन भगवान ने बनाई है सी शेप की होती है, तो वो झुक के उल्टा सी या स्ट्रेट होने लगती है, और धीरे धीरे करके जो डिस्क होती है जिसको अपन मोबाइल फ्रेगमेंट बोलते हैं, छल्लों के बीच में गद्दी, वो खराब होने लगती है, डिजनरेट होने लगती है, और हमें कंटिन्यूस दर्द होने लगता है।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर है। हेलो हेलो
3: हेलो, नमस्ते जी।
1: नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में, नाम बताएं और प्रश्न पूछें।
3: मैं नरेश 866 है, डॉक्टर साहब से नमस्कार।
2: नमस्ते,
3: मैं कोटा से बोल रहा हूँ
1: जी।
3: मैं, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा MRI कराया था, उसमें L4 L5 है, मॉडरेट माइल्ड या मॉडरेट मान सकते हैं, थोड़ा दबा हुआ है, उसकी वजह से क्या है सनसनाहट बनी रहती है लेफ्ट पैर में। तो एक तो मैं मतलब थोड़ा तेज चल के घूम के आता हूँ सुबह 40-45 मिनट, तो उससे कोई नुकसान तो नहीं है, और मुझे क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए?
1: जी डॉक्टर,
2: देखो अगर आपकी MRI में L4-5 पे माइल्ड टू मॉडरेट कंप्रेशन दिखाया है, और अगर आप 45 मिनट्स चल पा रहे हैं, तो आपका जो कमर पे दबाव है वो बहुत ज्यादा नहीं है। चलना अच्छी बात है, कमर के दर्द में जब आपको दर्द सिर्फ पैरों में झंझनाटी हो, चलने में कोई तकलीफ नहीं हो, तो आप आराम से कितना भी चल सकते हैं। कितना का मतलब आप 1 घंटे 1.5 घंटे जितने में आप कंफर्टेबल हो, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको झुंझुनी हो रही है तो उसके लिए कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। एक बार स्पाइन सर्जन से या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर आप कमर से रिलेटेड एक्सरसाइज करना शुरू करें, प्रॉपर एक्सरसाइज जो वो आपको गाइड करें, अपने हिसाब से कोई भी एक्सरसाइज बैक रिलेटेड नहीं करना है। उससे आपको जो बाकी का कंप्रेशन है धीरे धीरे करके कम हो जाता है, और आप आराम से अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं। सावधानियां में आपको आगे एकदम से सडन बेंड करना, हैवी वेट उठाना, नीचे जमीन पे ज्यादा बैठना, इसको थोड़ा अवॉइड करना है। बाकी चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी थोड़ी रनिंग भी कर सकते हैं।
3: तो 4 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा समस्या हो गई थी, ये डॉक्टर साहब के अनुसार जैसे मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो अब वो समझ लो कि करीब 10-20% है, लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभार तो परेशान करता है।
2: जैसा कि आपको बताया कि आप इससे रिलेटेड अगर आपको ऐसा लगता है, तो थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि मसल्स में जो आपको टिंगलिंग सेंसेशन करती है, उससे रिलेटेड हेल्दी सप्लीमेंट्स और मेडिसिन ले सकते हैं साथ में।
3: थैंक यू डॉक्टर।
1: नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और आपकी बातों से ऐसा लगा आप पहले ही बड़े जागरूक श्रोता हैं, और अपने स्वास्थ्य को लेकर आप बहुत ही ज्यादा सजग हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जो आपके वो भी छोटी मोटी समस्याएं हो रही है वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रोग्राम से जुड़ने के लिए थैंक यू। जी डॉक्टर साहब, अच्छा अब बात करेंगे कमर दर्द और सर्वाइकल दोनों को कैसे पहचाने, और जो थकान हो जाती है आजकल जल्दी से, तो फर्क को कैसे पहचाने कि अब आपको

0: फिजिशियन के पास जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, या आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर खा लिया, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, कमर में भी दर्द हो रहा है, चलो पैर का दर्द सरकना, ये भी आजकल सुनने में आ रहा है कि कल तो हाथ में दर्द था वो सरक के इधर आ गया, पैर में चला गया, तो वो दर्द कमर का दर्द होता है या कमर का दर्द बिल्कुल अलग है सर्वाइकल दर्द, इस सब के बारे में विस्तार से बताएं डॉक्टर साहब।
1: ये सभी चीजें आपस में बिल्कुल ही अलग हैं। जनरली अगर पेशेंट को या किसी भी आदमी को नॉर्मल शरीर में कहीं

0: ये सभी चीज़ें आपस में बिल्कुल ही अलग हैं। जनरली अगर पेशेंट को या किसी भी आदमी को नॉर्मल शरीर में कहीं भी हिस्से में दर्द हो रहा है, या फिर अपन बोलें कि पहले कमर में दर्द हो रहा था, फिर ऊपर के हिस्से में कमर में दर्द होने लगा, गर्दन में होने लगा, कभी हाथ में दर्द आ रहा है, या ओवरऑल शरीर पूरा एकदम थका हुआ है, तो ये एक नॉर्मल बैक पेन की वजह से नहीं है। ये थकावट की वजह से हो सकता है, शरीर में मिनरल्स की कमी से हो सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो कमी जनरली देखी गई है वो B12 की कमी, विटामिन D3 की कमी, और कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। यूरिक एसिड जब बढ़ता है, जब अपन पानी कम पीते हैं, हैवी वर्क करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा लेते हैं,
1: जी
0: और इसके अलावा अगर अपनी डाइट में प्रोटीन सप्लीमेंट्स में और इसके अलावा अल्कोहल लेते हैं या फिर तंबाकू का यूज करते हैं, तो भी अपने शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है और वो पूरी बॉडी में दर्द करता है। इसके अलावा कई बार ये पेन गठिया से रिलेटेड हो सकते हैं, जो कि आजकल बहुत लोगों में देखा जा रहा है, तो इसके लिए भी एक उचित परामर्श करके जांचें करानी चाहिए।
1: जी जी जी जी
0: अगर अपन सर्वाइकल पेन को देखें या फिर बैक पेन को देखें, तो ये जो होता है ये एक पर्टिकुलर हिस्से में वहीं पे होता है, और अगर यहाँ पे नर्व कंप्रेशन होता है तो एक हर नस का जो है एक हिस्सा होता है उसको ये सप्लाई करती है, तो वहीं दर्द होता है उसमें।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर लें।
0: यस
1: फोन कर लिया शायद। जी
0: तो अगर आपको सिर्फ एक बैक पेन हो रहा है और अगर एक दो दिन से है, तो आप सिंपल कोई भी पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ही ज्यादा ज्यादा तीव्रता से हो रहा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो आपको एक बार सर्जन से कोई भी स्पाइन डॉक्टर से मिलकर परामर्श लेना चाहिए।
1: जी जी जी जी और आपने बात की अभी बीच में जांचों की,
0: yes.
1: तो उस पर भी आएंगे, उससे पहले एक अंतराल का समय हो गया डॉक्टर साहब, तो रुकना चाहेंगे आपको। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आरोग्यवाणी, डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आपसे फिर से रूबरू होंगे।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे मित्तल हॉस्पिटल स्टोन एंड लेजर सर्जरी सेंटर कोटा, किडनी स्टोन या प्रोस्टेट, न्यूनतम चीरा, अधिकतम आराम। अब यूरोलॉजी समस्याओं का स्थायी समाधान पाएं। अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश मित्तल गुर्दा पथरी प्रोस्टेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ के साथ दूरबीन पद्धति से प्रोस्टेट का ऑपरेशन, बिना छेद बिना चीरे के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध, आयुष्मान योजना एवं इंश्योरेंस सुविधा के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा। संपर्क करें फोन नंबर 7976192795। मित्तल हॉस्पिटल 368 राजीव गांधी नगर स्पेशल, कॉमर्स कॉलेज चौराहा कोटा।
1: श्रोताओं कार्यक्रम आरोग्य वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, और डॉक्टर साहब एक कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, बात करते हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार मैडम और सर।
1: नमस्ते नमस्ते, नाम बताएं और अपनी जगह का नाम बता के प्रश्न पूछें।
3: जी जी, मैं दादाबाड़ी से अंजलि बोल रही थी। मेरा सबसे सवाल है कि मेरे एक बैक में पेन होता है और वो सीधा पैर में जाता है, लेकिन जैसे मैं खड़े होकर काम कम कर रही हूँ तब कम होता है, दिखा भी लिया डॉक्टर को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि मैंने थोड़ा सा वक्त ज्यादा कर लिया तो दर्द स्टार्ट हो जाता है, नहीं करती हूँ, तो इसका क्या इलाज है?
0: मैम, अगर आपको सिर्फ हैवी वर्क करने पे अगर पेन हो रहा है, तो जनरली इसका कारण ये होता है कि बहुत ही कम कंप्रेशन होता है, या फिर मिनिमल, या अपन बोल सकते हैं कि मैकेनिकल पेन होता है कई बार, तो ये आपके नर्व से रिलेटेड पेन नहीं है पहली चीज तो। इसके लिए आपको आपके बाकी के जो लैब डायग्नोस्टिक में स्पेशली B12, D3, CBC में हम हीमोग्लोबिन देखते हैं। फीमेल्स में जनरली हीमोग्लोबिन की कमी बहुत पाई गई है, कई बार हमने पेशेंट्स में देखा है कि एक मिनिमल से कम, 10 से कम भी, मतलब कई बार 7-8 मिलता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी पेशेंट को जल्दी थकावट होना, पैरों में दर्द जाना, इस तरह की समस्या देखी गई है। दूसरी चीज, आपका कमर का दर्द पूरे पैर में जाता है या फिर पर्टिकुलरली अगर काफ पेन रहता है?
3: एक साइड में होता है,
0: ओके। कई बार ये दर्द जो होता है ये SI joint जो बोलते हैं अपन, sacroiliac joint या hip से related भी हो सकता है।
3: जी।
0: तो अगर आपने
3: नहीं होता है unlimited, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खड़े रहके ज्यादा वक्त किया वैसे ही स्टार्ट हो जाता है।
0: अगर आपकी MRI में कोई findings नहीं मिल रही है, एक्सरे नॉर्मल है, लैब नॉर्मल है, तो इसका सिंपल सा सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अगर पेन बहुत कम क्वांटिटी में, यानी कि अपन अगर स्कोर्स में देखें कि आपको 10 में से 2 या 3 ही है पेन, सबसे बेस्ट तरीका है आप गर्म सिकाई करो, एक्सरसाइज करो, आपका दर्द पूरी तरह से गायब हो जाएगा और सावधान।

0: बढ़ती है।
1: थैंक यू सर, थैंक यू
2: अंजलि जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: जी। नमस्कार,
2: नमस्ते जी डॉक्टर साहब। हाँ, हम बात कर रहे थे कमर दर्द सर्वाइकल की, उसके उससे जुड़ी आप जानकारी दे रहे थे कि आजकल जो लाइफस्टाइल है, जो बैठक ज़्यादा हो रही है, उसी की वजह से ये समस्याएं बढ़ रही है। बात आपने करी अभी जांचों की, क्या स्पाइन या रीढ़ की हड्डी के लिए अलग से जांच होती है, या इस दर्द को अपन सामान्य लें, या इस दर्द को कितना बढ़ने दें, कितना बर्दाश्त हो रहा है तो पेन किलर खा लिया और आराम कर लिया ये करके छोड़ दें, या हल्के दर्द में भी जा करके आप जैसे एक्सपर्ट से मिलें, ये बताएं डॉक्टर साहब।
0: अगर आपको बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में दर्द है तो आप नॉर्मल एक पेन किलर जो कि सबके घर में क्रोसिन की टैबलेट होती है तो वो एक बार लेके देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपका पेन सेटल नहीं होता है और आपको कोई ये दर्द जो है वो बहुत लंबे समय से चला रहा है, लंबे समय का मतलब होता है कोई भी दर्द अगर 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है, साथ में इसके रेड फ्लैग साइंस होते हैं जो कि स्पाइन से रिलेटेड रहते हैं जिनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर आपका गर्दन या कमर का दर्द हाथों में और पैरों में जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन यानी झुनझुनी महसूस होना, सुन्नपन आना पैरों में, और अगर आपको लैटरिंग और पेशाब में समस्या हो रही है, लैटरिंग में आपको जोर लगाना पड़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो गया बहुत ज्यादा और कई दिनों से चल रहा है, पेशाब करने पे जाने पे आपको जोर लगाना पड़ता है, कई बार सेंसेशन लॉस होने लगता है, पीछे का जो हिस्सा है वो आपका बैक वाला बटक वाला अगर सुन्न होने लगा है तो आपको सबसे पहले स्पाइन डॉक्टर से मिलना चाहिए पहली चीज, और उनके हिसाब से आपको मेडिसिन फिजियोथेरेपी लेनी चाहिए। दूसरी चीज, इससे रिलेटेड जांचें क्या क्या हो सकती है, तो कोई भी जो सबसे पहले ये कॉमन नहीं होता, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होता है, कई बार पेशेंट को हमें लगता है कि इसको एक्सरे और एमआरआई जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है।
2: सब जांचों पे आपको रुकना चाहूंगी और एक कॉलर ले लेते हैं। हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: नमस्ते मैडम, जितेंद्र बात कर रहा हूँ।
2: जी जितेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं? तालेड़ा से। पूछें, क्या पूछना चाहते हैं?
3: सर से पूछना था आपको,
2: कार्यक्रम शुरुआत से सुन रहे हैं आप?
3: हाँ सुन रहा हूँ मैम।
2: अच्छा, पूछें पूछें।
3: मेरे कमर में दर्द होता है डॉक्टर साहब।
0: ओके।
3: मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया भी था, डॉक्टर साहब ने एक्सरे वगैरह भी किया था, तो उसने हमारे कमर में टेढ़ापन बताया, कमर गड्ढी में जो रेड़ गड्ढी होती है।
0: बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। आपकी उम्र कितनी है?
3: उम्र सर अभी 35 साल है।
0: 35 साल। और ये कमर में जो टेढ़ापन है आपने कब से महसूस किया है?
3: ये सर हमारी पहली राय बताया वो।
0: ओके, देखो कमर में टेढ़ापन जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है जो कि बचपन से यानी कि अपन जैसे ही 6-7 साल की उम्र में होते हैं तब एक कमर में टेढ़ापन डेवलप होता है जिसको स्कोलियोसिस या काइफोसिस बोलते हैं। काइफोसिस जो है वो कमर में कमर आगे की तरफ झुक जाती है और स्कोलियोसिस में कमर टेढ़ी हो जाती है प्रॉपर। तो ये इन्फेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है या फिर बचपन से ही है, पहली चीज ये देखना होता है। दूसरी चीज ये है कि कई बार ये हैवी डिस्क उठाने की वजह से भी कमर में टेढ़ापन आता है, वो भी यस बचपन से है आपको, लेकिन क्या ये अभी बढ़ रहा है ऐसा आपने महसूस किया है?
3: दर्द सर क्या है, दर्द बना
0: रहता है हमारा। ओके, देखो कभी भी अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब आपका या तो जो कमर में टेढ़ापन है वो बहुत ज्यादा है, या फिर उसकी वजह से कोई नसें जो होती है उस पर दबाव आ रहा है, उसकी वजह से ही आपको कमर में दर्द होता है इस तरह की समस्याओं में, तो उसके लिए जी जी जी। तो इसके लिए देखो ये है कि अगर आपके कमर में टेढ़ापन है और दर्द भी बना हुआ है तो एक बार आपको प्रॉपर स्पाइन डॉक्टर से या हमसे मिलना चाहिए और हम आपकी एक्सरे एमआरआई सबको वापस से जांच करेंगे, और उसके हिसाब से इसमें जो उपचार होते हैं कि अगर एंगल कम होता है, टेढ़ापन कम होता है तो कई बार एक्सरसाइज से इनसे ठीक हो जाता है। अगर एंगल बहुत ही ज्यादा है, आपकी कमर टेढ़ी है और आपकी उम्र अभी 35 साल है, तो जब आप 60 साल के होंगे तो आपको बिल्कुल ही टेढ़ापन आ जाएगा, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा टेढ़े हो जाएंगे, तो उसके लिए मेरे हिसाब से आपको एक बार दिखाना चाहिए और उस हिसाब से आपको समझ।
3: अगर मिलना चाहे तो,
0: अगर आप मिलना चाहें तो हमसे ज्ञान शांति हॉस्पिटल में मिल सकते हैं।
2: और कोई सवाल जितेंद्र जी?
3: ज्ञान शांति हॉस्पिटल
2: अब ये हम आपको नहीं बता सकते, आप कार्यक्रम के बाद आकाशवाणी फोन करें और

0: जो भी जानकारी डॉक्टर साहब के बारे में चाहते हैं आपको मिल जाएगी। आपने कार्यक्रम सुना, हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फोन करते हैं मैम, पर नहीं बताते आकाशवाणी में, कॉल किया था डॉक्टर साहब के लिए।
0: हाँ,
1: पर नहीं बताया था, हमारे बोला था गूगल में सर्च कर।
0: अच्छा, ऐसे बोला था। नहीं नहीं, अब बता देंगे आपको, कॉल करें आप और जानकारी लें, ठीक है। कार्यक्रम सुनते रहें, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नम सब, अब बात करेंगे ऑपरेशन की, सर्जरी की। तो कौन सी लक्षण देख के आप तय करते हैं कि इस मरीज की सर्जरी करनी, क्योंकि ये एक डर बना हुआ है, और एक बहुत बड़ा डर ये है कि रीढ़ की हड्डी का अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा, आप दोबारा खड़े नहीं हो सकते, आप दोबारा चल फिर नहीं सकते हैं, रोजमर्रा की जो आपकी दिनचर्या है उसके हिसाब से आप अपना सामान्य जीवन नहीं जी सकते, इस पर आप प्रकाश डालें।
2: और तो अगर अपन देखें कि स्पाइन सर्जरी से किस में जरूरी होती है, तो अपन स्टेज बाय स्टेज लेते हैं प्रॉब्लम्स और एज रिलेटेड। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन समस्या यंग लोगों में देखी गई है वो डिस्क रिलेटेड रहती है। कई बार वो जिम में जाके हैवी वेट उठा लेते हैं, जिसको डेडलिफ्ट बोलते हैं, और वो डेडलिफ्ट जो होता है वो सबसे बेकार चीज होती है जिम में। उसकी वजह से एकदम से उठाने की वजह से जो शरीर का छल्लों के बीच का सबसे लचीला हिस्सा डिस्क होती है वो एकदम से पूरी की पूरी बाहर आ जाती है और सीवियर नर्व कंप्रेशन करने लगती है, स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत तेज दर्द होता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि पेशेंट के लैट्रिन पेशाब रुक जाते हैं, पूरे पैर कमजोर पड़ जाते हैं या सीवियर पेन होता है। तो सबसे पहले अपन ने बताया कि अपन एक्सरे कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, बाकी की जांचें कराते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन ट्रीटमेंट करते हैं।
0: जी।
2: तो अधिकतर जो डिस्क होती है, नॉर्मल डिस्क हर्निएशन, जो भी डिस्क निकली है, अगर तो अपन चौकी छल्ला सरक गया है, डिस्क निकल गई है, साइटिका हो गया है, स्लिप डिस्क हो गया है, तो 90% समस्याओं को दवाइयों से, रेस्ट, एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी समस्या 3 हफ्ते से ज्यादा चलती है, उसमें अगर आपको पैरों में झुंझुनी आना, सुन्नपन आना, पैर को कमजोर पड़ना, हाथों की उंगलियों का कमजोर पड़ना, सुन्नपन आना, और अगर लैट्रिन पेशाब पे असर आ रहा है, चलने में दिक्कत होने लगी है, और इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो वो सर्जरी की तरफ वो पेशेंट को जाना पड़ता है।
0: जी।
2: सर्जरी में अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो अपन बाद में बात करेंगे। तो अगर बहुत बड़ी डिस्क है, जिसकी वजह से मैंने जो आपको साइंस बताए थे रेड फ्लैग सिम्टम्स, अगर वो है तो अपने को सर्जरी करनी पड़ती है। इसके अलावा अपन देखें ओल्ड एज में कई बार ऐसा होता है कि डीजनरेटिव बीमारियां धीरे धीरे करके चारों तरफ से नस पे दबाव आता है, पेशेंट को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि थोड़ा भी नहीं चल पाते, 50 मीटर या 10-20 कदम, जिसको क्लॉडिकेशन बोलते हैं। उनमें लैट्रिन पेशाब में भी दिक्कत आने लगती है, पैर सुन्न होने लगते हैं, तो कमजोर होने भी लगते हैं। ऐसी समस्याओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ऐसी सिचुएशन में अपने को सर्जरी की जरूरत पड़ती है।
0: तो सबसे बेहतर जो है उपाय यही है कि आप तुरंत पहले तो डॉक्टर के पास जाएं, जांचें करवाएं, और उसके बाद जैसा आपके डॉक्टर्स कहते हैं उसके हिसाब से आप,
2: अगर आपकी समस्या 3 हफ्ते से ज्यादा है,
0: क्योंकि हम लोग देखते हैं ना आमतौर पर 10 लोग इकट्ठे हुए और एक का कमर दर्द है, तबीयत पूछने आए हैं, तो नहीं, एक कह रहा ऑपरेशन करवा लो, एक कह रहा नहीं नहीं फलाना ने करवाया था उसका सक्सेस नहीं हुआ, दो कहते हैं कि करवाया तो सक्सेस हो गया, तो ये जो है ये मिथ है एक तरह से।
2: हाँ।
0: डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में बात की थी डेड लिफ्ट, ये थोड़ा आप हिंदी में,
2: डेड लिफ्ट का मतलब होता है कि जिम में जाके जो एक रॉड होती है जिसमें बहुत सारा हैवी वेट उठा के और एकदम से उसको हाथों से पकड़ के जो झुक के जो अपन वेट उठाते हैं
0: झटके से,
2: सडनली झटके से, जो अपन अक्सर टीवी में या मोबाइल में भी देखते हैं, उसको डेड लिफ्ट बोला था। लिफ्ट मतलब उठाना एकदम से, और डेड मतलब कि कितना भी वेट हो उसको सडनली उठा लिया। उसकी वजह से सबसे ज्यादा इस तरह की प्रॉब्लम होती है, कमर उस वजन को झेल नहीं पाती है और वो प्रेशर कहीं ना कहीं से निकलेगा तो वो डिस्क फट के निकल जाती है, जिसको बहुत बड़ी स्लिप डिस्क वगैरह बोलते हैं। अब अपन आते हैं सर्जरी की तरफ की सर्जरी से जनरली सभी लोगों को लगते हैं
0: जी।
2: और ये एक मिथक है कि स्पाइन सर्जरी कराने के बाद पेशेंट कभी भी नहीं चल सकता है, ये आज की तारीख में पूरी तरह से मिथक है, इसको पूरी तरह से इग्नोर करना है। पड़ोसी क्या बोलते हैं, अगर आप देखेंगे तो हम हर दिन एक स्पाइन सर्जरी करते हैं, और मेरे जैसे एक दो डॉक्टर भी हैं जो भी रेगुलरली यहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं अपने कोटा में।
0: जी, जी, जी।
2: बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट दूसरे दिन चलते हैं, कई पेशेंट को हम सेम डे भी चलाते हैं, और कुछ पेशेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ा के कमजोरी के साथ आते हैं, या फिर ट्रॉमेटिक स्पाइन होते हैं जिसमें कि नर्व पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, इस केस में रिकवरी कम होती है। बाकी के सारे पेशेंट सेम डे या दूसरे दिन चलते हैं कंफर्टेबली, अपने 7 दिन के बाद सारे काम कर सकते हैं, ऑफिस जाना शुरू कर सकते हैं।
0: अच्छा।
2: 2 से 3 दिन उनका हॉस्पिटल स्टे रहता है और पूरी तरह से सेटिस्फाई होते हैं। अगर आप कहीं पे भी हमारे भी चैनल पे या

0: हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो आपको बहुत सारे पेशेंटों की वीडियो मिल सकती है।
1: डॉक्टर साहब, अभी सर्जरी की बात हम कर रहे हैं तो एक मन में सवाल आया कि उम्र, सर्जरी के लिए कोई उम्र आप विशेषज्ञ के तौर पर तय करते हैं कि भाई इस उम्र के व्यक्ति के ऑपरेशन करने पर कोई असर नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है?
0: सर्जरी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है
1: जी।
0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत ही ज्यादा उम्र के, जैसे कि जिनकी उम्र 80-85 क्रॉस कर चुकी है और जिनको साथ में और भी बीमारियां हैं जैसे कि बीपी, डायबिटीज, थायराइड, हार्ट रिलेटेड इश्यू या फिर किडनी या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, उन ऐसे पेशेंटों में हमें सर्जरी करने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि स्पाइन सर्जरी से रिलेटेड उनकी कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाकी की कोमोरबिडिटी जो है वो उसको हीलिंग प्रोसेस को कम कर देते हैं, उसमें रिस्क बढ़ जाता है। बाकी की आप देखें तो 50 प्लस में या किसी भी उम्र में हम इस तरह की सर्जरी कर सकते हैं। इवन छोटे बच्चे जिनमें स्कोलियोसिस होता है, कमर टेढ़ी होती है, या डिस्क वाले पेशेंट किसी भी उम्र के हो सकते हैं, उसमें भी हम सर्जरी करते हैं। तो सर्जरी का उम्र से कोई लेना देना नहीं है।
1: श्रोता, आपको बताना चाहेंगे आरोग्य वाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। आज चर्चा हो रही है रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं और सर्जरी से निदान, और इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल और सटीक और समझ में आने वाली जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो के इन नंबर पर फोन करें, पहले लगाएं कोटा का एसटीडी कोड 0744 और उसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर 294-1142-0744 कोड है एसटीडी, और स्टूडियो का नंबर 2941142, इस पर फोन लगाएं और सीधे जुड़े डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी से। जी डॉक्टर साहब, अब सर्जरी क्या हर स्पाइन समस्या में सर्जरी जरूरी होती है?
0: नहीं मैम, जैसा कि मैंने बताया कि अमूमन 90% डिस्क रिलेटेड समस्याएं जो है नॉर्मल मेडिकेशन, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, मोडलिटी, एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। कुछ ही समस्याएं होती हैं जो कि पहले भी बताया था कि अगर वो पैरों से रिलेटेड है, टिंगलिंग, कमजोरी, नमनेस आना, पेशाब, लैट्रिन प्रेशर होना, ऐसी समस्याओं में हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसी तरह से ओल्ड एज में अगर पेशेंट बहुत ज्यादा नस पे दबाव लेके आया है और पैरों में कमजोरी, हाथों में कमजोरी, सर्वाइकल माइलोपैथी, लंबर माइलोपैथी, इस तरह के सिम्टम्स अगर आ रहे हैं, अगर पेशेंट को टीबी है, मेट्स है, कैंसर है, तो इस तरह की समस्या को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे केस में हमें सर्जरी की तरफ जाना ही पड़ता है। तो अगर अपन ओवरऑल देखें तो 10-15% पेशेंट होते हैं जिनको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं और जिनको बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम होती है या फिर समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं। बाकी के सभी पेशेंट को हम ओपीडी बेसिस पे मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से ही ठीक करते हैं।
1: जी।
0: और अगर अपन फिजियोथेरेपी पे देखें, कई बार पेशेंट हमने देखा है कि पेशेंट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके भी 2-2-3-3 महीने तक फिजियोथेरेपी कराते रहते हैं, तो वो भी एक तरह से गलत है।
1: अच्छा।
0: कोई भी फिजियोथेरेपी के लिए क्या होता है कि अगर आपको एक्यूट पेन यानी कि एकदम से सीवियर पेन हुआ है तो उसके लिए जो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं वो एक्सरसाइजेज आपको या मॉडलिटीज करानी चाहिए और उसके बाद एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन उस फिजियोथेरेपी को आप ये नहीं कि 2-2 महीने तक खींचे।
1: डॉक्टर साहब एक कॉलर है। हेलो
2: मैडम जी, राम राम।
1: राम राम जी, नाम बताएं और प्रश्न पूछें डॉक्टर साहब से।
2: बूंदी से बोल रही थी, सुमित्रा।
1: हाँ जी सुमित्रा जी, बोले।
2: मार चुना जो माथो गणो बढ़ कर और जरा सी धूप में भी न देख पाओ और बार बार तू हवा लाग जाओ गरम, तो मैंने डॉक्टर बताया भी दिखाई और खाना कच्ची बीमारी बताई, माइग्रेन बताई हूँ ना, और जी की दवाया भी लू चू ना तो कम हो जाओ से फिर फाच हो जाओ से जो कहीं करें डॉक्टर आपसे पूछो आप।
0: देखो वैसे तो ये समस्या आपको जो बताई है वो माइग्रेन ही है। अगर आपको धूप में निकलने पे या फिर बहुत टाइम पे भूखा रहने पे या फिर एकदम से कोई भी हैवी वर्क करने के बाद अगर सर में दर्द हो रहा है तो ये माइग्रेन ही है। दूसरी चीज ये है कि आपको कितनी फ्रिक्वेंसी में, मतलब कितने दिन में ये सर में दर्द हो रहा है, तो वो आपको
2: मीना में जो एक आध बार
0: महीने में 1-2 बार अगर आपको दर्द हो रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसके लिए जो आपको दवाइयाँ दी
2: है,
0: तो अगर ऐसा आपको लगातार दर्द हो रहा है 3-3 दिन तक, तो उसके लिए फिर आपको इसको रोकने के लिए 2 तरह उपाय होते हैं कि एक तो जो बीमारी अब आ गई है उसको रोको और ये आगे नहीं हो उसको रोको। तो उसके लिए जब आपको सर में दर्द हो गया तो सर दर्द मिटाना है तो आपको जो गोली दी है वो लेनी है पहली चीज, और ये आगे नहीं हो उसके लिए आपको एक रेगुलर मेडिसिन देंगे जो आपको कम से कम यानी कि ये होता है कि 6 महीने से 1 साल तक खानी होती है, जिससे कि आपको इस तरह के एपिसोड्स नहीं आए सर दर्द वाले माइग्रेन के। तो वो आप एक बार अपने न्यूरो फिजिशियन यानी कि नसों

0: डॉक्टर, जनरल फिजिशियन या स्पाइन सर्जन, या आप मतलब इन तीनों डॉक्टर में से किसी को भी दिखा के इस तरह की दवाइयां ले सकते
1: तो डॉक्टर साहब मुई मना दवाएं छोड़ दी चाहे दी कर लेकर बंद हुई मना।
0: हाँ, और पानी ज्यादा पीना है, धूप में निकलना नहीं है, क्योंकि धूप में निकलने से माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, राम राम।
2: हाँ जी सुमित्रा जी, हो गया ना था कि मुसीबत को।
1: हाँ जी, घणो बड़ गमन की डॉक्टर साहब से पूछ लू थोड़ा का वाला फोन लगायो मना।
2: बढ़िया करी कार्यक्रम सुन जो पूरो।
1: हाँ, हाँ,
2: और आप डॉक्टर का ताई दिखा जो, ठीक है ना।
1: हाँ, राम राम मैडम।
2: कार्यक्रम से जुड़िया हो कलिया, धन्यवाद आपको बहुत बहुत जी डॉक्टर साहब। अब बात करेंगे, अच्छा ऑपरेशन की हम बात कर रहे थे, और जैसा कि तकनीक दिन ब दिन सुधरती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, तो पहले के ऑपरेशन के रिजल्ट्स और आधुनिक तकनीक से जो सर्जरीज हो रही है, जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके रिजल्ट्स में आपको कोई अंतर लगता है?
0: अगर अपन इस बात पर चर्चा करें कि पहले किस तरह की सर्जरियां होती थी, तो पहले स्पाइन की सर्जरियां बहुत कम होती थी सबसे पहली बात, और वो होती थी तो बहुत बड़े चीरे के साथ में, बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी होती थी जिसमें कि पेशेंट को बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। कई बार पेशेंट एक एक महीने तक हॉस्पिटल के बेड पे लेटे रहते थे, तो बहुत बड़े चीरे के साथ जिसमें बहुत सारी मांसपेशियों को काटा जाता था, बहुत बड़ी हड्डियों को कट करके फिर नस को फ्री किया जा सकता था, और पुराना जो सिस्टम था जिसमें स्क्रू फिक्सेशन वगैरह, कमर को सीधा करना, स्टेबिलिटी देना, वो भी बहुत एक टफ जॉब होता था जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते थे। अगर अपन आधुनिक तकनीकों पे देखें, तो अगर अपन देखें कि अगर डिस्क की कोई समस्या है, तो पहले बहुत बड़ा चीरा लगता था, लेकिन आजकल हम जो है वो छोटे से दो होल बनाते हैं, या फिर एक बहुत छोटा सा 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का चीरा लेके ट्यूब्स होती है हमारी, जिसमें से हम जाते हैं मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक से, माइक्रोस्कोप लूप्स की सहायता से उसको देख के उस फ्रेगमेंट को निकाल देते हैं। बुढ़ापे में जो डीजेनरेटिव बीमारियां हैं, बुढ़ापे में जो देखी जाती है, उसको भी इससे फ्री कर देते हैं। और उसके बाद भी सबसे जो रिसेंट एडवांस टेक्निक है एंडोस्कोपी, जिसमें कि हम लोगों ने वो शुरू किया है। तो एंडोस्कोपी की मदद से हम छोटे छोटे से दो पोर्ट बनाते हैं, एंडोस्कोप अंदर जाता है और उससे पूरे डिस्क फ्रेगमेंट को निकाल देते हैं, जिसमें कि बहुत ही कम मात्रा में मसल्स डैमेज होती हैं, बहुत छोटा चीरा होता है, पूरी डिस्क को नस को पूरी को फ्री कर देते हैं, पेशेंट को सेम डे मोबिलाइज किया जा सकता है, पेशेंट की दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं 48 आवर्स में, और रिजल्ट्स भी बहुत अमेजिंग होते हैं। और पहले की तुलना में अगर अपन देखें कि कॉम्प्लिकेशन पार्ट, तो आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत ही, यानी कि 1000 में से 1 पेशेंट को ही कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल सर्जरी के बराबर ही है। कोई भी सर्जरी, जैसे हर्निया की सर्जरी हो गई, पेट की सर्जरी हो गई, या फिर अपन बोले कि ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड की हड्डी टूट गई या घुटने का रिप्लेसमेंट हो गया, तो स्पाइन सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन आज की तारीख में इतने कम हो गए हैं कि वो एक नॉर्मल सर्जरी के बराबर हो सके।
2: जी जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर है। हेलो जी डॉक्टर, आपने जिक्र किया मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी और इसी के साथ एंडोस्कोपी, यही हमारा सवाल था। और ये शायद आपने जो नई तकनीकें आई है उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। एक कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार बहन जी, डॉक्टर साहब नमस्कार।
0: नमस्ते।
2: नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछे।
3: मैं कोटा से कैलाश नगर पारिक बोल रहा हूँ।
2: जी जी,
3: मेरा प्रश्न ये है कि मेरे आए दिन कभी पीठ में दर्द हो जाता है, कभी कमर में दर्द हो जाता है, कभी कंधे में दर्द हो जाता है, तो कोई भयंकर बीमारी। अच्छा, फिर होता क्या है कि जैसे ही मैं थोड़ा सा टहलता करता हूँ और कुछ एक्सरसाइज करता हूँ तो दर्द मिट भी जाता है।
2: अच्छा,
3: तो कोई भयंकर बीमारी तो
0: नहीं? ये तो सर आपको भी मालूम है कि ये कोई भी भयंकर बीमारी नहीं है। अगर आपको नॉर्मल एक्सरसाइज करने से या चलने फिरने से अगर आपका दर्द गायब हो रहा है, तो ये कोई भी भयंकर बीमारी नहीं है। दूसरी चीज, आपका दर्द माइग्रेट हो रहा है, मतलब कमर के हिस्से में, कभी नीचे के हिस्से में, कभी बीच के में या ऊपर के हिस्से में हो रहा है, तो एक नॉर्मल मसल पेन है जो कि आपको हो रहा है। तो ये इसका सबसे मुख्य कारण जो हो सकता है, जो हमें लगता है, वो हो सकता है कि मिनरल्स की कमी। मिनरल्स में सिर्फ B12 D3 नहीं आते, कई बार मैग्नीशियम की कमी, कई बार कैल्शियम की कमी और सेलेनियम की कमी, इस तरह की कमी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो गए, इनकी कमी की वजह से भी होता है। जनरली लोगों में आज भी ये मिथक बना हुआ है कि कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, जबकि हम लास्ट 5 ईयर से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैल्शियम से ज्यादा मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है, और मैं अपने ऑलमोस्ट सारे पेशेंटों को मैग्नीशियम सप्लीमेंट देता हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार अपनी जाँचें करानी चाहिए, और अगर आपको मिनरल्स की कमी आती है, जैसे B12, D3, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन D3, तो आपको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो आपका ये बाकी का जो दर्द है पूरी तरह से गायब हो जाए।

0: थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: आपका भी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बात की थी डॉक्टर साहब, दर्द सरकना, वो ही समस्या बताई कैलाश जी ने, और हमें आशा है कि आपके जवाब से वो संतुष्ट होंगे जी। अब बात करेंगे सर्जरी के बाद जीवन, जो सामान्य जीवन है उसमें लौटने में मरीज को कितना समय लगता है, क्या इसमें उम्र, मैं बार बार उम्र का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि हर उम्र से ये समस्या देखने को मिल रही है, तो क्या सामान्य जीवन में लौटने में कितना समय लेता है?
2: जी मैम, अगर अपन यंग एज में देखें जिनको डिस्क की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी डिस्क बाहर आ गई, तो ऐसे पेशेंट को बहुत ही आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, बहुत छोटे चीरे से हम लोग डिस्क निकाल देते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक हो सकती है, एंडोस्कोपिक हो सकती है, दूसरे दिन पेशेंट की छुट्टी हो जाती है विद इन 48 आवर्स। ऐसे पेशेंट को 7 डेज के बाद वो अपने नॉर्मल जो वर्क है उनको ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हफ्ते में वो अपनी ड्यूटी पे जा सकते हैं। ऐसे में उनको हम लोग एक्सरसाइज भी चालू करवा देते हैं और वो पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं, उनका दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर अपन आते हैं डीजनरेटिव बीमारी जो ओल्ड उम्र में होती है, वो बुजुर्गों में देखी जाती है। ऐसे पेशेंट को थोड़ा सा क्या रहता है कि उम्र ज्यादा होने की वजह से मसल पेन होना या इस तरह की मसल में कमजोरी जो कि कोई भी सर्जरी के बाद देखी जाती है
1: जी,
2: तो ऐसे पेशेंट को रिकवर होने में लगभग 1 महीने लगता है।
1: अच्छा।
2: जनरली वो 10 दिन के बाद अपने घर के सारे काम खुद से कर सकते हैं, हम उनको दूसरे दिन से वॉक करा देते हैं और वो कंफर्टेबली खुद से टॉयलेट बाथरूम जा सकते हैं, चल सकते हैं
1: जी,
2: और 10 दिन के बाद अपने घर के नियमित काम कर सकते हैं और 1 महीने के बाद अगर वो चाहें तो सारे काम पूरी तरह से कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कार्यक्रम अब समाप्ति की और एक कॉलर और ले लेते हैं फिर अपनी बात को। हेलो
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताएं और प्रश्न पूछे। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बताओगे तो कहीं करा।
2: आपको सिर्फ कमर में ही दर्द होता है क्या, डूडी में?
3: कमर में
2: और पैरों में या फिर कहीं और भी जाता है दर्द?
3: ना वो ना, सिर्फ कमर में दर्द हो जाए, काम करा नहीं चलेगा।
2: ओके, और ये कौन से टाइम पे होता है, सुबह होता है, शाम को होता है?
3: नहीं नहीं सर, ये आपने भी देखो थोड़ा सा थोड़ा सा समय थोड़ा सा इतने मोशन
2: सा सुबह शाम के टाइम पे। तो अगर ये बहुत लंबे समय से अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपनी जांचें करानी चाहिए, एक्सरे, और अगर बहुत ही लंबे टाइम से एक्सरे में अगर कुछ दिखता है तो एमआरआई की तरफ जाने चाहिए, दूसरी चीज। और अगर ये बहुत लंबे टाइम से नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे यानी कि शाम के टाइम या सुबह ही हो रहा है, तो आप कुछ दिनों के लिए जैसे कि गर्म सिकाई करना जो कि बहुत हेल्पफुल होता है पुरानी बीमारियों में, लंबे समय की बीमारियों में, वो कर सकते हैं, और एक्सरसाइज जो कि डॉक्टर आपको बताए वैसे करनी है आपको, और कोई भी बहुत हैवी वर्क जो होता है कि जैसे कि अगर आप करते हैं हैवी वेट तो उसमें थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी आपको, तो आपका दर्द गायब हो जाएगा।
3: सर जी, सर मैं बिंदी तोड़ रही दोबारा। तो बिंदी जैसे बिंदी तोड़ा हो, मैं भी नीचे हो गए।
2: तो आप कमर की बेल्ट लगा के भी इस तरह के काम कर सकते हैं और गर्म सिकाई करो, आपको दर्द मिट जाएगा। गर्म सिकाई के लिए एक रबड़ की थैली आती है जो मेडिकल पे मिलती है, या फिर इलेक्ट्रिकल बैग आते हैं जिसको थोड़ा सा गर्म करके अपन कर सकते हैं, या फिर घर पे भी कपड़ा थोड़ा सा गर्म कपड़े से गर्म करके उससे भी सिकाई कर सकते हैं।
3: ठीक है।
1: आपके घर में होगा ना कोई कोई माता बहन? हाँ, वहाँ याद होगी कसा कर सिकाई, ईटा के ताई गर्म कर तवा पर कपड़ा न गर्म करके ऐसा भी सिकाई कर सका। अच्छा, आप बताए आराम आओगे है ना। कार्यक्रम से जुड़वा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आज चर्चा की हमने रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं और सर्जरी से निदान। डॉक्टर मनीष अग्रवाल हमें जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर साहब, चलते चलते अब श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: संदेश अगर अपन देखें,
1: सर्जरी तक नहीं नहीं जाना
2: जी,
1: पड़े
2: जी, जी। तो मेरा यही संदेश है कि जो युवा इस अवस्था में चल रहे हैं, जिम में अगर आप जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी बहकावे में आके डेड लिफ्ट नहीं करना, जिसपे हमने बहुत विस्तार में चर्चा की थी। रेगुलर एक्सरसाइज करो, सब तरह की एक्सरसाइज करो, और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर एक्सरसाइज सभी उम्र के लोगों के लिए, चलना, घूमना, जॉगिंग करना, और इसके अलावा हेल्दी डाइट लेना वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कई बार पेन अपने को मिनरल्स की कमी से ही होता है, तो अपनी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए। पूरी तरह से स्लीप, यानी कि 6 से 8 घंटे साउंड स्लीप होनी चाहिए, अच्छे से अपने

0: को सोना है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका शरीर कहीं ना कहीं से दर्द करेगा। और मोबाइल लैपटॉप का यूज बहुत कम, जितनी आवश्यकता है उतना ही करना है, प्रॉपर पोस्चर में करना है। और इसके अलावा तो अगर आपको बस यही है आपके लिए सलाह, चार सलाह मेरी तरफ से।
1: तो जो आज हमने जाना कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना कितना नुकसानदायक हो सकता है, और समय रहते ही इलाज और सावधानी अपनाकर हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़े, कार्यक्रम को सुना, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर मनीष अग्रवाल जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। और चलते चलते आपको बताना चाहेंगे श्रोताओं, इस कार्यक्रम का संयोजन रहा हिमांशु नामा जी का, और तकनीकी सहयोग हमें मिला निहाल सिंह जी और विवेक कुमार जी का। अब कार्यक्रम आरोग्यवाणी यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए अपनी साथी सीमा को, हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे, इससे पहले नॉर्वे में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के 5वें और अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इस मौके पर श्री मोदी ने बताया कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की नवाचार रणनीतिक भागीदारी अगले स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है। 10 वर्षों में देश का बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं।

0: मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे चौरासी क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। राज्य सरकार ने देर रात 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार एक एडीजी, 4 आईजी, 2 डीआईजी और 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। हरिंद्र कुमार कुमावत महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। वहीं चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक, भरतपुर, नागौर और दौसा के एसपी बदले गए हैं। एडीजी लता मनोज कुमार को सिविल राइट से कम्युनिटिंग पुलिस में भेजा गया है। वहीं एडीजी हवा सिंह घुमरिया को एडीजी सिविल राइट्स का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की स्थापना के उपलक्ष्य में चलने वाले अमृत महोत्सव के तहत इस साल 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये उत्सव विधायिका को समर्पित होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि अमृत महोत्सव के जरिए परंपरा, नवाचार और जनविश्वास एक साथ नजर आएगा। श्री देवनानी कल विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बोल रहे थे। राज्य में सहकारिता, उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि दवा विक्रेताओं के प्रस्तावित हड़ताल के कारण लोगों को परेशानी से बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे 2026 में राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहला पुरस्कार मिला है। और ब्यौरा दे रही हैं न्यूज डेस्क से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी।
1: राज्य में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में व्यापक मॉडल स्थापित किया गया है। इसके तहत 500 से ज्यादा तंबाकू मुक्ति उपचार और परामर्श केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन्हें जियो टैग कर लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। साथ ही 83,000 से ज्यादा स्कूलों में तम्बाकू मुक्त विद्यालय परिसर संबंधी निर्देशों की पालना की गई है और तम्बाकू मुक्ति के लिए 2.5 लाख से ज्यादा जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। प्रदेश में तम्बाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।
0: प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 2 पारियों में हो रही है। करौली जिले में इसके लिए 25 और बारां जिले में 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं NTA की ओर से नीट UG परीक्षा 21 जून को दोबारा लिए जाने की घोषणा के बाद शिक्षा नगरी कोटा में देश भर से विद्यार्थियों की वापसी शुरू हो गई है। शहर के छात्रावासों, पुस्तकालयों और कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की चहल पहल नजर आने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर कल जयपुर से VC के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लू और तापघात, मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और HPV वैक्सीन की प्रगति सहित अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए अस्पतालों में हीट वेव से प्रभावित मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने और आवश्यक दवाइयां तथा कूलिंग उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर बना हुआ है। गर्म हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। कल प्रदेश के 9 शहरों में दिन का पारा 44 डिग्री

0: से अधिक रहा। चित्तौड़गढ़, अलवर, पिलानी, श्रीगंगानगर, दौसा, चूरू, करौली और कोटा में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहा। वहीं फलौदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और जयपुर में रात का पारा 30 डिग्री के ऊपर मापा गया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में गिरावट आई है, किंतु तेज गर्मी का असर बरकरार है। आज दक्षिण पूर्वी भागों में और सीमावर्ती जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी है। श्रीगंगानगर निवासी मानव सुथार का भारतीय क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वे भारत अफगानिस्तान के बीच होने वाली टेस्ट और वनडे सीरीज में खेलेंगे। मानव लेफ्ट आर्म स्पिनर, बॉलर और बल्लेबाज भी हैं। सुथार की इस उपलब्धि से जिले भर में खुशी का माहौल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचे। इससे पहले नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में लोगों से संवाद का कार्यक्रम। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से राजस्थान के तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को उत्कृष्ट कार्य के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला। और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 212.31 मीटर और FM 102 और FM 103.6 MHz पर हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहला गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में, फिल्म का नाम साजन चले ससुराल। गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर। और लीजिए अब अगले गीत की बारी। फिल्म का नाम परदेसी बाबू। आवाजें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार आनंद राज आनंद और संगीत भी आनंद राज आनंद का। आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म इम्तिहान का युगल गीत कुमार सानू और बेला सुलाखे की आवाजों में। गीत लिखा था फैज अनवर ने और संगीत था अनु मलिक का। और अब कार्यक्रम में अंतिम पेशकश फिल्म राजा से।

तो श्रोता हूँ, राजा फिल्म के इस युगल गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल का प्रसारण। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हुए हैं। अब बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

हर दिन नई सुबह का नया नज़ारा, ठंडी हवा लेकर आया है ये पैगाम हमारा। जल्दी से उठ जाओ, खुशी से भरा रहे आज का ये दिन तुम्हारा। अरे हाँ हाँ मेरी प्यारी सखियों, हम जानते हैं कि आप सुबह जल्दी जाग गई थी और अपना आधा काम खत्म करके बाकी का काम करते हुए आ गई है अपने रेडियो सेट के पास सुनने के लिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत। और अभिनंदन करती है आप सभी की रेडियो सखी कविता, और इसके साथ ही स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాచ్ టచ్. ఛే, యార్ జిస్ లడ్కీ కో

जी हाँ सखियों, ये जो मोबाइल है हमारे हाथ में, ये हमारे आने जाने, हमारे मूड सब पर नजर रखता है। वैसे तो ये मोबाइल डिजिटल सेवाएं हमारी सहूलियत के लिए ही बनाए गए हैं। इनसे हमारा काम आसान हो गया है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। और इस डिजिटल दुनिया का नकारात्मक पहलू ये है कि इसने हमारी मानसिक शांति छीन ली है। अत्यधिक सोशल मीडिया, लगातार आ रही नोटिफिकेशंस और स्क्रीन के सामने लंबा समय बिताने से हमारी मानसिक शांति बाधित हो रही है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हीन भावना, तनाव और असंतोष बढ़ता है। इसे डिजिटल एंजाइटी और डिजिटल डिप्रेशन कहते हैं। सखियों, जब हम फोन में वीडियोस देखते हैं तो वीडियोस भी हमारे मूड के अनुसार ही आती हैं। जैसे अगर हम किसी दिन तनाव या गुस्से में हैं, किसी से झगड़ा हुआ है, तो मोबाइल हमें वैसी ही वीडियोस दिखाएगा, जिससे हम और ज्यादा तनाव में आ जाते हैं। इससे बचने के लिए आप फोन एक तरफ रख दें और कुछ देर शांत बैठ जाएं, या परिवार में या दोस्तों से मिल लें, उनसे अपनी परेशानी शेयर करें, वो कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। और एक बात सखियों, जो आपको याद रखनी है, किसी भी फ्रॉड कॉल को उठाने से बचें। और अगर कोई आपको कॉल करके कहे कि आपका बेटा या पति या फिर कोई भी रिश्तेदार जिसे हमने अरेस्ट कर लिया है, या फिर आपको ही किसी केस में

0: अरेस्ट करने की बात कहे तो उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट करके आपसे रुपए और मोटी रकम निकलवाने की फिराक में होते हैं। कोई भी पुलिस कार्यवाही इस तरह से नहीं की जाती है और ना ही कोई बैंक आपसे फोन पर ओटीपी मांगता है। आपकी जागरूकता और सतर्कता ही आपको और आपके परिवार को इन फ्रॉड से बचा सकती है। सोने से एक घंटे पहले फोन बंद कर दें, स्क्रीन की वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलें, परिवार के साथ समय बिताएं, प्रकृति के बीच टहलें, किताबें पढ़ें, योग और ध्यान करें। सच कहूं तो सखियों, अभी तो ये चल रहा है कि दोस्त हो या रिश्तेदार, किसी की कोई भी बात हमें बुरी लगती है या मनमुटाव हो तो स्टेटस वॉर चलता है। एक दूसरे के लिए ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं और ज्यादा ही कुछ हो जाए तो सीधा ब्लॉक कर देते हैं। इससे रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। आज हमारे पास फोन है जिससे पल भर में रिश्ते खत्म हो जाते हैं। एक वो दौर था जब खत लिखे जाते थे। अगर परिवार में कुछ झगड़ा भी हुआ है तो ये बताने के लिए पहले पोस्ट ऑफिस से खत लेकर आते थे, फिर उसे लिखकर पोस्ट करने जाते थे। इतने समय में तो परिवार में सुलह ही हो जाती थी।
1: हजारों रंग के नजारे बन गए, लिखे जो

0: सखियों, शहद तो हम सभी के घरों में अक्सर उपयोग में लिया जाता है। हमने कई बार पेड़ों पर शहद के छत्ते भी देखे हैं, जिन्हें तोड़कर शहद निकाला जाता है। पर अब पेड़ों की कटाई से ये सब दुर्लभ सा होता जा रहा है और मधुमक्खियों की गुंजन जो अब खतरे में पड़ती जा रही है, इसलिए मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जो कि आज है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र में मधुमक्खियों और अन्य कीटों के महत्व को समझना तथा उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना है। और सखियों, मधुमक्खी पालन के बारे में विस्तृत जानकारी लेने के लिए हम आज आए हैं गांव रघुवीरपुरा, जिला बूंदी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम महिला जगत में। सबसे पहले हमारे श्रोता आपका परिचय जानना चाहते हैं।
1: सभी को भी नमस्कार, मेरा नाम दीपेश डागल है। मैं गांव रघुवीरपुरा जिला बूंदी में निवास कर रहा हूं।
0: दीपेश जी, मधुमक्खी पालन का ख्याल आपके दिमाग में कब और कैसे आया?
1: मैडम, सन 2016 के अंदर केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन स्वीट रिवॉल्यूशन चालू किया गया था
0: जी।
1: जिसे कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन द्वारा चलाया गया
0: जी।
1: उसके तहत मैंने कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी में ट्रेनिंग ली और उसके फलस्वरूप मुझे सब्सिडी में केंद्र सरकार की तरफ से 10 मधुमक्खी के डब्बे मिले
0: जी।
1: और इन्हें मैं आगे बढ़ाता आज मेरे पास में 1240 डब्बे हैं। हमने अपना मधुमक्खी पालन कर रखा है
0: जी। तो इस मधुमक्खी पालन की शुरुआत की होगी आपने, तो इसमें शुरू करने में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा?
1: ट्रेनिंग के बाद में हमें जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था जितना कि आज मैं अपने आप को महसूस करता हूँ
0: जी।
1: क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ में लगभग 47 जनों ने ट्रेनिंग करी थी और उन 47 जनों में से सिर्फ मैं ही अकेला हूं जो आज इस चीज को कैरी आउट कर रहा हूं,
0: इसको
1: आगे तक लेके आया हूं। कई लोगों ने इसके अंदर जो आगे बढ़ा नहीं पाए, आगे कर नहीं पाए
0: जी।
1: इसके पीछे सिंपल रीजन ये रहा कि जैसे जो डिफिकल्ट सीजन होता है, चाहे मतलब स्कॉर्चिंग हीट हो गर्मी के समय
0: जी,
1: या फिर बहुत ज्यादा सर्दी का समय हो या बहुत ज्यादा अपने बारिश का समय हो, तो उस समय मधुमक्खियों को सर्वाइव करा पाना काफी मुश्किल होता है। मैडम, मधुमक्खियां बेसिकली 4 प्रकार की होती है। ऐसे तो कई तरह की मधुमक्खियां होती है, परंतु जो मधुमक्खी पालन के हिसाब से हम देखें तो जो 4 प्रकार की मधुमक्खियां हैं उनमें एपिस मेलिफेरा जो कि यूरोपियन प्रजाति की होती है, एक एपिस सेरेना है जो भारतीय प्रजाति की होती है, और एक एपिस इंडिका है और एपिस डॉर्सेटा है
0: जी।
1: एपिस डॉर्सेटा और एपिस इंडिका को हम पालतू नहीं बना सकते, ताकि एपिस मेलिफेरा और एपिस सेरेना को हम मधुमक्खी पालन के तहत
0: जी
1: बी बॉक्सेस में रख सकते हैं और इनसे शहद प्राप्त कर सकते हैं।
0: तो इनके लिए कुछ सावधानी भी रखते हैं ना?
1: हाँ बिल्कुल मैडम, इसके लिए हमें हाथों में ग्लव्स पहनना पड़ता है
0: जी,
1: और सिर पर वेल धारण करना पड़ता है, और जब हम इसका शहद को हार्वेस्ट करते हैं तो उस समय नेट लगा के करना पड़ता है, सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो इसके आइज होते हैं उनको डालना पड़ता है, और जो भी अपने टूल्स वगैरह किट होते हैं बेसिक टूल्स किट, उनका हमें प्रयोग करना पड़ता है
0: जी। तो इस व्यवसाय को शुरू करने में खर्च कितना आता है, साथ ही कितने लोग साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं, और इसके लिए जगह कितनी चाहिए?
1: मैडम, इसके अंदर जो मधुमक्खी पालन हम मधुमक्खी के डब्बों के अंदर करते हैं
0: जी,
1: तो ये दो तरह से किया जाता है। एक तो आप खेतों में इसको लगा सकते हैं और दूसरा आप एक बगीचों में इसको लगा सकते हैं। खेतों में बोले तो अपने जैसे सरसों के खेत होते हैं, सरसों के समय नवम्बर से दिसंबर में इनके फूल आते हैं तब हम उसमें लगा देते हैं सरसों में, तो सरसों का नेक्टर और पोलन आता है। इसी तरह हम अजवाइन के खेत में लगाते हैं नवंबर दिसंबर में, हम चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ डिवीजन में लगाते हैं। तो ये तो खेतों वाली बात हो गई, और जैसे हम जंगल में भी लगाते हैं तो झारखंड के अंदर पलामू डिवीजन में और गढ़वा के अंदर अक्टूबर के ऑनवर्ड्स हम वन तुलसी के अंदर हमारी मधुमक्खी के पेटियों को लगाते हैं
0: जी।
1: तो वहाँ पे उसका नेक्टर और पोलन हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से हम लीची के लिए हम मुजफ्फरपुर में वैशाली के अंदर हमारे बी बॉक्सेस लगाते हैं, शाही लीची के लिए मशहूर है वो, मार्च अप्रैल के महीने में इसका हार्वेस्टिंग होता है
0: जी।
1: इसी तरह से करंज के अंदर हम लगाते हैं गढ़वा में
0: जी,
1: जो कि झारखंड के अंदर है, वहाँ अप्रैल मई के

0: महीने में उसका हार्वेस्टिंग होता है।
1: जी
0: सुंदरवन के अंदर हमारा जो शहद आता है वो अपने मार्च से अर्ली जून तक इसका हार्वेस्ट होता है
1: जी।
0: और हिमालय मल्टीफ्लोरा का जो शहद है वो अपने मार्च से मई तक आता है और उसके बाद में थोड़ा गैप देके जुलाई से अक्टूबर तक फिर हार्वेस्टिंग इसकी शुरू हो जाती है
1: जी।
0: इसी तरह नीम का शहद मार्च अप्रैल और मई के पहले सप्ताह तक हम ले सकते हैं, जो हाड़ोती में जहाँ इसकी बहुतायत होती है वहाँ हम अपने सत्ते लगाते हैं
1: जी।
0: कोरिएंडर यानी धनिया का जो शहद होता है वो रामन मंडी एरिया है, जो कोरिएंडर यानी धनिया बाउल एरिया है, वहाँ पे फरवरी मार्च के महीने में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं
1: जी।
0: और फेनल के लिए हम मार्च और अप्रैल में देशमा और सवाई माधोपुर एरिया के अंदर हम अपने मधुमक्खी के पीटियों को लगाते हैं। इसी तरह से यूकलिप्टस के लिए हम सीतापुर बारामती जो यूपी में है नवंबर से लेके अप्रैल तक हम इसको हार्वेस्ट करते हैं
1: जी।
0: और अकेशिया हाड़ोती में ही होता है, काफी होता है अकेशिया, वो अपन हिंदी में बोलते हैं देसी बबूल
1: जी।
0: ये अपने कोटा बूंदी बाना झालावाड़ में चंबल के किनारे में जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ पे काफी बहुतायत से इसका नेक्टर पोलन मिल जाता है। मार्च से मई के महीने तक इसका नेक्टर पोलन हम ले सकते हैं
1: जी। आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को, हमें भी नहीं पता था कि शहद में भी इतनी वैरायटियां होती हैं। इसकी शुरुआत कितने रुपयों से कर सकते हैं
0: मैडम? जैसे एक अपने मधुमक्खी का डब्बा होता है उसकी कीमत अमूमन आप ये मान सकते हैं, मधुमक्खी का डब्बा विद बीज
1: जी,
0: बीज भी उसके अंदर होगी और ई बॉक्स, दोनों की कीमत लगभग 4000 रुपए है
1: जी।
0: और राजस्थान सरकार का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ये इसके ऊपर सब्सिडी भी देता है, 40% की सब्सिडी है, तो उसके तहत आपको 2400 रुपए में एक डब्बा मिल जाएगा सरकार की सब्सिडी के तहत। और इसके लिए आप किसान राजस्थान किसान साथी करके एक पोर्टल है राजस्थान गवर्नमेंट का, जिस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एक किसान को अधिकतम 50 रुपए दिए जाते हैं
1: जी।
0: और जो अगर आप SC ST मार्जिनलाइज या वुमेन हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी।
1: हाँ, तो आपका कहना है कि राज्य सरकार से भी इस व्यवसाय के लिए अनुदान मिलता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है हमारे श्रोताओं के लिए। दीपेश जी, इस व्यवसाय से जो शहद बनता है उसको निर्यात किस तरह करते हैं आप?
0: मैडम, निर्यात करने के लिए आपको इसके लिए कुछ बेसिक मैंडेटरी बिजनेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं
1: जी।
0: तो उसमें सबसे पहले तो आपको DGFT जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो आपको एक IEC कोड इश्यू करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड
1: जी।
0: फिर उसके बाद में आपको एक सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा FSSAI का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसके बाद में आपको एपीडा का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं चाहे खेती के हों या कोई भी एडिबल चीज हो इसके लिए हमें एपीडा में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है
1: जी।
0: फिर इसके बाद में हमें एक ऑथोराइज डीलर कोड लेना होता है जो कि हमें हमारा जहाँ खाता होता है वो हमें देता है और वो कोर्ट पे उसको प्रयोग में आता है
1: जी।
0: इसके अलावा आपको एक GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपकी फर्म का और आपको एक LUT लेटर मिलेगा, LUT लेटर बोलते हैं लेटर ऑफ अंडरटेकिंग
1: जी,
0: जिसमें कि आपको 0% GST लगती है और आपके इनवॉइस का 0.1% ही आपके ऊपर पोर्ट टैक्स देना होता है
1: जी।
0: सब कुछ फ्री है, सरकार केंद्र सरकार इसमें काफी मदद करती है, वो भी चाहती है कि भाई हम निर्यात को बढ़ाएं
1: जी।
0: और एक आखिर में आपको एक आइस स्केट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो पोर्ट पे होता है
1: जी।
0: ये तो अपने जो बिजनेस सेटअप के जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हो गए, इसके अलावा आपको जो और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं जो करवाने पड़ेंगे, जैसे कि अपने हेल्थ सर्टिफिकेशन होते हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन होता है, इसको अपना एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल वो केंद्र लेवल पे है, उसने हर एक राज्य में एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसियां बना रखी है
1: जी।
0: हमारे राजस्थान में जयपुर में है, तो ये सर्टिफाई करती है कि आपका जो शहद है वो सेफ्टी नॉर्म्स और जो रेसिड्यूल लिमिट्स होती है और उनको मीट करता है या नहीं, इसके बाद पश्चात ही आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर इसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस चाहिएगा जो भी किसी भी NABL लैब के द्वारा प्रदान किया जाता है, वो एक दो सर्टिफिकेट और चाहिए जिसे कि हमने फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट बोलते हैं
1: जी।
0: वो ये दर्शाता है कि आपका जो शहद है किसी प्रकार का पेस्ट या बायोलॉजिकल डिजीज तो नहीं है। फिर एक फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट भी लेना होता है और हमने बेसिकली जो एक्सपोर्ट किया है अभी तो हम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जैसे अभी ओमान का एक ऑर्डर किया है हमने रिसेंटली। और यहाँ के लिए आपको एक चीज और चाहिए कि जो अगर आप मिडिल ईस्ट में करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, तो आपको हलाल सर्टिफिकेट, आप यूरोपियन यूनियन के किसी देश में करना चाहेंगे तो वहाँ के नॉर्म्स के

0: अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा
1: जी।
0: और अगर आप यूएस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी फैसिलिटी को यूएस एफडीए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
1: जी, हर देश के अनुसार वहाँ की जो नीति है उसके अनुसार ही हमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
0: बिल्कुल साहब।
1: तो दीपेश जी, ये निर्यात आप करते हैं तो अपना जो लागत होती है उस सारी लागत को निकाल कर सालाना कितना मुनाफा हो जाता है?
0: जी मैडम, ये आपने अच्छा सवाल पूछा।
1: जी
0: इस मधुमक्खी पालन के अंदर अगर हम एवरेज ये लगा के नहीं चल सकते कि भाई मेरे पास में 100 पेटियां हैं या 1000 पेटियां हैं या 2000 पेटियां हैं तो मेरे को इतना मुनाफा होगा।
1: जी
0: अब जैसे मुझे गत वर्ष जो बिहार में बाढ़ आई तो उसमें कम से कम मुझे 450 पेटियों का नुकसान हुआ।
1: जी
0: मैंने अनुमान तो ये लगाया था कि हाँ इतना हो जाएगा, बाकी इसके अंदर हर चीज के अंदर प्रोस एंड कॉन्स होते हैं।
1: जी
0: तो हम अनुमान पे नहीं जी सकते, इसके अंदर हमें धरातल पे रहना चाहिए कि मतलब अपना जैसे किसान मंडी में अनाज लेके आ जब तक बेच नहीं दे तब तक वो अपने आप में मानसिक रूप से ये संतुष्टि नहीं कर सकता कि मेरे को इतना लाभ हो गया। मेहनत हम करते हैं, बाकी एक स्टैंडर्ड इसका जो आप अगर पैमाना चाहें
1: जी।
0: तो वो ये है कि अगर 100 बक्से अगर किसी किसान के पास में है, मधुमक्खी पालक के पास में है, तो वो होलसेल के अंदर अपना शहद को बेचता है तो उसे यूं मान के चलिए बहुत कम कीमत पर बेचने को पड़ेगा। 150 रुपए किलो, 100 रुपए किलो वो उसमें बिकेगा उसका शहद, क्योंकि उसे इकट्ठा शहद बेचना है, वो अनब्रांडेड हनी है और सामने वाला चाहेगा कि आपका सस्ता से सस्ता लेके और उसे अपने ब्रांड से बेचे। और वहीं या मधुमक्खी पालक अपने शहद को अपना ब्रांड बना के अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपने खुद के ब्रांड से बेचेगा तो उसकी मतलब कई गुना ज्यादा कीमत उसे मिल जाएगी, 400-500-600 रुपए किलो, जैसा उसका शहद है, शहद की क्वालिटी है। जो डायबिटिक के लोग बाग हैं तो वो जामुन के हनी को काम में लेते हैं क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो काफी कम होता है, तो मतलब ये अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में और डायबिटीज को रेगुलेट करने में काफी हद तक मददगार होगा।
1: और प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे जो युवा श्रोता हैं या फिर जो भी महिला श्रोता भी हैं इस काम को कर सकती हैं, उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं तो यही कहूंगा श्रोताओं को कि मधुमक्खी पालन एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फील्ड है
1: जी।
0: और आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान, जिस भी जिले में आप हों वहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें और वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। ये जो बिचौलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि मैडम आप ताजुब करेंगे, सिर्फ 10% हनी होता है और बाकी इसके अंदर इतनी ज्यादा मिलावट होती है
1: जी।
0: जो किसान भाइयों को मैंने यही बोला जो श्रोता है आपसे कि आप अपना स्वयं का ब्रांड बना के बेचें और इसका NABL टेस्ट कराएं तो आपकी अपनी पहचान होगी। मैंने भी शुरुआत में इसको कोशिश की कि जब बहुत ज्यादा शहद हुआ करता था शुरू में तो बहुत कम कीमत पे बेचा मैंने इसको, पर मुझे लगा कि मेरा ही शहद ये कम कीमत पे खरीद के और काफी महंगे भाव पे बेच रहे हैं, इसके कई गुना ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं
1: जी।
0: तो मैंने फिर अपने खुद का ब्रांड बनाया और मैं ऑनलाइन इसको उसके ऊपर मैं इसको सेल कर रहा हूँ मार्केट में। मैंने इसको डायरेक्टली नहीं उतार के जो खादी भंडार से सेलेक्टिव खादी भंडार से और उपभोक्ता भंडार से उन्हों को मैं सप्लाई दे रहा हूँ
1: जी। तकियो, वो कहते हैं ना जब फूल खिलता है तो मधुमक्खियाँ बिना बुलाए ही आ जाती हैं, ठीक उसी तरह जब व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो उसके आसपास भी बहुत से लोग आ जाते हैं। दीपेश जी, इतनी अच्छी जानकारी आज आपने हमारे श्रोताओं को दी, हमारे श्रोता इसका जरूर लाभ उठाएंगे। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद
1: सखियों, आज की जानकारी में हम आपको बता रहे हैं कैसे हो ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा की बर्बादी को रोकना और उसका समझदारी से उपयोग करना। इससे बिजली के बिल में कमी आती है और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसके लिए जरूरी है काम खत्म होने के बाद लाइट्स और बाकी सभी उपकरणों को बंद कर दें। LED बल्ब का इस्तेमाल करें, इससे बिजली की बचत होती है और समय समय पर इनकी सफाई भी करते रहें। खाना हमेशा ढककर पकाएं। इस तरह की छोटी छोटी आदतें सखियों एक बड़ी बचत का काम करती हैं। इसके साथ ही सखियों, सूर्य भी अपनी ऊर्जा को पूरे जोर शोर से बरसा रहा है, तो सूरज की इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखिए और जरूरत होने पर ही अपने आप को पूरा कवर करके बाहर निकलें और इस धूप में बाहर जाते

समय अपने साथ छाता और पानी की बोतल जरूर रखें, क्योंकि आपके घर वाले भी आपके घर से बाहर निकलते समय ये जरूर कहते होंगे

और सखियों, धूप में अपना ख्याल रखते हुए हमारे भी जब रास्ते में हम जाते हैं तो हमें भी छाता साथ में ले जाना होता है, तो आप भी अपना छाता और पानी की बोतल साथ में रखें और अपने अपने को कवर करके चलें। अब हमारा जो वक्त है हो चला है आपसे अलविदा कहने के लिए, और अपने जो खत हैं वो हमें ज़रूर भेजिएगा ये बताने के लिए कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। अब दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता को इजाज़त। नमस्कार।

अभी बहने सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102 और 103.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारा प्रसारण सुन रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बजने को है। अब आप सुनेंगे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो
2: आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
2: जी,
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
2: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू हुआ।
2: जी,
1: अच्छा
2: जी।
1: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
2: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब

0: थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक कहते ना गाड़ियों की लोगों की उस जमाने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
0: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गई डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहां से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहां आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहां।
1: वाह वाह भाई ऐसा
0: कहां
1: है,
0: कहां से कहां ये बात देखिए
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहां। लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है तो क्यों ना हम ये गाना।
0: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है। मैं आप बताऊं, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे, कल्याण जी आनंद जी। तो जब रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहां, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी, देखो कमल, जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूजिक भी म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत इंस्टेंट फूड की तरह बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था
0: जी, इतना पेशेंस थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है
1: जी। कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसने मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की जरूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ भाई। कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: कैसे मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडे जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज का फंक्शन है। तो कहती है सब कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूं? मैंने कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगी नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी है। अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत तुम। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देखे, बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है? अच्छा। जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
1: जी,
0: लेकिन अभी तक जो हम बात

0: रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो
1: जी
0: हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए।
1: जी मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा
1: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा
0: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
1: दर्द शुक्रिया
0: हमेशा भूलेगी। कमल जी ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
0: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करते थे?
1: अच्छा शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी, और शायद वो क्वालिटी के क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में, तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक खास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई, और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी, और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है, फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
0: अच्छा।
1: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था, तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूजिक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है, और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
0: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
1: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे, और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था, और मैंने ड्यूट्स ज्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया, और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी, बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
0: ये एक जो सेटिस्फेक्शन जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में आप ही क्या सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती है। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
1: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं।
0: अच्छा
1: जी।
0: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
1: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते ना टॉप पे रहा काफी दिनों तक, और यहीं नहीं जहां भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
0: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
1: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के जरिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिली।

0: कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं सैगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को, बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के जरिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
1: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
0: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था,

0: अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद गायिका बनना था, और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
1: पछतावा तो नहीं होता?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे?
0: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
1: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
0: जी,
1: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
0: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, जरूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ की गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
1: तो कैसा काम चल रहा है?
0: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
0: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना, वो डायरेक्टर है चंद्रा बारू, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: संगीत सब जगह सुना जाता है, कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गजलों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
1: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
0: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज अहमद फैज, नदीम कासमी, अली रजा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप जरूर सुनवाइए। फैज अहमद फैज की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी

0: बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
1: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
0: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
1: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
0: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल

0: और क्या अभी भी आप
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। हमें मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं।
1: तो बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को, फिल्मों से
1: रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुके होंगे, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
0: तो कैसे रिस्पांस रहता है लोगों का?
1: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुंच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे, और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
0: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खास तौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
1: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
0: और ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
1: जी,
0: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
1: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ।
0: अच्छा।
1: और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
0: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
1: जी,
0: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता है, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
1: जी मैं दारेसलाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दारेसलाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
0: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
1: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूजिक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूजिक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए,

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइस था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हूँ?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई

0: कमल बारोड जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेल्युलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्युलॉइड।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में लाइव। ये नायाब रिकॉर्डिंग और इससे आगाज रंग तरंग का।

सरकना है, सरकते सरकते सरक

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: अपने हाथों की लकीरों में सजा ले मुझको, मैं हूं तेरा, तू नसीब अपना बना ले मुझको।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक

0: संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे।
1: श्रोता अभी सुन रहे थे विविध भारती सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओ, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।
2: श्रोताओं, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षा वन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षा वन से मिलता है।
2: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
2: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलम्बिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
2: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
2: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ

0: रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है
1: जी।
0: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
1: जी जी जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है
1: जी।
0: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
1: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
0: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है
1: जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
1: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
5: I am fine, ma'am.
6: How are you, ma'am?
3: I'm good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
5: Yes, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes,
6: ma'am. Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
7: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
7: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
8: Ma'am, my dog shakes its tail at me.
3: Oh, that's lovely. You have a very nice dog. I'm very happy that you love pets. All right. What about you, Lavish?
9: Ma'am, when I come home, my cat jumps and sits on my lap.
3: Oh, that's so exciting, isn't it?
4: Yes, ma'am.
3: All right. So, we spoke about our animals. What about birds? Do you like birds?
4: Yes, ma'am.
3: Can you name some birds?
6: Sparrow.
3: Okay, Vanya. Good. That's a beautiful small bird. Okay, Soham, you tell.
6: Peacock. It dances so well. It looks so pretty.
3: Yes, peacock is a colorful bird.
9: Ma'am, parrot.
3: Oh, yes. Parrot is a mimic bird. But, children, you have missed a bird. Do you know which bird is missing?
10: Any guesses?
3: Okay, I'll give you a clue. It calls... Absolutely right. Children, I remember a lovely story of a crow. Would you like to listen?
4: Yes, ma'am.
6: It will be fun.
3: So, I'll narrate the poem. Repeat after me. There once was a crow. He was black.
4: He was black.
3: As you know.
4: As you know.
3: how to be beautiful.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
2: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
2: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे

0: तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए? क्या ये सच है राजू?
1: दीदी वो तो मैंने...
0: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
1: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर...
0: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
1: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
0: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
1: भोजन और पानी?
0: हाँ राजू, तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ?
1: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
0: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
1: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: हाँ अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी वाह ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
0: देखा बेटा ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: लो मालिक काका, ये तो मैंने कर दिया।
1: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
0: मगर ये तो बताओ मालिक काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
0: गेंदे का पौधा?
2: जी।
0: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
1: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
0: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
0: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
0: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
1: राजू बेटा
0: जी?
1: अच्छा अब घर चलें?
0: जी धन्यवाद मालिक काका।
2: अरे बेटा
1: चलो बेटा।
2: जी
0: चलिए दादाजी।

0: राजू सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: हाँ। अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर

0: पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
1: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
2: आहा, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
1: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
2: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
1: हाँ दीदी,
2: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
1: दीदी, ये तो बहुत ही गलत काम है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। FM 102 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता अब सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में बैजू बावरा फिल्म का गाना। इसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीत से संवारा है नौशाद ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आपने

की है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में कमर जलालाबादी का लिखा और ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम रागिनी।

हमारी अगली पेशकश सावन की घटा फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, लिखा है सच बिहारी ने और संगीतबद्ध किया है ओपी नैयर ने।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार है मजू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर, फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूं।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे। श्री शर्मा चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव अमरीश कुमार ने लोगों से घबराहट में पेट्रोल डीजल की खरीद और भंडारण नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि

प्रदेश में ईंधन की बढ़ती मांग के बावजूद पर्याप्त स्टॉक है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी हुई है। राज्य में सहकारिता उपभोक्ता भंडार और क्रय विक्रय सहकारी समितियों की ओर से चलाए जा रहे सभी दवा बिक्री केंद्र और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आज खुले हैं। ये केंद्र सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 538 दवा केंद्र संचालित हैं, जिन पर लगभग 2000 तरह की दवाइयां उपलब्ध है। वहीं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर कई स्थानों पर मेडिकल स्टोर बंद रखे गए हैं। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर ये बंद रखा है। जयपुर में जीएसटी चोरी और फर्जी बिल मामले में वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। सघन जांच के दौरान अवैध आईटीसी के जरिए करीब 13.5 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी के आरोप में मुरलीपुरा निवासी नितेश कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। उसने विभिन्न फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर जीएसटी चोरी की थी। प्रदेश में प्री डीएलएड परीक्षा कड़ी सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी के बीच ली जा रही है। 2 पारियों में हो रही इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को सघन जांच के बाद प्रवेश दिया गया। सभी केंद्रों की लाइव फीड जयपुर स्थित कमांड सेंटर तक पहुंच रही है, जहां आईटी और एआई विशेषज्ञ रियल टाइम निगरानी कर रहे हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित हवलदार मेजर पीरू सिंह की जयंती आज श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर झुंझुनू स्थित उनके स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने मां भारती के वीर सपूत को नमन किया। गौरतलब है कि 1948 में जम्मू कश्मीर में दुश्मनों का सामना करते हुए हवलदार पीरू सिंह ने असाधारण वीरता का परिचय दिया था। दुश्मनों की चौकियों को ध्वस्त करते हुए वे गंभीर रूप से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही है। दिन के साथ ही रातें भी काफी गर्म हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए लू का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। 2 जिलों में हीटवेव का ऑरेंज और 14 में येलो अलर्ट बताया गया है। कल चित्तौड़गढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। इसके अलावा श्रीगंगानगर, अलवर और पिलानी में भी पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। राजधानी जयपुर, फलौदी, चित्तौड़गढ़ और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस मापा गया। सिरोही को छोड़कर लगभग सभी जिलों में दिन का तापमान 40 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से आगंतुक महात्मा गांधी के एआई आधारित 3D अवतार से बातचीत कर सकेंगे। आधुनिक तकनीक से तैयार ये 3D अवतार बापू के विचारों और व्यक्तित्व को जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा। ये संग्रहालय का तीसरा एआई आधारित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। इससे पहले संग्रहालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के एआई होलो बॉक्स भी शुरू किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

गुलजार साहब के बोल, गुलमुहर गर तुम्हारा नाम होता, क्या तो गाना है देवता फिल्म का। और अमूमन लोगों को गुलमुहर शब्द से यही एक गाना याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक और गाना है गुलमुहर शब्द से। पहले वो सुनवाते हैं, फिर आपके कमेंट्स की बातें।

ये आशा भोसले की आवाज नीरज के बोल, और ये जो गाना है ये बहुत ही कम चर्चित गाना है। फिल्म का नाम मैं आपको फिलहाल नहीं बताऊंगा। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और वो कमेंट्स जो हैं अब आप तक पहुंचाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर शब्द के दूसरे गाने का इंतजार रहेगा क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमारे फिल्मी ज्ञान में वृद्धि होगी। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने आज का टेक्स्ट पढ़ के ये अंदाजा लगाया है कि कौन कौन से गाने हो सकते हैं। एक श्रोता लिखती है कि गुलमोहर के लाल लाल फूल खिल गए, ये दूसरा गीत गुलमोहर शब्द पर आधारित है। ये किसी श्रोता के पिताजी ने उनको ये सजेशन दिया है। इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। जैसे एक श्रोता कहते हैं कि आज पंछी नदियां पवन के झोंके ये गाना जरूर सुनाई देगा। एक श्रोता लिखती है कि मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक नहीं दो गुलमोहर के पेड़ हैं, एक बगीचे में और एक सड़क के किनारे, सच मानो जैसे गले लगने के लिए तैयार हैं। आज सुबह देखा एक छोटा सा पंछी गुलमोहर पर अटखेलियां कर रहा था। जरा सोचिए कि गर्मी जैसे जैसे अपने शबाब पर होती है, दो ऐसे पौधे या पेड़ हैं जो ज्यादा ही खिल उठते हैं, एक तो गुलमोहर और दूसरा गुलाबी रंग का जो बोगनविलिया होता है। यूं लगता है जैसे कड़ी धूप का इन पर कोई असर नहीं है, मानो जिंदगी में हमें ये सबक सिखा रहे हों कि धूप कितनी भी तेज हो आपको अपनी चमक नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मुस्कान नहीं छोड़नी चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये गाना आज के इस कार्यक्रम में आ सकता है। उसके अलावा मन क्यों बहका आधी रात को, ये भी आ सकता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल लंबी सी रिसर्च कर डाली है, फूलों की महक, ये जो जुमला था ये हमारे आज के टेक्स्ट में शामिल था। तो कई सारे गाने उन्होंने लिखे हैं, ए गुलबदन फूलों की महक, उसके अलावा इन्होंने फूलों के रंग से, और फिर और भी, अरे बाप रे, इतने सारे गाने लिखे हैं। बहुत लंबा ये कमेंट है जिसमें फूलों पर पूरी जैसे रिसर्च कर दी गई है, सुंदर बात। इसके अलावा एक श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने शानदार तरीके से कुछ ऐसे गानों का जिक्र किया है जो आज के इस कार्यक्रम में बज सकते हैं, तो ये कमाल की बात है। और उसके अलावा अभी एक श्रोता लिखती है कि यूनुस जी, गर्मी वाकई इतनी तेज हो गई है, इस समय हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं बड़ौदा से अजमेर की तरफ, कोच में तो एसी की ठंडक है लेकिन बाहर आग बरस रही है। ट्रेन जब साबरमती नदी के ऊपर से गुजर रही थी तो हमने देखा नदी लगभग सूखने की कगार पर पहुंच गई है। अहमदाबाद की शान साबरमती नदी इतनी ज्यादा सूख गई है पर किनारे पर पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे हैं, गजब। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज का जो आपने पैराग्राफ पोस्ट किया है उसमें पेड़, पहाड़, नदी, पंछी, सागर, फूलों की महक जैसे दिख रहे हैं, इन सब पर गाने सुनाई दे सकते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने जिया की पीर पर अपनी बात लिखी है। जाहिर है टेक्स्ट में जब जिया की पीर शब्द हो तो आप पूरी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गाना कौन सा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये गाना सुनवाते हैं, साथ में ये सवाल कि फिल्म दस्तक के निर्देशक कौन थे, एक तो ये बात, और फिल्म दस्तक के लिए किस किस को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

कोई गाना जब खत्म हो जाता है तो लगता है अरे ये तो खत्म हो गया। इतना दिल की गहराई तक पहुंचने वाला गाना मदन मोहन जी की ये आवाज और इस गाने को ज्यादा ऊंचाई पर ले जाती है ये आवाज। एक श्रोता लिखते हैं कि दस्तक राजेंद्र सिंह बेदी ने निर्देशित की थी और ये उन्हीं के लिखे एक नाटक पर आधारित फिल्म थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1 मई को सुरीला सफर कार्यक्रम का पहला एपिसोड आपने किया था और अब आप इस कार्यक्रम में दूसरी बार आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दस्तक फिल्म के लिए संजीव कुमार और जया भादुड़ी को नेशनल अवार्ड दिया गया था। भाई जया जी इस फिल्म में कहां थी? मैं आपको बताता हूं, दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था संजीव कुमार को, रेहाना सुल्तान को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, मदन जी को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और एक शानदार अवार्ड था कमल बोस को बेस्ट सिनेमेटोग्राफर का अवार्ड। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बी आर इशारा को अवार्ड मिला था, ये तो समझ में नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमोहर शब्द का जो दूसरा गाना आपने सुनाया वो मैं पहली बार सुन रही हूं। जी हां, बहुत ज्यादा चर्चित गाना नहीं है। इसके अलावा सही उत्तर कई श्रोताओं ने दिए हैं नेशनल अवार्ड वाले जो दस्तक फिल्म से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि जिस भी शहर, जिस भी इलाके, जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं, किस किस के इलाके में गुलमोहर और उसके अलावा अमलतास इस समय बहुत खिल रहा है, बहुत ज्यादा खिल रहा है। अमलतास की झालरें कितनी खूबसूरत होती हैं। अगर कमेंट बॉक्स में आप फूल अमलतास की तस्वीर भी अगर आपके आसपास है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकें तो भी बड़ा अच्छा लगेगा। और गुलमोहर और अमलतास से आपको कितना लगाव है, इसके अलावा चंपा, इन तमाम फूलों पौधों के बारे में हमें जरूर बताइएगा। और आपने अपने घर में, अगर आप फ्लैट में रह रहे हैं या अगर आप जमीन पर आपका घर है, तो अपने बगीचे में कौन कौन से पौधे और फूल लगा रखे हैं, इसका भी जिक्र जरूर कीजिएगा। कुछ और कमेंट पढ़ते हैं। एक श्रोता है कि व्यस्त होने के कारण मैं देर से इस कार्यक्रम में शामिल हुआ हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि आज गाने पर्वत सागर किनारे

गुलमोहर नदी पंछी जैसे शब्दों पर आएंगे। बिल्कुल सही है। एक श्रोता लिखते हैं कि गुलमोहर की टहनियों पे ख्वाब सा बिछ गया है, दिल हमारा आज फिर से इश्क में गिर गया है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो ये लिख रहे हैं कि गुलमोहर शब्द वाला जो गुलजार साहब का गाना है उसका अंदाजा तो लगभग सभी श्रोताओं ने लगा लिया था। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, क्योंकि अब हो गए हैं 1:17 और विविध भारती पर गूंज रहा है ये गाना। तब तक आप बताइए कि आपने अपने घर में कौन कौन से पौधे लगा रखे हैं और आपके गमलों में कौन से फूल खिल रहे हैं।

इतना इंटेंस गाना है कि दिल की गहराइयों में उतर जाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि आपने गुलमोहर और अमलतास की तस्वीर तो मंगा ली, लेकिन विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो कमेंट हम करते हैं उसमें तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से वाकिफ नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि यहां तस्वीर पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं। कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, आप सभी का धन्यवाद। एक श्रोता लिखती है कि हमारे घर में बोगनविलिया बहुत रंग के खिले हैं और इसके अलावा गुलाब के बहुत सारे फूल हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने तुलसी का पौधा लगा रखा है और उनका फेवरेट फूल गुलाब है। वो कहती है कि हमारे शहर में गुलमोहर नहीं दिखता, लेकिन यात्रा करते समय रास्ते में जब गुलमोहर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते हुए मोहल्ले में गुलमोहर, अमलतास, पलाश और कचनार के बड़े बड़े पेड़ जब दिखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि गुलमोहर और अमलतास के बहुत खूबसूरत पेड़ हमारे घर के आसपास हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने

गुलाब जूही रात की रानी और शेवंती लगा रखा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि गर्मी होने पर भी इनके यहाँ गुड़हल और गुलाब में बहुत फूल आ रहे हैं। और इसके अलावा अमलतास के पेड़ बहुत सारे श्रोताओं के शहरों में और उनके मोहल्लों में हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर पर आसो पालव, जासूद, बारामासी, गिलोय, तुलसी और ग्रीन टी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ गुलमोहर बहुत ज्यादा खिला हुआ है। एक और श्रोता छत्रपति संभाजी नगर से लिख रहे हैं कि हमारे शहर में बहुत गुलमोहर हैं। एक और श्रोता है जिनके आसपास गुलमोहर और अमलतास के बहुत सारे पेड़ हैं और अमलतास के पीले पीले फूल और गुलमोहर के लाल लाल फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहती है मेरा पूरा पटना शहर अमलतास गुलमोहर के पेड़ों से भरा हुआ है और पार्क में चंपा भी खिले हुए हैं जिन्हें देखना बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जिन्होंने मनी प्लांट लगा रखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे एक दोस्त के घर में बहुत सारे गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे यहाँ सड़क के दोनों तरफ अमलतास के वृक्ष लगे हैं और इनके पत्ते इस ऋतु में झड़ जाते हैं और उसके पीले वृक्षों से पीले फूलों से वृक्ष सज जाता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। कितने श्रोताओं ने गुलमोहर, अमलतास, सेवंती, चंपा, इन तमाम फूलों की बातें लिखी हैं। फूल कितने दिल के हमारे करीब होते हैं। अब आगे एक गाना आएगा जो फौरन नहीं आएगा बल्कि इसके बाद दूसरे या तीसरे नंबर पर हम जो गाना बजाएंगे उसमें नदी की बात करेंगे। आपके आसपास कौन सी नदी है और उस नदी के किनारे कौन सी ऐसी जगह है जहां आपको वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है? किस नदी के किनारे वक्त बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है, ये बात लिखिएगा। शगुन फिल्म की हीरोइन कौन थी ये भी बता सकते हैं आप।

ते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। भाई सृजन भारती के इस आयोजन के बारे में हमने आपको सूचना दी। मुंबई के जो श्रोता हैं वो जरूर आएं कल शाम 6:00। एक बेहतरीन आयोजन और विविध भारती के सभी साथियों से मिलने का और सेल्फी लेने का मौका तो होगा ही होगा इस आयोजन में। तो जो मुंबई और आसपास के श्रोता हैं अगर संभव है आपके लिए तो जरूर आइएगा। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आ गए। मैं तो नर्मदा जी के किनारे महेश्वर घाट पर समय बिताना चाहूंगी देवी अहिल्या की राजधानी में। ये एक श्रोता का कमेंट है। एक और श्रोता राजस्थान से हैं, कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इतनी भीषण गर्मी में भी जो पेड़ हरा सघन छोटी पत्तियों से आच्छादित रहता है और मरुभूमि के सभी जीव जंतुओं को घनी छाया और भोजन देता है, इसकी फलियों से सुप्रसिद्ध और स्वादिष्ट सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, वो है खेजड़ी, संस्कृत में से शमी वृक्ष कहते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं गोमती माँ बहती है हमारे शहर में और रिवर फ्रंट पर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो बनारस के हैं और 80 घाट के किनारे बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखना बड़ा सुकून देह होता है। शगुन फिल्म की जो हीरोइन है उनके बारे में हमारे श्रोताओं ने लिख दिया है भाई कि वो वहीदा रहमान हैं। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखती हैं कि फ्लैट में रहती हूं और सोसाइटी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, लोगों की बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने बहुत से अपने फ्लैट में गमले में पौधे लगाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक श्रोता है जो सूरत से हैं और कहते हैं कि तापी नदी है लेकिन अफसोस है कि उस नदी में थोड़ी गंदगी हो गई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अहिल्या नगर में रहते हैं और यहां बहुत गुलमोहर के पेड़ हैं। एक और श्रोता के शहर के पास गक्कर नदी बहती है। एक श्रोता ऐसी है जो गंगा नदी के किनारे रहती है और मायके गई तो सोन नदी के किनारे और पटना शहर में गंगा नदी के किनारे घूमना बड़ा सुखद होता है, ये कह रही हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं नागपुर में रहता हूं और कन्हान नदी चूंकि 15 किलोमीटर दूर है इसलिए बहुत दूर लगती है और वहां जाना मुश्किल होता है। एक श्रोता ऐसे हैं जिनकी घर से 100 मीटर की दूरी पर महानदी है और बैराज से शाम का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। एक और श्रोता है माधुमालती गुड़हल और बारामासी के पेड़ इन्होंने लगा रखे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो कहते हैं कि अमलतास का पेड़ उनके घर के सामने वाले गार्डन में है और चाहे कितनी भी धूप हो इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं तो बहुत ही ठंडी हवा मिलती है और राहगीर अक्सर इस पेड़ के नीचे गर्मी से राह पाने के लिए निजात पा लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखती है कि गुलमोहर को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है और शानदार है। तो ये तमाम चीजें हैं और बहुत इतने कमेंट्स हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सारे कमेंट्स पढ़ने में तो बहुत देर लग जाएगी। बात नदी के गाने की हो रही थी, कितने सारे श्रोताओं ने नदी के गानों की बात की, तो मैंने सोचा कि एक मोंटाज कर लेते हैं।

0: नदिया से दरिया।
1: लेकिन लेकिन नदी का ये गाना भी क्या है, प्यारा है।
2: नदी न जाओ शाम पैया पर, नदी नारे न जाओ शाम पैया पर।
1: और नदी के गानों का सरताज ये भी तो है।

0: आई कंगना नदिया किनारे।
1: लेकिन इन तमाम गानों के बावजूद आज इस कार्यक्रम के लिए मैंने चुना है ये गाना जो नदी के किनारे की बात करता है। किसी नदी के किनारे सबसे यादगार पिकनिक आपका कौन सा था ये जरूर बताइएगा, हमें पढ़कर अच्छा लगेगा और कमेंट शामिल किया जाए।

0: है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा, ये हवा ये नदी का किनारा।
1: क्या शानदार गाना है, नदी के किनारे पिकनिक की जो यादें हैं उसे ताजा कर देता है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और कोशिश के सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाएं। एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन कभी बहुत धीरे धीरे अपने उत्साह वापस ले लेता है, तब उन धीमे दिनों में चटकती गर्मी में गुलमोहर को देखना और ऊंचे पहाड़ों को भी और एक कदम बढ़ाकर उनको गले लगाकर अपने जिया की पीर कह देना, ये पर्वत ये पहाड़ ये पेड़ आपका सारा दर्द सूख लेंगे, कभी ये करें तो जीवन महक उठेगा। शानदार बात आपने लिखी है। बस यही तो आज हमारे इस कार्यक्रम के लिए टेक्स्ट पोस्ट करने का मकसद था, कुदरत से जुड़ें और उसके साथ अपने दुख दर्द साझा करें। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि डबरा के पास धूमेश्वर महादेव का मंदिर, सिंध नदी अपने रौद्र रूप में थी, हम लोग गए थे पिकनिक पर, बेटा बैठा था, अचानक पानी बढ़ गया, तब पुलिस ने एकदम अलर्ट किया और हम लोग एकदम हड़बड़ा के वहां से भागे थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में नदी के गानों का जो मोंटाज आपने प्रस्तुत किया उससे बहुत ही ठंडक महसूस हुई, शुक्रिया आपका, मकसद यही था। हरिद्वार और वाराणसी में गंगा नदी के किनारे वक्त गुजारने का मौका मिला था, बड़ा सुकून मिला था, ये एक श्रोता की बात है। एक और श्रोता है जो अमर प्रेम फिल्म के गाने को याद कर रहे हैं। एक श्रोता ऐसे हैं जो गुड़हल के बारे में अपनी बातें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही फायदेमंद पौधा है और इसके तमाम तरह के फायदे के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर पींच नदी है, वहां हम पिकनिक मनाने गए थे, खाना पकाया था और बहुत मौज मस्ती की थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो

बहुत ही यादगार पिकनिक हमने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मनाई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि अभी थोड़े दिन पहले अयोध्या में सरयू नदी के किनारे, बनारस में गंगा और प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे जाने का मौका मिला था, बहुत अच्छा लगा। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपका अंदाज निराला है, बहुत ही प्यारा मोन्टाज और नदी शब्द पर आपने एक साथ पांच गाने सुनाए, कितना अच्छा लगा, शायद ऐसा पहली बार हुआ है। एक और श्रोता है जो कहती है कि हमारे विशाखापट्टनम में नदी तो नहीं है लेकिन सागर का किनारा है जहां जाकर अच्छा लगता है। आप में से कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जिन्हें समंदर का किनारा बहुत पसंद है? अगर समंदर नहीं देखा तो वो भी बताइए। कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो जिंदगी में अभी समंदर देखने का इंतजार कर रहे हैं? कौन कौन से ऐसे श्रोता हैं जो समंदर के किनारे जा चुके हैं या रहते हैं?

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंबई में जुहू बीच और अक्सा बीच बहुत बार देखने का मौका मिला है और चेन्नई में मरीना बीच भी देखा है और लहरों के बीच जाकर आनंद लिया है। एक और श्रोता है जिन्होंने मुंबई में जुहू चौपाटी कई बार देखी है और शाम के समय डूबते सूरज को देखना दिल खुश कर देता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने पुरी, गोपालपुर, चांदीपुर और पारादीप के समुद्र तट देखे हैं और बंगाल की खाड़ी के पास के इलाके में वो रहते हैं। एक और श्रोता जिन्होंने लिखा है कि मुंबई, पणजी, रामेश्वरम और कन्याकुमारी, इन तमाम जगहों पर जाकर देखा है समुद्र का किनारा। एक और श्रोता कहते हैं कि 2003 के आसपास वो मुंबई में रहते थे और जुहू और हाजी अली के किनारों पर जाने का मौका उन्हें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए कई राज्य हैं और कुछ इलाका अरब सागर से जुड़ा है, कुछ हिंद महासागर से जुड़ा हुआ इलाका भी है। फूलों के बारे में भी लगातार कमेंट आ रहे हैं। लाल गुलमोहर के अलावा जामुनी रंग के गुलमोहर जिसे जकरांडा एवं नीला गुलमोहर कहते हैं, वसंत ऋतु में मार्च अप्रैल के महीने में इस पेड़ में बहुत फूल आते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती के मेल घाट में तो बहुत ही आकर्षक गुलमोहर होते हैं। एक श्रोता है जो कहते हैं कि कन्हान नदी हमारे शहर के पास बहती है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भोपाल के हैं, चारों तरफ तालाब, जंगल और पहाड़ हैं, गुलमोहर के गोल्डन शावर की बहार है और दिल्ली

0: के एक श्रोता कहते हैं कि यमुना नदी है तो सही, लेकिन प्रयागराज जाते हैं और संगम में स्नान करते हैं। एक और श्रोता भेड़ाघाट को याद कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप नदियों को, सागर को, सबको याद कर रहे हैं। और अब चूंकि टेक्स्ट में हमने बहुत अलग अलग तरह के गानों का जिक्र किया था, तो अब ये गाना,
1: ओ अपने,
0: इस गायिका का नाम बताइए, ये कौन है?

मुबारक बेगम की आवाज सभी श्रोताओं ने पहचान ली। एक श्रोता का बड़ा प्यारा कमेंट आया है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने जिंदगी में अभी तक समंदर नहीं देखा और उन्हें समंदर देखने का इंतजार है। इसके अलावा कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने समंदर देखा। जरा सोचिए कि ये पेड़ पौधे, ये नदियां, ये समंदर, ये खाड़ियां, ये गुलमोहर, ये अमलतास, ये तमाम फूल पौधे नहीं होते, कुदरत के ये नजारे नहीं होते तो ये दुनिया कितनी सूनी होती और हम कितने उदास होते। और अब जगजीत सिंह की आवाज में ये गाना बज रहा है, इसे लिखा किसने है ये बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि अब तक इस कार्यक्रम में जो भी गाने बजे उसमें सबसे सबसे सबसे ज्यादा प्रिय गाना आपका कौन सा था।

अर्थ फिल्म का ये गीत कैफी आसमी का लिखा हुआ था। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। कई ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि वो अपनी जिंदगी के सारे सुख दुख ईश्वर से साझा करते हैं। कुछ श्रोता ऐसे हैं जो विविध भारती से अपने सुख दुख साझा करते हैं। कुछ श्रोता अपनी शरीकी हयात से अपने सुख दुख साझा करते हैं। एक श्रोता ऐसी हैं जिन्होंने लिखा कि बहनें होती हैं जिससे अपना सारा सुख दुख बांटा जा सकता है। बहुत ही कमाल के जवाब आप सभी ने दिए हैं। सुख दुख बांटने के लिए कभी विविध भारती, कभी बहन, कभी परिवार, सुंदर बात। और इसके अलावा नदी और समुद्र से जुड़ी आपकी यादों की तो इतनी बौछार है कि स्टूडियो में एक अलग ही ठंडक महसूस हो रही है।

बहुत ही प्यारा और बहुत पसंदीदा गाना इस वक्त आ रहा है। इस फिल्म की हीरोइन कौन थी ये बताइएगा।

क्या बात है, इतना सुंदर ये पंछी का गाना। बंदिनी फिल्म का गीत और इस फिल्म में नूतन ने क्या गजब अभिनय किया था। इतने सारे श्रोताओं के समंदर और नदी पर कमेंट आ रहे हैं कि आज मुझे अलग से बैठकर ये सारे कमेंट्स पढ़ने होंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि उड़ीसा में जो कटक शहर है दो नदियों के बीच बसा है, महानदी और महानदी से एक शाखा निकलती है जिसे काठजोड़ी नदी कहते हैं। इन दोनों नदियों के बीच में कटक बसा है। शहर के चारों तरफ पुल हैं और कटक को पानी का शहर भी कहा जाता है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स। सोमनाथ, मुंबई, गोवा, तिरुवनंतपुरम, रामेश्वरम, विशाखापट्टनम और बंगाल का समुद्र देखा। कितने सौभाग्यशाली हैं हमारे ये श्रोता कि इन्होंने चारों तरफ जो भारत में समुद्र हैं वो सभी देख रखे हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि विविध भारती परिवार है और हम अपना सुख दुख यहीं से साझा करते हैं। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहती है मैं अपने पति से, एक श्रोता है जो अपने बेटियों से अपने सुख दुख साझा करती हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम बातों के लिए। और इतनी सारी बातें हुई फूलों की, पंछियों की। मैंने बताया कि विविध भारती के कंपाउंड में बहुत सारे तोते आते हैं। आपके आसपास, आपके घर, आपकी खिड़कियों पर कौन से पंछी आते हैं जरूर बताइए। और अब आ रहा है फूलों का गाना, वो गाना जिससे सभी को बहुत प्यार है, पर आपको ये बताना है कि आपको किस फूल से सबसे ज्यादा प्यार है। किसी एक फूल का नाम लो।

कितनी सुंदर बात है, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। कितने सारे श्रोता हैं जिन्होंने अपने पसंदीदा फूलों के नाम लिए हैं। किसी को गुलाब पसंद है, किसी को हरसिंगार बहुत पसंद आते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हरसिंगार के फूल जब झड़ते हैं तो लगता है मानो जमीन पर तारे निकल आए हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर के आसपास गोरैया बहुत नजर आती है, और इसके अलावा बहुत सारे तोते और चिड़ियाएं आती हैं, कबूतर बहुत ज्यादा आते हैं, आजकल हम दाना पानी रखते हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि एक बहुत छोटी सी प्यारी सी चिड़िया इनके घर में बहुत बार आती है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि तोते, काबर, कोयल, कबूतर और कुछ अज्ञात पंछी नजर आते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही है कि इतने सारे पंछी नजर आते हैं, सबको नाम से नहीं जानती पर मैना को पहचानती हूं। सभी श्रोताओं ने बहुत सारे अलग अलग पंछियों के नाम लिए हैं, और अब चूंकि कार्यक्रम से जाने का वक्त आ गया है।

लेकिन एक गाने का सुराग मैंने अपनी आज की इबारत में रख छोड़ा था, वो आज का आखिरी गाना है। आज का सुरीला सफर कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।

दोस्तों ये आज का सुरीला सफर कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम आज हमने कुदरत और अपने दिल की बहुत प्यारी और नाजुक बातों से सजाया था। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। चलते चलते एक दरखास्त है, जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम आपने यूनुस खान के संग सुना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आज बुधवार का दिन है और तारीख है 20 मई। कैलेंडर की तरफ आप देखेंगे तो सोचेंगे ये कौन सा खास दिन है, लेकिन आज का दिन पूरी दुनिया में विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मधुमक्खियों का दिन, मतलब इसका क्या मतलब है? तो मैं आपको बताता हूं कि मधुमक्खियां हमारी जिंदगी के लिए और इस दुनिया की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मधुमक्खियां परागण करती हैं और ये मधुमक्खियां हमारे इकोसिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करती हैं। सन 2017 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 मई को मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था और ये दिन मनाया जाता है मधुमक्खी पालन के जन्मदाता।

नेता एंटोन जानसा की जयंती के मौके पर। मधुमक्खियों को बड़ी तेजी से खत्म किया जा रहा है और इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है मधुमक्खियां नहीं होंगी तो फूल पौधे और फसलें नहीं होंगी। खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए, साथ में सोचिए मीठा बोलने के बारे में।

बचपन में हम सबको किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि मधुमक्खियां फूलों का रस लेती हैं और पराग के कणों को यहां वहां बिखेर देती हैं। इस तरह से नए पौधे पैदा होते हैं और इसी तरह से दुनिया में हरियाली बढ़ रही है, फूल बढ़ रहे हैं, पौधे बढ़ रहे हैं। पर आजकल जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उससे मधुमक्खियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराता चला जा रहा है और इसका सीधा सीधा असर हमारे यहाँ फूलों और पौधों की विविधता पर भी पड़ रहा है। आप अक्सर ही देखेंगे कि कॉलोनियों में या ऊंची ऊंची इमारतों में मधुमक्खियों के छत्ते पड़ जाते हैं और उन्हें हटाने के लिए लोगों को बुलवाया जाता है। उसके बाद आप राहत की सांस लेते हैं कि हमने मधुमक्खियों को हटा लिया, हमें सुकून मिल गया। पर जरा ये सोचिए कि ये मधुमक्खियां पर्यावरण के संतुलन के लिए कितनी जरूरी थी, उनकी जगहों पर

आपने कब्जा कर लिया और इसलिए मधुमक्खियां आपके घरों के छज्जों पर अपने घोंसले बना रही हैं, अपने छत्ते बना रही हैं। वो कहां जाएंगी, इसके बारे में किसी ने सोचा? खैर, मधुमक्खियों के बारे में सोचिए और सोचिए फूलों को बचाने के बारे में, जो मधुमक्खियों की जीवन रेखा है।

20 मई का दिन विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है और त्रिवेणी के जरिए हम आपको रोज किसी न किसी मुद्दे पर जागरूक करते हैं। आज मधुमक्खी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। जरा सोचिए कि मधुमक्खियां फूलों का रस ग्रहण करती हैं और उसे शहद में बदल देती हैं। यानी मधुमक्खियों का जीवन संसार में मिठास बढ़ाने को समर्पित है। हम मधुमक्खियों से मीठा बोलना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से संसार का भला करना सीख सकते हैं। हम मधुमक्खियों से ये सीख सकते हैं कि दुनिया में बोलों की मिठास बढ़े। लेकिन ये जो मीठे बोल है ना, कई बार इनके पीछे भी कुछ बदमाशियां और चालाकियां छिपी होती हैं। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि

0: आज की त्रिवेणी थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर। ये त्रिवेणी आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग सुनी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULPGM-MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने

0: के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएलपीजीएम V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड़ और ड्रोन

0: ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है।

0: हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
2: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। DRDO ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मुकेश की आवाज में संगम फिल्म के गाने के साथ। बोल हैं हसरत जयपुरी के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

हमारी अगली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं एस एच बिहारी और संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

अगला गाना हमने लिया है वक्त फिल्म से। इसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि।

0: सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते
1: हैं, हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में भावी फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। लीजिए अब सुनिए शकील बदायनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम कोहिनूर।

अब आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश की आवाज में कटी पतंग फिल्म से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं आरडी बर्मन। श्रोताओं, आप सुनिए ये गीत और अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: मैं हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी और मेरे साथ हैं
1: आरती श्रीवास्तव।
0: आप सभी को हमारा
1: और मेरा यानी कि आरती श्रीवास्तव का
0: नमस्कार। कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत बढ़िया।
0: हाँ, बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त लग रही है और काफी खुश भी नजर आ रही हूँ, क्या बात है।
1: बस थोड़ा सा जब ब्रेक मिल जाता है ना, इतनी ऐसी जो रोज की हमारी दिनचर्या होती है ना, तो फिर अपना एकदम पूरे चार्ज हो जाते हैं हम लोग।
0: क्या बात है, ऐसा कौन सा ब्रेक तुमने ले लिया? हालांकि बहुत दिनों बाद मिली हो और मुझे एक बार तो घबराहट भी हो गई थी कि आरती मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आज जैसे ही तुम मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई।
1: बिल्कुल, ये आपका प्यार है जो आपने मुझे इतना नोटिस किया। और मैं गई थी मतलब बहुत ज्यादा यात्राओं पे।
0: अच्छा,
1: यात्रा की बात तो हम लोग करते रहते हैं, मैंने सोचा जाना भी चाहिए, बात करने से कुछ नहीं होता। तो मैं गई थी इस बार, मैं गई मथुरा, वृंदावन और अयोध्या।
0: अरे वाह।
1: और साथ में बरसाने और आगरा, मतलब जो भी चीजें रास्ते में पड़ती गई हम लोग जाते रहे।
0: क्या बात है, क्या बात है, जब चेहरे की चमक बता रही है
1: बिल्कुल,
0: और आपकी मुस्कुराहट और हंसी बता रही है कि आप बहुत सुंदर यात्रा करके लौटी हैं।
1: बिल्कुल,
0: कैसी रही यात्रा और क्या रहा?
1: बहुत अच्छी रही और बहुत चीजें बदल भी गई मंदाकिनी जी।
0: अच्छा।
1: वहां जब हम लोग गए थे तो पहले जैसे बहुत परेशानियां होती थी बरसाना साइड जाने में कि गाड़ी करो, ये करो, तब जाओ वहां तक पहुंचो, आपको एक मंदिर है जो वहां का प्रसिद्ध। तो लेकिन इस बार था रोपवे शुरू हो गया वहां पे।
0: अच्छा।
1: तो बस आप रोपवे तक पहुंची अपनी गाड़ी से या किसी भी ऑटो से, किसी चीज से, और उसके बाद बहुत ज्यादा रास्ता भी नहीं है बरसाने का। अगर मथुरा से जाते हैं आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे, उससे भी कम में भी कभी कभी पहुंच सकते हैं 20-25 मिनट में अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं है तो। और रोप वे पकड़िए, सीधे आपको जहां मंदिर है वहीं पे ही उतारता है वो।
0: अरे वाह।
1: और बस आप मुश्किल से 10 कदम चलेंगे मंदिर आ गया।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, तो बहुत अच्छा हो गया। अयोध्या भी गए तो वहां पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है, सिक्योरिटी भी उसी हिसाब से है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इंतजाम किया हुआ है।
0: आपके कहने का मतलब ये है कि अब यात्रा उतनी तकलीफ देह नहीं है। कई बार हम क्या होता है, निकलते तो हैं यात्रा पर रास्ते हैं या वो सुविधाएं हमें नहीं मिलती है जिससे यात्रीगण परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं कि यात्रा करने का मजा बहुत ही आता है।
1: बिल्कुल। और लेकिन आप ये भी सोच के जाइए कि जैसे अगर आप मथुरा जा रहे हैं आप, तो अगर आपको वहां मथुरा या वृंदावन में घूमना है तो आपको थोड़ा सा पैदल चलने की आपको आदत होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों को तो पहले ही रोक लेते हैं और आपको पैदल ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा और जो ई रिक्शा वगैरह चलते हैं उसकी वजह से बहुत भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक हो जाता है। इस वजह से जो पैदल चलते हैं यात्री, बहुत से लोग परिक्रमा करते हैं लेट के बैठ के, तो उनको परेशानी ना हो इस वजह से वो रोका जाता है। तो इसलिए आप पैदल चलेंगे तो अच्छी बात है ना, जितना आप पैदल चलेंगे उतना अच्छा है,
0: वो अच्छी बात है। लेकिन ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, जितने भी ये मठ है, तीर्थ जगह है, स्थान है, वहां पर हमें बहुत पहले रोक दिया जाता है ताकि जो हम लोग जा रहे हैं, दर्शक जा रहे हैं या जो भक्त जा रहे हैं, कहने का मतलब वो परेशान नहीं हो और यात्रा जो है सुचारू और शांतिपूर्वक हो जाए। और इस घूमने के जो है ना आरती, बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। देखो तुम्हें देखकर लग रहा कितनी फ्रेश नजर आ रही हो, तुमने खुद ही कहा, तो तुम्हारा मानसिक तनाव बिल्कुल दूर हो गया होगा और एक फिजिकल फिटनेस महसूस कर रही होंगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है।
0: और आत्मविश्वास बढ़ा होगा, एक नया दृष्टिकोण आया होगा यात्रा को करने के बाद, इतनी जगह घूम के आई हो,
1: इतने लोगों को देखा, सब कुछ किस तरह से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, सब चीजें देखे, बहुत
0: नई संस्कृतियों का अनुभव होता है, हमें नए अनुभव हमारे जीवन से जुड़ते
1: हैं, तरह तरह के व्यंजन खाने मिलते हैं। जो मेरा बहुत फेवरेट चीज है, मैं मुझे जगह जगह की जो क्यूजीन होते हैं, जो व्यंजन होते हैं ना, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वही चीजें हैं, एक ही चीज है जो यहाँ बनेगी और वो जो वहाँ बनेगी,
0: लेकिन फर्क होता है, स्वाद
1: बिल्कुल फर्क होता है,
0: क्योंकि पानी का, बनाने वाले का तरीके, तौर तरीके बदल जाते हैं, लेकिन हमारा जो स्वाद लेने का तरीका है वो नहीं बदलता है ना। तो यात्रा करके आपके दिमाग को सुकून मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ। और अब जो आपने प्राकृतिक सुंदरता देख ली है, फील गुड महसूस कर रही हैं,
1: बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं अपने अंदर।
0: तो चलिए सखी सहेली में आज हमारे सखी और सखा आपको सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, मतलब आपकी यात्रा वृतांत सुनकर हमने मन से इस यात्रा को कर लिया है
1: जी।
0: तो अब एक गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: जो आरती आपके आने से भी देखो चार चांद लग गए हैं, है ना।
1: बहुत प्यारा गीत लगता है
0: जी। बताइए तो देखिए आप यात्रा में इतनी खो गई कि आप ये बताना भूल गई हैं कि हमारे श्रोता जानना चाहते हैं आज के हमारे विषय क्या है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे एकदम ही इतना ज्यादा उत्साह लग रहा था कि मैं बताने ही भूल गई। तो हम बता देते हैं, अभी आज हम बात करेंगे विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर।
0: अच्छा,
1: तो जो कि बहुत ही जरूरी है हमारे लिए मधुमक्खियाँ।
0: बिल्कुल।
1: और हम बात करेंगे,
0: पर काटती बहुत बुरा है।
1: और काट चुकी है मुझे, इसलिए मुझे पूरा उसका एहसास है, पूरा एक्सपीरियंस है उसका। और हम बात करेंगे भाषाओं से किस तरह से जुड़ा हुआ है संस्कार।
0: अच्छा,
1: तो इसके बारे में तो चर्चा करेंगे, साथ ही हम चाहेंगे हमारे जो जितने भी श्रोता हैं वो सब अपने अपने विचार, अपने अपने जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो लिख के भेजा, ये बताएं कि वो उनको कितनी भाषाएं आती हैं बोलनी।
0: अच्छा ठीक है, यानी शब्द हमारा विचार आपके जो आप सेगमेंट लाई हैं
1: उसके अंदर हम बात करेंगे सद्भावना।
0: अच्छा, भाषाओं से जुड़े संस्कार में आप बताना चाहती हैं कि जी अपनी अपनी भाषाओं के बारे में हमारे श्रोता हमसे बात करें कि वो किस भाषा को जानते हैं या कितनी भाषाओं के ज्ञाता हैं। तो फटाफट लिखिए, हमारे सखा और सखियों से हम अनुरोध करते हैं कि जो भाषाओं से जुड़ा संस्कार है इस पर लिखने के साथ साथ ये भी बताइए आपने अब तक कितनी भाषाएं सीखी हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना।
1: और हम बात करेंगे आज साड़ियों का संसार, जो साड़ियों का जो विषय है उसमें हम आज हम लेकर आए हैं तंचोई साड़ी।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार आप मेरे लिए तंचोई साड़ी लेकर आई हैं।
1: साड़ी तो मैं खैर नहीं लेकर आ पाई हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत सारी मिठाइयां मैं लेकर आई हूँ।
0: बिल्कुल, वो हमें मिल भी गए, है ना जी। और शब्द हमारा विचार आपके में आज सद्भावना पर हम बात करने वाले हैं। देखिए सद्भावना कहने को एक बहुत सामान्य शब्द लगता है, सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन इसके गहरे अर्थ है। बहुत गहराई में जाकर आप इस पर अपने विचार लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके भीतर कितनी सद्भावना है दूसरों के प्रति, है ना। हम लिख तो देते हैं आरती बड़ी बड़ी बातें कि सद्भावना होनी चाहिए, बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन जब हमारा मौका मिलता है तो पता चलता है कि हमारे अंदर तो सद्भावना है ही नहीं, वो भावना ही नहीं।
1: अपने विचार लिखें, जो चीजें लिखी हुई पहले से उसमें
0: उस पर मत जाइए कि सद्भावना के विषय में क्या लिखा गया, ये बताइएगा कि आप सद्भावना को लेकर क्या सोचते हैं आपके जीवन में, आपके

0: विचारों में, आपके व्यवहार में कितनी सद्भावना है, या सामने जो आपके लोग आते हैं उनसे आपको क्या सद्भावना रूपी विचार मिलते हैं?
1: बिल्कुल, तो हम बात एक चीज और भूल रहे हैं,
0: व्यंजन, आपका बहुत ही पॉपुलर सेगमेंट
1: जो मुझे बहुत पसंद है। आज हम बात करेंगे ठेकुआ की और दाल पीठा की। दाल पीठा मेरा इतना फेवरेट है ना, मैं बनाती भी हूँ, मैं खाती भी हूँ बहुत।
0: चलिए, तो अगली बार जब आप आएंगी तो लेकर भी आएंगी दाल पीठा, हमें खिलाएंगी भी।
1: हाँ जी,
0: ठीक है। तो भाई, हम बात कर रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस की, जिसका हमें डर भी लगता है जब मधुमक्खी पास में छत्ता बना लेती है हमारे घर के आजू बाजू में कहीं, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक आध मधुमक्खी उड़ती भी नजर आती है तो बड़ा डर लगता है कि कब काट खाएगी।
1: भगाओ भगाओ जल्दी।
0: लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं रही तो दुनिया के लोग सिर्फ 4 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अनाज होगा कि नहीं, इस पर काफी मतलब शोध भी किए गए हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है अपने हमारे इकोसिस्टम, जो हमारे सिस्टम है पूरा पृथ्वी का, उसको चलाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर मधुमक्खियों के बारे में खास बातें कुछ बता रहे हैं वो, कि दुनिया की एक तिहाई खाद्य फसलें पूरी तरह से मधुमक्खियों जैसे पराग, जो परागणकों पर निर्भर है, यानी कि वो जो मधुमक्खियां हैं वो उसको पराग को जब लेती हैं और बिखेरती हैं उस पे ही निर्भर करता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि ये ना हो तो हमारे भोजन की प्लेट से अधिकांश फल, सब्जियां और मेवे गायब हो जाएंगे। मधुमक्खियां आपस में बात करने या भोजन के स्रोत का पता लगाने के लिए एक विशेष प्रकार का वेगल डांस यानी कि नृत्य करती हैं। एक पाउंड लगभग आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों के पूरे झुंड को लगभग 20 लाख फूलों का दौरा करना पड़ता है, और अंत में मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी मुख्य आंखें और सिर के ठीक बीच में 3 छोटी आंखें। सच में 20 लाख,
0: बताइए, तब जाके हमें शुद्ध जो शहद है वो मिलता है।
1: एक बूंद भी नहीं गिराना चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए। और हम सभी को ये भी पता होना चाहिए आरती कि मधुमक्खियाँ उन पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। जैसे कि सदियों से मधुमक्खियाँ जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती है, और वो मनुष्य को, पौधों को, जैसा कि अभी तुमने बताया हमारे श्रोता ने लिखा, पर्यावरण को लाभ भी पहुंचाती रही है, और एक फूल से दूसरे फूल तक वो पराग को ले जाती हैं, और प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज भी वो पैदा करती हैं।
1: जी, हमारी ये श्रोता जो है कितने जानकार हैं, मतलब कितने अच्छी तरीके से उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा है इन्होंने, और बल्कि उनकी जो विविधता है और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और पोषण में योगदान होता है, वो पृथ्वी पर जीवन चलते रहने के लिए जरूरी भी होता है। और शहद के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो शहद तो उत्पादक होने के अलावा मधुमक्खियां पौधों के निषेचन में मदद करती हैं, और अनगिनत प्रजातियों के प्रजनन को वो सुनिश्चित भी करती हैं। फलों की और सब्जियों से लेकर फूलों और पेड़ों तक हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले कितने ही खाद्य पदार्थ हैं वो परागण के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर हैं, जैसा अभी तुमने शुरू में बताया भी था।
1: जी, और मधुमक्खियों के बिना हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होगा, जिससे जैव विविधता में कमी आएगी, और मनुष्यों और वन्य जीवों दोनों के लिए खाद्य सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ सकती है। और विश्व मधुमक्खी दिवस की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2017 में मधुमक्खियों और परागकर्ताओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए।
0: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि काफी अच्छी जानकारी इन्होंने दी है कि विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है, और इस दिन मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जानसा को 1734 में 32वां दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए मधुमक्खियों और अन्य पराग कणों की भूमिका को स्वीकार भी करना है। तो अमेरिका में ये पहली बार दिवस मनाया गया, और ये पहल मधुमक्खी पालकों, शिक्षकों और शहद प्रेमियों द्वारा मधुमक्खियों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, और उनका लक्ष्य मधुमक्खियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करना था, और उनके संरक्षण को उनके महत्व पर जोर देना भी था।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है हमारे जो लिखते हैं कि 20 मई विश्व मधुमक्खी दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार दुनिया की लगभग 33% खाद्य फसलें और 90% जंगली फूलों वाले पौधे पूरी तरह या आंशिक रूप से परागणकों पर निर्भर करते हैं। मधुमक्खियां इस पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा जरिया है।
0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए, बहुत सारी जानकारी जो हम जुटा के लाए थे वही हमारे श्रोता भी बता रहे हैं, काफी अच्छा मधुमक्खियों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज दिवस हम मना रहे हैं ना आरती, ये मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार अवसर है, और मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पराग उपलब्ध कराने के लिए मधुमक्खी अनुकूल फूल और जड़ी बूटियां हमें लगानी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपना कार्य कर सकें। अपने बगीचों की अगर हम बात करें, उन पर पौधों पर कीटनाशकों और रसायनों का उपयोग करने से हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी और अन्य जो लाभकारी कीड़े हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और साथ ही मधुमक्खी

0: उत्पाद खरीदकर स्थानीय मधुमक्खी पालकों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार का जो मुख्य विषय रखा गया है वो है प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं।
1: बिल्कुल, हर बार एक नया विषय के साथ में आते हैं, तो इस बार का विषय ये है। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि फूल और फलों के फलीकरण के लिए मधुमक्खी वाहक का काम करती है, इसलिए मधुमक्खी का अस्तित्व बना रहना इस सृष्टि के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ों की डाली के अलावा किसी घर की छत के नीचे छत्ता बना रही मधुमक्खियों से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल, जब तक आप उसे छेड़ेंगे नहीं तब तक वो काटी
0: करेगी। बिल्कुल,
1: और कि वो आपको डस ना ले, हम मतलब उसको डंक ना लगा दें आपको, हम भी यही कह रहे हैं। अगर उसे आप छेड़ेंगे नहीं तो वो, अगर आप उसे छेड़ेंगे तो हमें छोड़ेगी नहीं। इसलिए जिस पेड़ की डाली पर तेरा छता हो उस डाली के पास से गुजरना नहीं। उन्होंने बड़े मजाकिए तरीके से इस चीज को लिखा है।
0: बिल्कुल सही कहा है।
1: और कहते हैं कि 3 साल पहले हमारे घर के ओटीएस के सालियों पर छाता बनाया था, अब इस साल हमारे घर अमरूद के पेड़ के नीचे कपड़े सुखाने के तार पर एक कोने में एक महीन पहले छत्ता बनाना शुरू किया, जो आज काफी बड़ा हो गया है और कुछ दिनों बाद बरसात की ऋतु में अपने आप उड़ जाएंगे, ना हम उसे छेड़ते ना वो हमें छेड़ती।
0: बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस पर ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी स्कूल बिल्डिंग में अभी अप्रैल में काफी बड़ा सा छत्ता है जिसे बुलवाकर हटवाया गया था। पहले तो हमको बहुत स्थानों पर दिखाई देती थी मधुमक्खियां, आप कम दिखती हैं। बचपन में माँ बताती थी कि उस पर बिल्कुल भी पत्थर नहीं फेंकना है, नहीं तो पानी के अंदर जाकर भी वो डंक मार देती है। वो हमेशा बात हमें याद रहती है और मधुमक्खी शहद सी मिठास देती है, ऐसे ही सभी के जीवन में मधुरता बनी रहे।
1: बिल्कुल,
0: तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: नाम नहीं बताने वाले हैं चित्तौड़ का
1: भाई, नाम तो हमारे पता ही है हमारे श्रोताओं को
0: बिल्कुल
1: तो हम बात कर रहे थे आज की, भाई विश्व मधुमक्खी दिवस है और हमने बात की उनकी मिठास पर और मधुमक्खियों को किस तरह से हमें बचाना है इस पर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे देश में, हमारी संस्कृतियों से जुड़ी चीजें हैं जहां पर हम बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चीजों से, गुणों से जुड़ पाते हैं, और उनमें एक है हमारा साड़ियों का संसार।
0: अरे बहुत
1: है ना, और हम महिलाओं को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है ये साड़ियां, और आज हम बात करने वाले हैं तंचोई साड़ी के बारे में।
0: तो तंचोई के बारे में बात करते हैं। तो तंचोई की कहानी 19वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि लगभग 1856 ईस्वी में पारसी व्यापारी सर जमशेद जी जेजी भाई ने सूरत के जोशी परिवार के 3 बुनकरों को चीन भेजा ताकि वो इस विशेष ब्रोकेट रेशम की बुनाई की कला को सीख सके।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आरती। और वापस लौटने पर भाइयों ने अपने चीनी शिक्षक छोई का नाम अपना लिया और उन्होंने रेशम बुनाई की कला जो सिखाई थी। तन शब्द गुजराती शब्द त्रान से मिलता जुलता है जिसका अर्थ 3 होता है और इसी से तीनों भाइयों का नाम लिया जाता है। इस प्रकार जिस रेशम को उन्होंने बनाना सीखा उसे तंचोई के नाम से जाना जाने लगा है।
0: जी, तो उनके शिक्षक का नाम और उनका जो नाम भाई थे। और बम्बई में 1950 के दशक तक तंचोई साड़ियों का उत्पादन जारी रहा और जब बनारस के बुनकरों ने इन ब्रोकेट को बनाने की कला सीख ली तो उसी कपड़े का उत्पादन बहुत कम कीमत पर शुरू कर दिया गया और इसी तरह कुछ जटिल बनारसी डिजाइन तंचोई रेशम पर भी दिखाई देने लगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और तंचोई बुनाई की एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक या दो ताने और बाने में 2 से 5 रंग के होते हैं, मतलब जो अक्सर एक ही रंग के होते हैं। और तंचोई साड़ियों की एक और खास बात यह है आरती कि इनके कपड़े की सतह साटन जैसी होती है और एक जटिल और तकनीकी बुनाई तकनीक है। बहुत मतलब थोड़ा जटिल है ये तकनीक
0: जी, इसको टाइम लगता है सीखने में, बनाने में
1: मुश्किल है।
0: तो इसमें 1 या 2 ताने और 2 से 5 बाने के रंगों का उपयोग होता है। ये साड़ियां बेहद हल्की और पहनने में मुलायम होती हैं। तंचोई की कई अलग अलग किस्में होती हैं जैसे कि सैटन तंचोई जो कि एक ही रंग के सैटन कपड़े पर, जो साटन का कपड़ा होता है उस पर आधारित होती हैं और इसमें एक या अधिक रंगों के ताने के धागे इस्तेमाल किए जाते हैं।
1: हाँ, और अतिरिक्त ताने के रंगों को भी मुख्य ताने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सैटिन जरी तंचोई, सैटिन तंचोई का एक विस्तारित रूप है जिसमें ताना या तो एक रेशम और एक सोने के धागे का या 2 रेशम के धागे और एक सोने के धागे का, इस तरह से इसको बनाया जाता है।
0: जी, और इसके साथ एटलस या गिल्ट कपड़े की सतह शुद्ध साटन की होती है। अन्य कपड़ों की तुलना में एटलस या गिल्ट भारी होता है और जरी के अतिरिक्त उपयोग के कारण इसमें अधिक चमक भी होती है। और मुशब्बर का डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण, ये डिजाइन अपनी जालीदार बुनाई के कारण थोड़ा अलग सा दिखता है।
1: हाँ बिल्कुल अलग लगती है तंचोई साड़ी, और ये झाड़ियों या पेड़ की शाखाओं जैसा भी प्रतीत होता है। मुशब्बर डिजाइन जो है अक्सर जंगल या प्रकृति की हरियाली से जुड़ी है। तो तंचोई जो वस्त्र है वो चटक रंगों से बुने जाते हैं और बुनाई की तकनीक में कई रेशमी धागों का उपयोग होता है। ब्रोकेट की साड़ियां होती है ना, उसी तरह ब्रोकेट की तरह तंचोई भी साटन बेस को ढकने वाले रंगीन बाने के रेशमी धागों के एक अतिरिक्त सेट का उपयोग करके बनाया जाता है जिससे विशिष्ट और अनूठे पैटर्न भी बनते हैं।
0: बिल्कुल, और तंचोई साड़ियों में डिजाइन हमेशा उड़ते हुए पक्षियों, फूलों की मालाओं के बीच बैठे मुर्गों की आकृतियों से सजे होते हैं जो पूरी साड़ी पर फूलों और फूलों से भरी टोकरियों से घिरे रहते हैं। कभी कभी पल्लू पर मोर, टोकरियां, फूलों के गुच्छे या शिकार के दृश्य अधिक सघनता से बनाए जाते हैं। तंचोई रेशमी साड़ियों को कुछ मोहक मनमोहक पुष्प, ज्यामितीय और पैसले डिजाइन से भी सजाया जाता है।
1: हाँ, बहुत ही अजीब सी एक क्लासिक डिजाइन होती है तंचोई साड़ियों में, और अधिकतर डिजाइन जो है चीनी मूल की होती है, लेकिन बुनकर जो है अनूठी कलाकृतियां बनाने के लिए भारतीय रूपांकनों को इसमें शामिल कर लेते हैं। और तंचोई साड़ियों पूरे देश में औपचारिक अवसर जो है या विवाह समारोह के अवसर है या त्योहार है हमारे, उसमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशियों के साथ पहनी जाती है, शौक के साथ पहनी जाती है। और तंचोई रेशम की साड़ियां अपने कपड़े की वजह से शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु में और सर्दियों के ठंडे महीनों में पहनने के लिए एक अच्छी साड़ी हो सकती है। तो आरती, मैं तो अपनी सखियों से भी कहना चाहूंगी अगर उनके पास तंचोई साड़ी है तो हमें बताइए किस रंग की तंचोई है और उन्होंने इसे कब और कहां पहना, और नहीं तो उनके पति देव बता दे कि उनकी पत्नी ने तंचोई साड़ी खरीदने के लिए कितना दिमाग खराब किया होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो लिखिए हमें फटाफट और बताइए तंचोई साड़ी से जुड़ा कोई आपका अनुभव है हमारी सखियों और सखाओं का। हाँ, तो हमसे शामिल करें।
0: बिल्कुल, तब तक हम गीत सुनते हैं।
1: गीत सुनते हैं।

0: टू इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: स्वागत है
0: हार्दिक
1: जी। और अब हम क्या बात करने जा रहे हैं?
0: अब भाई बात तो हम करने वाले हैं कि भाषाओं से जुड़े संस्कार क्या हैं।
1: जी
0: है ना। तो सबसे पहले हमें जानना होगा आरती कि भाषा क्या है।
1: भाषा क्या है?
0: तो भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर लिखकर या संकेतों के द्वारा अपने मन के भावों को अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये समाज में एक दूसरे की बात समझने और समझाने का सबसे मुख्य माध्यम है भाषा।
1: बिल्कुल। और हम लोगों ने कहा था कि अपने श्रोताओं से कि आप बताइए कितनी भाषाएं जानते हैं। तो एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मुझे कम से कम 25 भाषाएं आती हैं। इससे मैं इससे अधिक भाषाओं को भी जानता हूं। मुझे 25 भाषा आती है लेकिन सबसे जो भाषा अच्छी लगती है, जो सबसे खूबसूरत है, तो वो प्यारी भाषा है हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा के बराबर उनको मतलब वो उनको बहुत अच्छी लगती है हिंदी बोलना। वैसे वो 25 भाषाओं को

0: जानते हैं।
1: हाँ, लेकिन आपने 25 भाषाओं के नाम नहीं लिखे, आप बताइए हमें कि आपको कौन सी 25 भाषाएं आती हैं, और उसके थोड़ा सा बताइए कैसे आपने सीखी। इतनी भाषाएं सीखना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब अपने विचार हम तक भेजेंगे, अपना अनुभव हमसे साझा करेंगे, तो हो सकता है हम भी आज भी कोई भाषा सीखने के लिए चाहत हमारे मन में आ जाए, जिसका हमें डर होता है कि अरे भाई,
0: और कोई आसान तरीका भी हो
1: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं, और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग

0: आसान तरीका भी हो
1: हमें मिल जाए। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने कौन कौन सी 25 भाषाएं सीखी हैं और किस तरह से सीखी हैं और उनका आपके जीवन में कहां कैसे उपयोग हो रहा है, इस पर थोड़ा सा बताइए। तो सबसे बड़ी बात थी आज हम बात करने वाले हैं कि भी भाषाओं से जो जुड़े संस्कार हैं वो क्या हैं। तो आरती, क्या कभी हमने सोचा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाली जो भाषाएं, हजारों भाषाएं, एक दूसरे से इतनी भिन्न क्यों है, है ना? देखने और सुनने में भले ही बिल्कुल अलग लगे, लेकिन हाल ही में एक अध्ययन हुआ, शोध हुआ, उसमें चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि चाहे भाषा कोई भी हो, उनकी बुनियादी संरचना और उन्हें गढ़ने वाले जो नियम है वो आश्चर्यजनक रूप से एक समान है।
2: जी बिल्कुल। और साथ ही ये समानता इसलिए है क्योंकि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारे मस्तिष्क की एक ही प्राकृतिक कार्यप्रणाली से हुई है। और यानी हम मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में क्यों न रहें, हमारे सोचने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मूल तरीका एक ही गहरे सांचे में ढला हुआ है। यानी अगर हमें दुख होगा तो हम रोएंगे, हमारे आंसू निकलेंगे, चाहे वो कोई अमरीका में रहने वाला हो, चाहे वो हिंदुस्तान में रहने वाला हो। ये खोज साबित करती है कि हमारी बोलियां भले ही अलग हो, लेकिन हम सभी भीतर से एक ही मानवीय सूत्र से जुड़े
1: हैं। बहुत गहरी बात आती है अगर हम इसे समझ पाए तो, कितनी बड़ी बात है कि हम भीतर से एक मानवीय सूत्र से जुड़े हुए हैं, है ना?
2: बिल्कुल।
1: और भाषा का जो सीधा संबंध है वो संस्कार और सभ्यता से होता है। हम अपनी भाषा के संस्कार भूलते अगर जा रहे हैं तो गलत बात है। इसी संदर्भ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के शब्दों का अगर हम यहाँ उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।
2: बिल्कुल, जो वो भाषा जानते थे उसमें समझते समझ में आता है ना, अच्छी तरीके से जिस भाषा को जानते हैं।
1: कितनी बड़ी बात है। और हमारे मन में क्या रहता है कि अगर हमने अंग्रेजी भाषा नहीं सीखी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, है ना? हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, हमें सम्मान नहीं मिलेगा या हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मैंने अपनी मातृभाषा में गणित और विज्ञान की शिक्षा ली।
2: सीखिए, आप जितनी भाषाएं हो सकते हैं उतनी सीखिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जब हम सीखना शुरू करते हैं भाषाओं को अलग अलग, तो हमारा जो मस्तिष्क का वो हिस्सा है ना, एकदम से वो एक्टिव हो जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और उसके बाद ना वो हमारा जो दिमाग है बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे से और भाषाओं को सीख पाते हैं, हम और चीजों को अपने अच्छे तरीके से कर पाते हैं।
1: बिल्कुल, आपने देखा होगा कई लोग शौक या फ्रेंच भाषा सीखते हैं, उनका जीवन में उपयोग नहीं होता है लेकिन शौक होता है कि मैं भाषा सीखता हूँ।
2: बिल्कुल।
1: तो आप किसी भी भाषा के ज्ञाता हूँ, किसी भी भाषा को सीखते हूँ, लेकिन मन में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि मुझे वो भाषा नहीं आती है तो मुझे कुछ नहीं आता है।
2: जी बिल्कुल। और भाषाएं केवल संवाद का माध्यम में नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, संस्कारों, जीवन मूल्यों और पहचान की सच्ची संवाहक हैं। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है और अगली पीढ़ी तक पारंपरिक ज्ञान और संस्कार पहुंचाने का काम करती है।
1: बिल्कुल। और आज के दौर की अगर हम बात करें, हमारी युवा पीढ़ी की बात करें, तो सोशल मीडिया के प्रचलन के कारण भाषा का प्रयोग थोड़ा शॉर्टकट में होने लगा है, जो कि गलत भी है ना, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाषा ही समाज के संस्कार के विकास की रीढ़ होती है। और ऐसे में युवा पीढ़ी को भाषा का सही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट भाषा की आदत जो है सोशल मीडिया में काम तो आ जाती है, लेकिन जब ये आदत जीवन में आ जाती है आरती, तो इसका नुकसान परीक्षाओं से लेकर कई मंचों पर आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि वहां आपके पास अच्छे शब्द और व्याकरण का अकाल पड़ जाता है।
2: बिल्कुल। और एक शोध बताता है कि जो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी सीखने की जो क्षमता होती है वो जीवन भर बनी रहती है। जरूरी नहीं कि हम इस साल इतने साल के हो गए अब हम क्या सीखेंगे, ये कभी मत मन में लेकर
1: आइए। जब तक आपकी अंतिम सांस है आप सीख सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: चाहत आपके अंदर होनी चाहिए।
2: जी। और साथ ही जो व्यस्क सीखना जारी रखते हैं उनमें डेमेंशिया जो होता है, मनोभ्रंश, वो उसका जोखिम जो होता है वो 46% तक कम होता है। और सीखना केवल शिक्षा नहीं है, ये मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित जिंदा रहने के लिए जरूरी है।
1: क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि केवल डिग्रियां हम धारण कर लेते हैं, मैं डबल एमए हूँ, ट्रिपल एमए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, है ना, मैं एमफिल हूँ, ये अच्छी बात है। डिग्रियां लेते हैं, आप पढ़ते हैं, विद्वान बनते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हम जाते हैं, वो तो है ही जिंदगी का, लेकिन इसके अलावा पढ़ना जो है वो जिंदगी को जीवित रखने के लिए कितना जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जो साहित्यकार है ना, वो लिखते रहते हैं अंत तक, उनके लिए कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, कविता लिखना जिंदा रहने का माध्यम होता है।
2: बिल्कुल। आप कुछ नहीं तो डायरी लिखना शुरू कर दीजिए, आप खुद ही अपने आप को, आपको लगेगा कि यार ये कितना अच्छा लिखने लगा हूं मैं।
1: जो भीतर बदलाव आता है वो कितना सुंदर होता है, है ना? ये सबसे बड़ी बात है। तो देखते तो हम सभी चीजें हैं आरती, प्रकृति को आप भी देखती हैं, मैं भी देखती हूँ, लेकिन आप प्रकृति को किस अंदाज में देखकर क्या लिखती हैं,
2: सबका नजरिया
1: मायने रखता है, है ना? तो भाषाओं को सीखना जारी रखना चाहिए, एक ऐसा निर्णय हमें लेना चाहिए कि हम भाषाएं सीखेंगे, क्योंकि ये हमारे संवाद कौशल को भी बढ़ाता है और मानसिक क्षमता में वृद्धि भी करता है, और एक से अधिक भाषाएं जानना रोमांचक यात्रा अवसर

0: के द्वारा आपको खोल सकता है, आप कहीं भी जाएंगे अगर आपको वहाँ की भाषा आती है तो आपको उस यात्रा के मजे दोगुने हो जाएंगे।
1: बिल्कुल, वहाँ से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं आराम से, जैसे कि हम गए थे तो हमने बात करी वहाँ पे ब्रिज भाषा में।
0: कितना अच्छा लगा होगा,
1: बहुत अच्छा लगता है। फिर अगर आप जब उनसे उनकी भाषा में बात करते हैं तो और जुड़ जाते हैं आपसे कि अच्छा ये तो हमारी भाषा बोल रहे
0: हैं, तो अपने करीब पाते हैं ना आपको।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारे ही लोग हैं और भाषा एक दूसरे को जोड़ती है।
1: बिल्कुल जोड़ती है, और इन संवादों से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान और समझ गहरी होती है। भाषा सीखने से लोगों को अन्य संस्कृतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इससे किसी संस्कृति के अनूठे दृष्टिकोण, बारीकियों और इतिहास, उनके जो इतिहास की जो समझ है वो बढ़ती है, और हम विभिन्न संस्कृतियों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करना सीखते हैं।
0: क्या बात है, तो यानी कि भाषा हर कीमत पर हमें सीखनी चाहिए। अपनी मातृभाषा के अलावा हमें जितनी भाषाएं हम सीख सकते हो
1: बिल्कुल
0: हमें सीखनी चाहिए। इसके लिए प्रेशराइज नहीं होना, प्रेशर नहीं पालना,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शौक रखना चाहिए।
1: अपने मन से सीखिए, आपको खुद अच्छा लगेगा कि मैं कितने अच्छी तरह से नए नए शब्द मुझे पता चल रहे हैं, नई नई चीजें,
0: आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपका व्याकरण सुधरता है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कहने का दम रखते हैं। किसी मंच से जब आप अपनी बात रखते हैं तो वो भाषा ही आपके काम आती है, वो शब्द ही आपके काम आते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को दोगुना कर देते हैं।
1: जी, जब कोई जब कहता है ना कि मुझे इतनी भाषा आती, तो हम सच में एकदम से कहने से कैसे इतनी भाषा बोल लेते,
0: चौंक जाते हैं और हमारी दृष्टि में उसके प्रति सम्मान और बढ़ जाता है। देखने का जो नजरिया है वो एकदम बदल जाता है जब हमें कोई बताता है कि वो इतनी भाषाओं का ज्ञाता है। तो भाषा इतना मायने रखती है जिंदगी में, और इस भाषा को शॉर्टकट मत अपनाइए, इस भाषा को विकृत मत कीजिए, है ना, भाषा को शुद्ध तरीके से जानिए। हाँ, कभी कभार मजाक में हमने कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर लिया वो एक अलग बात है, लेकिन भाषा से तोड़ मरोड़ अच्छी नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: तो ये गीत सुन ले।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

लाई कछु पापी, गठा लाई कछु पापी, बिन कारे बदरा के कैसी बरस गई बरसात, ये तो बतला।

हाँ तो मंदाकिनी जी, जब हम जब बात कर रहे थे मधुमक्खियों की तो उसपे एक शोधा जो है उन्होंने हमें लिख के भेजा है अपने उनके साथ में जो घटना हुई वो लिख के भेजी है उन्होंने। तो वो लिखती हैं कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब मेरा छोटा भाई जो मुझे लगभग 6 साल छोटा है मेरे साथ स्कूल में खेल रहा था। हमारे गाँव के स्कूल में पीपल के बड़े बड़े पेड़ थे और उन पेड़ों पर मधुमक्खियों के विशाल छत्ते लगे रहते थे। खेलते समय किसी ने शरारत में एक छत्ते पर पत्थर मार दिया, इसके बाद मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया और मेरे छोटे भाई को कई मधुमक्खियों ने काट लिया और उसके बाद उसके पूरे चेहरे हाथ पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ गई। हालत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टियां भी होने लगी। उस दिन

0: दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाता है और मैं अंदर से डर जाती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और क्योंकि आपने उनको छेड़ दिया ना, जब आप किसी को छेड़ोगे तो वो भी तो अपना कुछ ना
0: वो
1: कुछ
0: तो उनको तो लगेगा ना कि हम पे हमला हो रहा है, तो
1: वो भी तो सुरक्षा महसूस करती है ना। इस बात को हम नहीं समझ पाते, हमें लगता है मधुमक्खी तो भी काट लेती है, लेकिन वो क्यों काट रही है
0: जी,
1: उसके पीछे का लॉजिक समझ आया ना, आपने पत्थर मारा और उसने पलट कर बदला ले लिया।
0: बिल्कुल,
1: तो हमें इस बात का बचाव करना है कि पत्थर नहीं,
0: पानी पे भी अगर आप पत्थर मारेंगे तो
1: उछल कर आप पर आएगा, आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो उछल कर आप पर आएगा। तो ये कहने का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी तरह की कोई शरारत जब करते हैं, प्यारी शरारत करिए, मीठी शरारत जैसे हम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जब हम काम करते हैं तो उसके थोड़े से दुष्परिणाम,
0: और ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा काट लिया तो बहुत ज्यादा अगर जहर फैल जाता है ना तो जान भी बनाती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, ततैया होता है, मधुमक्खी होती है, सांप है, इन सब अपना रास्ते जा रहे हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया ऐसे ही ततैया भी बहुत बुरा काटता है, पीले रंग का होता है ना,
0: हाँ हाँ।
1: वो भी कहीं ना कहीं बैठ जाता है और अचानक आकर आप पर हमला कर देता है।
0: बिल्कुल
1: है ना। तो चलिए भाषा पर बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, जीवन मूल्यों और संस्कारों की संवाहक है। हम जिस परिवेश और भाषा में बड़े होते हैं उसी से हमारे आचरण, शिष्टाचार और सोच का निर्माण होता है। मातृभाषा हमें अपनी जड़ों से जुड़े रखती है, सिखाती है कि बड़ों से बात करते समय आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है
0: जी। और एक श्रोता जैसे हमने पूछा था ना कि कितनी भाषा आती है, तो एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे इंग्लिश, हिंदी और प्यार की भाषा बोलनी, लिखनी और पढ़नी आती है, और सिंधी भाषा सिर्फ बोलनी आती है, संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है, और सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी मेरे से एक कदम आगे है, उन्हें इंग्लिश, हिंदी, सिंधी और प्यार की भाषा पढ़नी, लिखनी और बोलनी आती है, और संस्कृत भाषा लिखनी और पढ़नी आती है। बहुत बहुत ही ज्यादा ज्ञानी है फिर आपकी पत्नी तो।
1: चलिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपने कहा प्यार की भाषा, जो मोहब्बत है ना
0: बहुत बड़ी भाषा है,
1: सबसे बड़ी बात है। भाषाएं तो आपने सीख ली, लेकिन अगर आपके भीतर प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो सब भाषाएं भी रूखी हो जाती है।
0: बिल्कुल
1: है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कार, संस्कृति और आचरण का आईना है। ये हमारे विचारों को आकार देती है, हमारे परिवेश और जीवन मूल्यों को दर्शाती है। एक सभ्य और मर्यादित भाषा का प्रयोग ही वास्तव में भाषा से जुड़े संस्कार को दर्शाता है, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है
0: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे हिंदी के अलावा गुजराती और इंग्लिश आती है और गुजराती सीखना आसान रहा। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ी बहुत पंजाबी और सिंधी आती है, वैसे दो तीन और भाषा थोड़ी थोड़ी समझ भी सकती हूँ। बहुत अच्छी बात है, कितने देखिए तभी कह रहे श्रोताओं के विचार है ना, वो विचार इस वजह से भी है कि उनको तरह तरह की भाषाओं का, शब्दों का, व्याकरण का ज्ञान है, तो वो जो उनके अंदर चीजें ना वो विचार सामने आते हैं।
1: बिल्कुल देखिए, यही हम जानना भी तो चाहते हैं कि हमारे श्रोता क्या विचार अपने रखते हैं अपनी भाषाओं को लेकर, अपने विचारों को, जो उनके विचार हैं जिंदगी में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भाषाओं का संसार अत्यंत विशाल है, विविधतापूर्ण और जीवंत है। वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 7,000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं, और यह न केवल संवाद का साधन है बल्कि संस्कृति, इतिहास और मानव पहचान को जीवित भी रखती हैं। और बाकी जैसा आपने लिखा कि वो लिखते हैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, सिंधी, दो तीन भाषाएं थोड़ी थोड़ी समझती भी हैं और बोलती भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है
0: जी।
1: बिल्कुल। और
0: एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि भाषा किसी भी समाज की संस्कृति का दर्पण होती है, हमारी मातृभाषा ही हमें बड़ों का आदर करना सिखाती है, जैसे कि आप कहकर बुलाना, छोटों को प्यार देना और अतिथि देवो भव जैसे सामाजिक मूल्य सिखाती है, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं और मातृभाषा में जो अपनापन और आत्मीयता होती है वो किसी अन्य विदेशी भाषा में संभव नहीं है। यही जुड़ाव हमें अपनी पारिवारिक जड़ों से बांध कर रखता है, और हमारी भाषाएं विशेष रूप से संस्कृत और हिंदी वेदों, उपनिषदों और पुराणों का ज्ञान समेटे हुए हैं। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की सही कला, नैतिकता और कर्म के सिद्धांत भी सिखाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें किसी भी भाषा के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी।
0: भाषा भाषा है,
1: विदेशी भाषा ऐसी है या देशी भाषा,
0: अगर आपको वो भाषा नहीं आएंगी तो, अगर आपको कहीं बाहर जाना है या कोई बाहर से कोई हमारे अतिथि आता है तो हम उससे बात कैसे कर पाएंगे।
1: चलिए जरूरी है, भाषा नहीं भी आती, आप नहीं भी सीख पाए, लेकिन भाषा भाषा है, हमें हर भाषा का,
0: भाषा कभी बुरी नहीं,
1: हमें वैश्विक भाषाएं जितनी भी हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए
0: जी।
1: एक गाना सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: हाँ तो आरती भाई, हमारे श्रोताओं ने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात कही कि किस तरह से भाषाओं से जुड़े संस्कार हमारे काम आते हैं, और इसी के साथ हमने एक और सेगमेंट रखा उनके लिए कि शब्द हमारा और विचार आपके, और आज का विषय था सद्भावना।
1: तो उस पर भी बहुत सारे हमें कमेंट्स में आए हैं। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, शुभ विचार या भलाई की चाह, और इसका मतलब किसी व्यक्ति या समाज के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और निष्पक्ष रहने का सच्चा इरादा रखना है जिसमें कोई द्वेष या स्वार्थ ना हो।
0: बिल्कुल सही लिखा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सद्भावना यानी अच्छी नीयत, दूसरों के प्रति शुभ भावना और परोपकार। जब किसी व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए प्रेम, दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होती है तो वो किसी का बुरा नहीं सोचकर उसकी भलाई चाहता है, तो उसे सद्भावना कहते हैं। और साधारण बोलचाल में किसी के साथ निष्पक्ष और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना जिसमें कोई छल, कपट या द्वेष न हो, सच्चाई और ईमानदारी का इरादा, बिना किसी को धोखा देने के भाव से कोई कार्य करना इसमें आता है।
1: बिल्कुल। और श्रोता जो लिखते हैं कि सद्भावना का अर्थ है अच्छी भावना, अच्छे और उच्च विचार, मन में बसने वाली वो सुंदर भावना है जो प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ाती है। जहाँ सद्भावना होती है वहाँ रिश्तों में मिठास, समाज में शांति और जीवन में खुशी बनी रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक महत्वपूर्ण मानवीय गुण है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज के समय में जहां समाज में विभाजन और असहिष्णुता बढ़ रही है, वहां सद्भावना की प्रासंगिकता बहुत अधिक है। ये विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं को आपस में जोड़ने का काम करती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती ही परिवार है, इस भारतीय सोच सद्भावना पर ही टिकी है। ये जो भारतीय सोच है इसी सद्भावना पर टिकी है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध और विवादों को सुलझाने के लिए देशों के बीच में भी सद्भावना का होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होती है और मानवता, प्रेम, करुणा और भाईचारे को बढ़ावा देती है। सद्भावना केवल एक नैतिक गुण नहीं है बल्कि एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण की बुनियादी जरूरत है। जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तभी समाज का कल्याण संभव है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी तो हमने

0: भी जानना चाहता कि आपके अंदर सद्भावना कितनी है, ये भी बताइएगा। लिखा है हमारे श्रोताओं ने कुछ आरती, ऐसा कोई विचार आया है किसी का?
1: अभी तो सबने यही चीज लिखी है कि सद्भावना के जो अर्थ है
0: वो क्या है। हाँ, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सद्भावना अच्छे विचार, दूसरों के प्रति भलाई की भावना, प्रेमपूर्ण व्यवहार, और ये किसी के मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या, द्वेष या बैर का भाव नहीं रखकर आपसी भाईचारा और सहयोग बनाए रखने की एक स्थिति है, और सद्भावना जीवन को सरल और रिश्तों को मधुर बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय गुण है।
1: बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि जहाँ सद्भावना होती है वहाँ झगड़े कम और प्रेम अधिक होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सद्भावना अपनानी चाहिए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यदि हमारे पड़ोसी पर कठिन समय आए तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए।
0: ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, पर आपने ये नहीं लिखा कि क्या ऐसे कोई कठिन समय आपके पड़ोसी पर आया था और आपने कोई उनकी सेवा की थी, है ना, ध्यान दिया था उनका। ये भी लिखते तो हमें अच्छा लगता। वही एक श्रोता लिखते हैं कि दूसरों के प्रति मन में स्नेह, आदर और सहानुभूति रखना ही सद्भावना है। इसमें जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के बिना सभी के कल्याण की कामना होती है, और समाज में आपसी भाईचारे और शांति को बनाए रखने के लिए ये बहुत मूल्यवान है।
1: जी बिल्कुल, और आप हमें गीत सुन लेते हैं।
0: अब मूल्यवान तो एक गीत ही है
1: जी।

0: हाँ तो आरती, अब हम कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी सोपान तक पहुंच चुके हैं और अब हमारे श्रोता क्या कर रहे हैं, व्यंजन की
1: बिल्कुल, और हम बता देते हैं उनको दाल पीठा की रेसिपी क्या है। तो वो दाल पीठा बिहार और उत्तर प्रदेश का व्यंजन है, जिसमें जो चावल के आटे और दाल आमतौर पर चना, मूंग और उड़द से बनाया जाता है। भाप में पके होने के कारण ये बेहद स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट होता है, उन्होंने बताया इसके बारे में। और इसमें उन्होंने कहा है कि इसे भाप में पकाया जाता है, जिसमें तेल या घी का उपयोग ना के बराबर होता है। सर्दियों के मौसम में, विशेषकर पौष के महीने में, बिहार के घरों में बड़े चाव से बनाया जाता है। पुजही पीठा सिर्फ दाल से ही नहीं, तरह तरह के भरावन, भुनी मूंगफली, तिल, मावा, गुड़, नारियल, इन सब चीजों से बनाया जाता है। और इन्होंने जो ठेकुआ है उसकी भेजी है रेसिपी, तो उसमें गेहूं का आटा चाहिए 2 कप, गुड़ 1 कप, और बारीक कटा हुआ कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए गुड़। घी मोयन के लिए 3-4 बड़े चम्मच सूखी नारियल, 2-3 बड़े चम्मच बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ होना चाहिए, और सौंफ 1 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच एक होना चाहिए, आधा 1 छोटा चम्मच, और पानी और 1/2 कप गुड़ पिघलाने के लिए, और फिर तेल या

0: घी तलने के लिए और आवश्यकता अनुसार बनाने की विधि है। एक गुड़, पहले आप गुड़ का पानी तैयार करें। एक बर्तन में गुड़ और आधा कप पानी डालकर धीमी आंच पर पिघला लीजिए उसको गुड़ को, और चाशनी नहीं बननी चाहिए उसकी, सिर्फ गुड़ को पानी में घुलने देना है और इसे ठंडा होने दीजिए और फिर छलनी में से छान लीजिए, जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। आटे का मिश्रण बनाए। एक बड़े कटोरे में गेहूं का आटा लें, उसमें सूजी कुरकुरेपन के लिए सौंफ इलायची पाउडर और कसा हुआ नारियल डालें, मोयन डालें। अब आटे में 3-4 चम्मच पिघला हुआ घी डालें, आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह से रगड़ें। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे तो समझ लीजिए मोयन जो है वो एकदम सही है। अब आटा गूंद लीजिए और छने हुए गुड़ के पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर सख्त आटा गूंदना है, इसका मुलायम नहीं होना चाहिए, इसे ज्यादा मुलायम नहीं करना है। और आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाइए और सांचे पर थोड़ा सा तेल लगाकर लोई को दबाएं और मनचाहा डिजाइन बना लीजिए। अगर सांचा ना हो तो हाथ से भी आप कांटे की मदद से भी बना सकते हैं, और धीमी आंच पर तल लीजिए आपका जो तेल में घी में, तो सुनहरा होने तक तल लीजिए, फिर आराम से निकाल के खाइए।
1: तो आपने इतनी जल्दी में बताया है, मुझे तो भाई आरती बनाना आया ही नहीं है। मुझे लगता है हमारे श्रोता जिनको ठेकू और दाल पीठा बनाना आता है वो आराम से बनाएंगे।
0: बिल्कुल, और रेसिपी आपको वहाँ फेसबुक पेज पे मिल जाएगी।
1: तो बनाने की मैं भी
0: समय की कमी की वजह से हमें थोड़ा सा जल्दी
1: बताना पड़ा। तो चलिए अब सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में श्रोताओं, आज लीजिए सुनिए जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खड़ा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है।

0: खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
2: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जो वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
2: क्या बात है सर। बातें हो रही हैं जयपुर के जमाने की और आपने बताया कि न केवल आपने नाटक किए बल्कि वहां एक कंपोजिशन वाला मामला भी लगातार चलता रहा और अलग अलग कार्यक्रमों की अपनी योजना भी चलती रही, तो एक तरह से आपका वो रचनात्मक उत्कर्ष का पूरा दौर था। जयपुर के बाद आप यात्रा जीवन की आपको कहां ले गई?
1: जयपुर के बाद मेरा ट्रांसफर जो है 5 साल पूरे हो जाने के बाद
2: जी
1: अल्मोड़ा हुआ।
2: अरे गजब, पहाड़ों पर।
1: पहाड़ों पर। और मेरे जीवन का वो सबसे कष्टप्रद, मतलब यूं नहीं
2: जी,
1: मतलब मुझे अल्मोड़ा स्टेशन शुरू होने वाला था उस वक्त।
2: अच्छा।
1: तब तक शुरू नहीं हुआ था
2: जी।
1: जो शुरुआती स्टाफ भेजा जाता है ना, तो उनमें से मैं प्रोग्राम की तरफ से मैं था, फिर इंजीनियर्स थे, तो सेंटर तब तक शुरू नहीं हुआ था, हमको जाना था। तो लेकिन मैं मैदान पे रह इतना आदि था और होमसिक तो मैंने बताया था शुरू से था
2: जी, जी।
1: तो वो पहाड़ों की जिंदगी मेरे लिए बहुत कठिन थी, मतलब और परिवार भी था, बच्चे बच्ची छोटी थी तब, तो अब लगता है कि यार मूर्खता की, तुम जल्दी चले आए वहां से। अच्छा था वो
2: जी,
1: वो एक अलग अनुभव था
2: जी।
1: तो एक तो यह कि स्टेशन शुरू नहीं हुआ था, काम भी उतना नहीं था, आपको सिर्फ जाना है और प्लानिंग करनी है और तो कब होगा ये सब तय होना है सारा कुछ। लेकिन वो वहां चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उतरते जाओ, चढ़ते जाओ, तो ये सब था। और जो आदमी पहली बार गया हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। घूमने जाओ तो अलग बात है
2: जी,
1: लेकिन आपको रहना हो और जो कभी रहा ना हो, कभी रहा ना हो, तो वो उसके लिए हो, तो वो कठिन दौर था। लेकिन वो गुजरा और मैं एक साल के बाद ही वापस आ गया वहां से, उसके बाद फिर बॉम्बे आया।
2: अच्छा,
1: 86 में।
2: क्या बात है। तो ये तो पंत जी का शहर था, पंत जी का इलाका था, तो वो तमाम चीजें
1: और वो भी सब भी देखा हमने, वो पंत जी, अज्ञे जी वहां पर रहे और रविशंकर जी का वहां पे वो था,
2: बिल्कुल
1: यस। तो ये सब भी
2: उदय शंकर जी का।
1: तो वो सब भी देखा, घुमा फिरा भी, सब अच्छा भी लगा वो सब
2: जी।
1: कि ये सब, लेकिन मैं तो हैरान होता था कि यहाँ ये लोग कैसे
2: रहते कैसे।
1: उस वक्त वाकई हैरान होता था मैं,
2: कि
1: जो लगता था कि जिंदगी तो मैदान में ही है,
2: पहाड़ों
1: में कैसे।
2: बिल्कुल।
1: तो ये था
2: मुंबई, 80 के दशक की मुंबई, बहुत ही अलग तरह का मामला था। आप जैसे जयपुर शहर से आ रहे थे क्योंकि वहां के पले बढ़े हैं, पैदाइश नागपुर के, तो मुंबई आपके लिए एक बहुत बड़ा दायरा था, बहुत बड़ा क्षितिज था। पहला अनुभव क्या था मुंबई का?
1: नहीं, पहला अनुभव तो यही था कि एक तो ये तो सपनों की नगरी थी
2: जी,
1: फिल्मों में देखा ही देखा था और सब कुछ था। आज तो खैर हालत ही खराब है, उस वक्त 86 में जब हम आए थे तो अच्छी खासी भीड़ तो मुंबई में हमेशा रही है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: ये भीड़ भाड़ वाला शहर है, तो हर सपना देखने वाला यहाँ आता है और काम ढूंढने वाला यहाँ आता है। तो फिर यहाँ आने के बाद वो बसों का सफर, लोकल ट्रेनों का सफर, एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन था कि कुछ लगा था कि बॉम्बे में कुछ होगा और अच्छा लगेगा, और वो धीरे धीरे जिंदगी ढलती चली गई उस हिसाब से। हम शुरू में एंटोपिल में रहे, गवर्नमेंट कॉलोनी वहां पे थे, तो 11-11 महीने का जो किराया होता है उस पे, वो उस पैटर्न पे रहे और अलॉट होने का सॉल्यूट था, हम तो फ्रेश थे एकदम।
2: बिल्कुल। और तब तो लंबी लाइनें
1: हुआ करती थी। तो जीजस कॉलोनी जो एंटोपिल की थी वहां रहे और फिर वहां से बस पकड़ना, फिर इधर आना, एंटोपिल से किंग सर्कल आना वहां से पैदल
2: जी,
1: फिर ट्रेन पकड़ना, फिर चर्च गेट, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन थोड़ा उस वक्त शुरुआत में लगा, लेकिन फिर औरों की तरह से फिर हमको भी वो जिस दिशा में उतरना उस दिशा में खड़े होने की आदत हो गई।
2: मुंबई शहर आपको अपने हिसाब से ढाल लेता
1: तो
2: है।
1: फिर वो लोग अपने आप आपको उतार देते हैं
2: जी,
1: तो ट्रेन में ये हुआ कि उस

0: दिशा में मुंह करके खड़े हो जाओ
1: जी,
0: उतार देंगे लोग,
1: लोग उतार देंगे,
0: तो ये उतार
1: जी। तो मुंबई शहर में एक बड़ा आकाश आपको मिला, और जाहिर है कि उस समय तक तो कवि सम्मेलन भी हो रहे थे, रेडियो भी चल रहा था, तो जिंदगी किस तरह से बदली और यहाँ लिखने पढ़ने का दौर किस तरह से आगे बढ़ा?
0: यहाँ जो जिंदगी बदली वो मेरी उस वक्त गजल गायकी
1: चरम पर थी,
0: चरम पर। फिल्म संगीत जितनी पॉपुलर थी
1: जी,
0: मतलब जगजीत सिंह, पंकज दास, मेहंदी हसन, गुलाम अली, ये सब सुपर हीरो हुआ करते थे। मतलब अनूप जलोटा, इनके कैसेट जो है घरों घरों में चलते थे, बजाए जाते थे, मोहल्लों में मतलब चलते थे, शादियों फंक्शनों में भी ये उस वक्त चीजें
1: बजाया करते थे
0: लोग। तो इतनी पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक कहना चाहिए। तो वो दौर था जिस वक्त मैं बॉम्बे में एंटर हुआ था, और नेचुरली जो गजल का शायर होगा उसकी पहली ख्वाहिश होगी कि जगजीत सिंह तक किस तरह से पहुंचो,
1: बिल्कुल,
0: और वो उन तक मेरे शब्द भी पहुंचे। तो यहाँ आने के बाद तो ये सिलसिला चलता रहा, और लेकिन जगजीत सिंह साहब से पहले मेरी भूपेंद्र जी से बात हुई।
1: अच्छा, अरे वाह वाह, मुझे ये पता है क्योंकि अब हमने साथ में काम किया है और मैं आपके करीब भी रहा हूँ, कि भूपेंद्र सिंह की आवाज से आपको बेपनाह प्यार रहा है,
0: बहुत प्यार,
1: बल्कि हमने उनको बुलाने की बहुत भरसक कोशिश की थी। आपकी इच्छा ये थी कि वो इंटरव्यू मैं लूं, तब मैं था नहीं शहर में।
0: तो भूपी जी मतलब पहले थे जिन्होंने मेरी एल्बम में जो कोई चीज, और जैसे मैं जयपुर में आकाशवाणी में युवाणी में जो अपनी आवाज पहली बार मैंने रिकॉर्ड की
1: जी,
0: तो घर में जिस ढंग से मैंने खुशी का इजहार किया था और अपने आप की आवाज को आकाशवाणी में सुनकर
1: जी
0: तो खुशी हुई थी, तो वो खुशी मुझे यहाँ पे भूपेंद्र सिंह की आवाज में अपनी गजल सुन के हुई थी।
1: क्या बात है,
0: तो वो किसी गजल सिंगर ने, और मेरे फेवरेट गजल सिंगर ने या गायक ने जो इतना बड़ा सिंगर है, तो ये हुआ। तो उसके बाद जगजीत जी से बात हुई, तो मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आ जाओ, वो
1: पेडर रोड,
0: हाँ, पुष्प मिलन 25 उनका एड्रेस था
1: जी।
0: तो मैं गया, और उस समय का वक्त था। तो मैं बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को, कि बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं बनता है
1: जी।
0: जगजीत सिंह साहब रोज सुबह उनका वो रियाज का वक्त होता था, इतने बड़े आर्टिस्ट जो थे वो ऐसे ही नहीं थे, रोज रियाज करना उनका काम था जब मुंबई में होते थे
1: जी।
0: तो वो तानपुरा चल रहा है और वो सब कुछ, और मिलने जुलने वाले भी अगर आते हैं तो बीच में आते हैं और बातचीत होती है, और वो उनका सिलसिला फिर रियाज पे। तो ये तो मैं पहली बार गया तो वो तानपुरा चल ही रहा था, वो अपने बैठे हुए थे और फिर उन्होंने वो गजल देखी। मेरी खुशकिस्मती कि वर्णा अक्सर होता है कि इतने बड़े लोग, आपका मिलना ही बड़ी बात है उनसे
1: जी,
0: हाँ, वो उनका मिल जाना। फिर उन्होंने कहा कि गजल देखे, तो सरसरी निगाह से जब उन्होंने देखी तो ये मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने पहले ही उसमें कहा ये मैं कर रहा हूँ।
1: वाह वाह,
0: अक्सर होता है कि रख के जाओ, देखता हूँ, मैं करता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ, है ना
1: जी।
0: लेकिन उस वक्त उन्होंने उसी वक्त कह दिया ये मैं कर रहा हूँ।
1: वो कौन सी गजल थी, घर से निकले थे?
0: नहीं, ये जो जिंदगी की किताब,
1: ये जो जिंदगी की किताब है, वाह वाह वाह।
0: तो ये वो पहली गजल थी जो जगजीत जी ने गाई।
1: और भूपी जी ने क्या गाया था?
0: वो हैरानी होगी कि उस वक्त पंकज जी वगैरह सब ये शराब और हल्की फुल्की गजलों का दौर था। भूपी जी ने कहा कि यार मुझे गजलें बहुत है, मुझे हल्की फुल्की गजल चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ
1: हाँ।
0: तो मैंने पहली गजल जो डिमांड पे लिखी, डिमांड पे,
1: हाँ हाँ,
0: वो ये गजल थी, और जिसको मैं न कहीं पढ़ाता हूँ न सुनाता हूँ, और वो गजल जो मैंने कभी आज तक छुई नहीं।
1: अच्छा,
0: वो गजल शराब पड़ती।
1: ओह,
0: तो वो गजल लेकिन उनको पसंद आई, उन्होंने गाई और चलिए
1: जी जी जी। ये जो जिंदगी की किताब है ये भी आपकी पहचान के साथ पूरी तरह से जुड़ गई है, और ये कहना चाहिए कि एक तरह से आपकी प्रतिनिधि गजल है। तो जगजीत साहब ने तो सुनाई, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन हम आपसे भी सुनना चाहते हैं इसको।
0: ये गजल है जिसकी धुन मैंने खुद ने नहीं बनाई
1: जी,
0: तो मैं जगजीत जी की आवाज में जो धुन है, कंपोज है,
1: वो
0: हाँ वो पढ़ देता हूँ।
1: जरूर जरूर।
0: ये जो जिंदगी की किताब है, ये जो जिंदगी की किताब

0: क्या बात है। जगजीत जी ने जब इसे गाया और ये कैसेट रिलीज हुआ तो जाहिर है कि एक बहुत ही ख्वाब पूरा होने जैसी बात थी।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल।
0: और ये बहुत लोकप्रिय हुआ। आपके जहन में क्या चल रहा था?
1: नहीं, मेरे लिए तो एक सपना सच होने जैसा तो हुई बात है। और फिर जिस ढंग से इन्होंने गाया,
0: जी जी,
1: और ये कंसर्ट्स में भी अक्सर गाया करते थे, और सोशल मीडिया तो अब आया है, लेकिन कभी कभी मैं देख लेता हूँ और लोग बताते हैं इस गजल की जो लिसनिंग हुई है, जो व्यूअरशिप है, और वो नहीं है कि पूछ, मतलब खूब है,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो कमेंट्स है लोगों के, ये गजल वो गजल, और ये जगजीत जी ने बहुत अच्छी गाई, और ये वो शायरी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, और पूरे दुनिया से, पाकिस्तान, लंदन, अमेरिका, यहाँ यहाँ से कमेंट्स हैं उस गजल पे। तो ये गजल जिसने मुझे दुनिया भर में पहुंचा दिया, यूं कह लीजिए मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपको फोन करें तो आपकी रिंगटोन में भी ये गजल बजती है। जगजीत जी ने गा लिया, भूपी जी ने गा लिया, पंकज जी ने भी उस दौर में गा लिया था।
1: पंकज जी उसके बाद
0: जी।
1: ये गजल जगजीत जी ने गाई, उससे पहले पंकज जी, हाँ नहीं, पंकज जी पहले ये गजल थी, वो जो यहाँ हर शख्स हर पल हादसा हो नसरत, तो पंकज जी से भी जब मिला तो खुश हुए। और ये गजल पहली नजर में सबको ही अलग लग जाती है कि ये होने से डरता है, है ना। तो इस गजल से जुड़ा एक और भी किस्सा कि ये गजल जब आई तो मतलब उस पूरे एल्बम में ये अलग सी गजल थी, लोगों ने बहुत पसंद की।
0: नबील था, नबील,
1: नबील, नबील,
0: जी जी।
1: तो इसकी खूब लोगों ने प्रशंसा की, पसंद किया, सब कुछ किया। तो इससे जुड़े दो किस्से हैं। तो एक तो ये कि उन दिनों दूरदर्शन पर भी जब ये पूरा कमर्शियल नहीं हुआ था तो बड़ा अच्छा सुबह कार्यक्रम आता था वो गजल का, जिसमें सुरेश वाडकर, हरिहरन, पंकज जी, कभी कभी जगजीत जी, छाया जी, बहुत अच्छा नाम था, दूरदर्शन पे आता था गजल का, आरोही। तो ये गजल पंकज जी ने गाई उसमें, आरोही में
0: जी।
1: अच्छा, उन दिनों पता नहीं क्यों या नहीं हुआ तो इसमें राइटर का नाम, शायर का नाम नहीं था।
0: अरे बाप रे,
1: नहीं था। तो उन्होंने गा दी गजल, तो ये गजल घर घर में सुनी, मतलब उस वक्त दूरदर्शन ही था।
0: तो आपके संपर्क से गाई या उन्हें ये गजल कहीं मिली?
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो रिकॉर्ड होने के बाद की बात है।
0: अच्छा
1: है,
0: ओके।
1: एल्बम आने के बाद में, उसके बाद
0: आरोही में गाया।
1: हाँ, तो ये एल्बम तो हो गया था, लोग पसंद भी कर चुके सब कुछ। तो ये दूरदर्शन पे ये गजल दिखाई जा रही थी, सुनाई जा रही थी, और उस वक्त दूरदर्शन ही था जिसमें लोग अच्छे सीरियल देखते थे, अच्छे प्रोग्राम देखते थे, आरोही बहुत पॉपुलर था, तो ये चल रहा था और लोग सुन रहे। तो मेरा एक जयपुर का दोस्त है, तो अपने परिवार में बैठ के जैसे सुनता है, तो ये जब गजल आई तो उसने कहा, यार ये पाकिस्तानी शायर क्या खाके गजल लिखते हैं।
0: आपके अपने दोस्त ने ये बात
1: कही, मेरे दोस्त, और तब तक हमारा संपर्क भी नहीं था, वो है बॉम्बे में, वो हम बहुत अरसे से नहीं मिले थे।
0: जी जी।
1: तो ये पाकिस्तानी शायर क्या खाके गजल लिखते हैं,
0: ओहो,
1: है ना। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये हिंदुस्तान का शायर है और ये यही की गजल है। तो ये उसने मुझे बाद में बताया जब हम मिले और सब कुछ। तो उसका नाम है अजय कार्तिक, जो ये जो है जिंदगी का राइटर था।
0: हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा नाम है अजय कार्तिक जी।
1: तो वो तो जब बाद में मिले तो उसने कहा कि ये यार ये गजल तो हम सुन रहे थे और हमने, मेरा ये कमेंट था
0: जी।
1: अच्छा, दूसरी बात ये कि ये गजल पंकज दास साहब ने सूरत उनमें एक शेख अबू आदम आदम वाला को, एक शायर रहे हैं गुजराती के, बड़े शायर रहे हैं, तो उनकी पुण्यतिथि पर सूरत में कंसर्ट था। हाँ, तो वो पंकज जी वहां पे उन्होंने कंसर्ट किया, वहां गाने गए। मजरू सुल्तानपुरी वहां पे चीफ गेस्ट थे। तो मजरू साहब बैठे थे सामने, तो पंकज जी ने ये गजल सुनाई, तो फिर ये जब शेर सुनाया तो फिर मजरू साहब ऑडियंस में बोलते हैं, हाँ पंकज फिर सुनाओ। तो जब जो कहते हैं ना फिर सुनाओ, तो शायद मुशायरा हो या म्यूजिक का हो, तो ये लगता है कुछ गलत तो नहीं हो गया।
0: हाँ बिल्कुल,
1: कुछ तलफ्फुज़ गलत हो गया या कुछ मिसरा गलत हो गया या कुछ मेरे

0: कुछ कम ज्यादा तो नहीं कर बोल दिया है, सुना दिया हाँ, ये सुर का इधर उधर नहीं, फिर सुनाओ, फिर एक बार फिर उन्होंने तीन बार ये सुना और हाँ वाह तो ये होगा। फिर जब ग्रीन रूम में आए बजरू साहब उनसे मिले तो बोले कि ये किसकी गजल थी है, तो उन्होंने बताया कि ये उस वक्त मैं नौजवान हुआ करता था
1: जी।
0: तो नौजवान शायर बॉम्बे के राजेश रेड्डी, तो ये बहुत अच्छी गजल है, अलग गजल है, उसको मेरी तरफ से मुबारकबाद देना।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये मजरू सुल्तान का आशीर्वाद
1: शायर की बात है ना,
0: तो इस गजल से जुड़ी एक दो बातें हैं तो ये शेयर करना चाह रहा था।
1: क्या बात है, पंकज जी की आवाज में ये गजल सुनते हैं हम।

0: मुंबई के अपने सफर के बारे में कुछ और बातें बताइए।
1: मुंबई में फिर सफर तो मेरा ज्यादातर शायरी का ही रहा
0: जी,
1: और जगजीत जी वाला मैं सिलसिला एक और बहुत महत्वपूर्ण इंसिडेंट है वो सुनाता हूँ। उससे पहले एक मेरी शायरी और मुशायरों में कैसी वो एक सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा सिलसिला जो है
0: जी।
1: तो नेहरू सेंटर का एक ऑल इंडिया मुशायरा होता है सालाना,
0: बिल्कुल बहुत ही मशहूर जी।
1: आज तो वो दौर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन एक जमाना था मतलब उसके सुनने वालों में। और जब मैंने ये पहला मुशायरा पढ़ा तो उस वक्त स्टेज पे अली सरदार जाफरी
0: जी,
1: मजरू सुल्तानपुरी,
0: कैफी आजमी,
1: मुमताज राशिद और ये सब बड़े बड़े नाम है ना, बशीर बद्र, निदा साहब उसके संचालन कर रहे थे
0: जी,
1: अली सरदार जाफरी उसके वो थे सदारत कर रहे थे। और सुनने वालों में दिलीप कुमार,
0: बाप रे,
1: अजीत एक्टर
0: जी,
1: और भी और कई तो फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोग थे। तो वो दौर था जब बिहार जो नेहरू सेंटर
0: के
1: अलग ही हुआ करता था
0: जी,
1: हॉल खचाखच भरा हुआ। तो और मेरा पहला बड़ा मुशायरा मुंबई का,
0: क्या बात है,
1: मेरा पहला मुशायरा तो बड़ा मुशायरा। तो निदा साहब ने मुझे उसकी ओपनिंग के लिए, बल्कि यूं कह लीजिए,
0: अरे बाप,
1: तो शुरुआत के एक दो मुशायरों में।
0: और निदा साहब की अपनी अदा थी, वो बहुत रेफरेंसेस के साथ बुलाया करते थे।
1: तो उन्होंने मुझे माइक पर बुला के, मेरा पहला मुशायरा और ये ऑडियंस, ये लोग है ना, भरपूर ऑडियंस, पूरा हॉल। तो मैंने गजल पढ़ी, तो वो गजल जब पढ़ता गया तो सब हर शेर को दोबारा पढ़ना पड़ा, ये सब कुछ हुआ। और जब मैं पढ़ के आया हूँ तो मुमताज राशिद और जफर गोरखपुरी, तो उस वक्त दाद देने का एक ये भी होता था, ये बड़े लोग जो दाद देते थे, जफर गोरखपुरी साहब मेरे बराबर में बैठे थे, मैं होता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत अच्छा लगा, ये प्यार हुआ ना, तो मुशायरा तो हो गया।
0: अरे अब तो शुरुआत कर रहे थे जब जी,
1: मुशायरा तो हो गया।
0: अरे बाप रे, बहुत बड़ी बात है,
1: तो ये बड़ी बात थी
0: जी।
1: तो ये मैंने कहा था कि उधर नीरज जी का वो हार पहनाना, माला पहनाना
0: जी,
1: तो ये तो हो गया, मुशायरा तो हो गया। और ये ऐसे सुने, फिर अजीत साहब ने मुझे हैदराबाद बुलाया,
0: गजब,
1: अपने घर पर
0: जी,
1: उनसे वहां से मिलना हुआ, सुना सुनाना हुआ। तो ये हुआ, ये गजल मैं सुन रहा, जो बता रहा हूँ जिसके बारे में
0: जी,
1: ये गजल जगजीत सिंह साहब को बहुत पसंद थी।
0: हाँ हाँ।
1: और जगजीत सिंह साहब ने इसको धुन भी बनाई, रिकॉर्ड भी किया, उनका हाँ। आखिरी एल्बम था ये।
0: ओहो हो।
1: और वो एल्बम रिलीज होने से पहले वो नहीं रहे दुनिया में
0: जी, जी।
1: वो चले गए
0: जी,
1: वो एल्बम रिलीज हुआ, चित्रा जी पता नहीं कब करेंगे नहीं करेंगे
0: जी।
1: तो ये गजल उन्होंने गाई भी और सुनाई भी। क्योंकि इस गजल से मैं एक और जो जगजीत जी के साथ जुड़ा, मैं बता रहा हूँ कि मेरी दूसरी किताब पहली उड़ान
0: जी
1: और दूसरी आसमान से आगे,
0: बिल्कुल।
1: तो जब आसमान से आगे की किताब के लोकार्पण की बात हुई और मैं चाह रहा था, तो मैं उनको अपने चाह रहा था कि जगजीत जी इसका कव करें, हाँ, तो मैं उनको इनवाइट करने गया और बोला कि मैं चाह रहा हूँ कि आप करें, तो इसके लिए अलग से प्रोग्राम क्यों करते हो, मेरा कंसर्ट है केयर का जो है नेहरू सेंटर में, तो उसमें कर देते, तुम उसको किताब लेके आ जाना, फिर अपन कर लेंगे। तो मैं चला गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो हुआ वो ऐसा होगा
0: जी जी जी।
1: तो किताब लेके रैपर वैपर सबके रिबन में सब लेके चला गया। तो मैं मिला वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ऑडियंस में बैठो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और वहां उसको

कर देंगे उसमें सब ठीक है। तो मैं बैठ गया, फिर उन्होंने वो गजल गाई, दूसरी गजल, जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। तो जगजीत जी ने ये गजल गाई और उसके बाद श्रोताओं से कहा कि ये गजल जो मैंने अभी गाई ये हमारे प्यारे शायर राजेश रेड्डी की लिखी हुई है और आज इत्तेफाक है कि वो हमारे ऑडियंस में मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि वो ऊपर आए और आज उनकी किताब का भी वो है वो लेके

0: तो बोले नहीं राजेश रुकिए। तो मैं आया तो उनका कंसर्ट है, देखिए स्टेज है पूरा
1: और पूरा हॉल
0: है, म्यूजिक का पूरा सेटिंग है, वो गा रहे हैं, वो बीच में उन्होंने बुलाया हुआ है। फिर वो उन्होंने कहा कि भाई एक माइक इधर लगाइए, सेटिंग माइक दीजिए। हाँ तो ये इसकी म्यूजिक कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं, और तो वो दिया उन्होंने कि तो अब वो गजल पढ़िए, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: अरे बाप रे,
0: वो उससे पहले महफिलों में गा चुके थे, मतलब उनको पसंद थी गजल, तो सारा तो वो गजल पढ़िए जाने कितनी उड़ान बाकी। तो बात वही खत्म हुई, मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी।
1: जी
0: हो ये रहा है कि मैं मतलब मैंने पढ़ा शुरुआत की और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए।
1: अरे गजब,
0: ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: जी जी
0: आज तक किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: गजब गजब,
0: ऐसा विमोचन और ऐसी ऐसा सम्मान, ऐसा प्यार। तो मैं पढ़ रहा हूँ और वो उसे गा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ वो उसे गा रहे हैं।
1: अद्भुत अद्भुत,
0: ये अद्भुत अद्भुत। और जब घर पे मैंने श्रीमती जी को बताया कि ऐसा हुआ, तो वो मुझे क्यों नहीं लगे आप,
1: अरे
0: क्यों
1: नहीं लगे,
0: और आपको मालूम था कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो ये था उनका प्यार, ये था उनका शायर को सम्मान देने का तरीका। तो इस गजल के साथ ये जुड़ाव है, इसलिए मैंने बताया।
1: क्या बात है, ये आपसे सुनेंगे।
0: जाने कितनी उड़ान बाकी है,

0: जाने कितनी उड़ान। और ये शेर खास तौर से यूनुस
1: स्वागत है।
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन,
1: बाबा
0: जितनी बटनी थी बट चुकी ये जमीन, अब तो बस आसमान
1: बाकी
0: है, जाने कितनी उड़ान बाकी है। रसूल का एक और शेर खास मैं सुनाना चाह रहा हूँ।
1: स्वागत है।
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके,
1: वाह,
0: सर कलम होंगे कल यहाँ उनके, जिनके मुंह में
1: जबान
0: बाकी है, जाने कितनी उड़ान बाकी है।
1: क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। विविध भारती के आपके इस दौर की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत प्यारा वक्त आपने विविध भारती में दो बार गुजारा है, और मुझे याद है कि आपके जमाने में जो कार्यक्रम आपने शुरू किए उसमें सरगम के सितारे उजाले
0: उनकी
1: यादों के मंथन जैसे कार्यक्रम थे। मुझे लगता है कुछ और भी कार्यक्रम, गुलदस्ता एक कार्यक्रम था जो आपने शुरू किया है, सखी सहेली आपके दौर में शुरू हुआ है, तो ये तमाम चीजें हैं, इस दौर को याद कीजिए।
0: नहीं, वो मेरे पूरे करियर का पीक भी था और स्वर्णिम दौर था हर तरह से, मतलब ये नहीं कि मेरी आखिरी वो पोस्टिंग थी कहना चाहिए या मेरा करियर का आखिरी पीरियड था, उस लिहाज से नहीं, मेरे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी और लोगों से जुड़ाव का भी और चीज़ों को एक्सप्लोर करने का भी वो बेस्ट पीरियड था, और उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीज़ों को संवारने और उसको साकार करने का अवसर दिया, जिसमें मैं बार बार नाम लूंगा तो सबसे पहले यूनुस,
1: अरे राकेश जोशी,
0: राकेश जोशी, उस वक्त हमारे जो साथी लोग थे लोकेंद्र जी, महेंद्र मोदी, ममता, कांचन प्रकाश संगीत, कमलेश और शेट्टी जी जो हमारे मैनेजर हुआ करते थे, एक तरह से
1: सब चीजों को संभालते
0: थे, तो एक अच्छी टीम थी जो हर तरह से जो जिस चीज का एक्सपर्ट था वो था, और वो अपने को भरपूर सहयोग के साथ, भरपूर इन्वॉल्वमेंट के साथ, भरपूर पोटेंशियलिटी के साथ
1: जी,
0: मतलब हर आदमी ने अपना बेस्ट दिया
1: बिल्कुल, और हर रोज आप एक नई चुनौती सामने रखते
0: हैं, कम होता है
1: जी।
0: तो मैं हमने तो ऐसे ऐसे वो दौर देखा और किया है कि कोई बड़ी हस्ती है,
1: नौशाद साहब आ रहे, खयाम साहब आ रहे,
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी आए
1: जी।

0: आनंद जी आए,
1: बिल्कुल
0: है ना, अनु मलिक भी आए, कौन कौन नहीं आए यहाँ पे,
1: बिल्कुल
0: तो सारे, और संगीतकारों में भी बड़े बड़े लोग,
1: रवि जी आए,
0: हाँ
1: बिल्कुल,
0: खयाम साहब
1: आए, हाँ। और बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा है
0: तो बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े इंटरव्यूज,
1: हाँ। मुझे याद है कि खयाम साहब, नौशाद साहब आए हैं,
0: हाँ।
1: और हम उनको छोड़ने नीचे गाड़ी तक गए हैं,
0: हाँ।
1: और वही एक घंटे बात हो रही है,
0: हाँ, हाँ। उनको वो नौशाद साहब तो ऐसे थे कि वो उनको बोलने का बहुत वो था
1: जी,
0: वो अच्छा भी बोलते थे और इतना था उनके पास बोलने का,
1: बिल्कुल,
0: और उनको शौक भी था, तो बहुत अच्छी बातें करते थे, देर तक बातें करते थे। कैफी आजमी साहब, तो मतलब ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियों के, फिर हमने ये भी किया कि इनको हमको जाया नहीं करना है कि एक घंटे में बांध लिया, दो घंटे में बांध लिया, उनको कभी सरगम के सितारे, कभी मैं हमारे मेहमान, कभी इसमें उसमें, जितना हम उनके
1: ले सकते हैं
0: उनका श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये लोग बार बार नहीं मिलते हैं, ये लोग कहाँ आएंगे अब इस दुनिया में, तो इनका जो है वो है, जो विविध भारती के पास है वो किसी के पास नहीं,
1: किसी के पास नहीं है।
0: वो आर्काइवल रिकॉर्डिंग और स्टेशन पे है
1: जी,
0: लेकिन इस तरह की जो रिकॉर्डिंग्स जो है, इतनी लाइवली रिकॉर्डिंग्स जो है, वो संस्मरणात्मक रिकॉर्डिंग है सारी की सारी, जब गानों पे बातें हो रही है या वो गाने कैसे बने उस पर बातें हो रही है
1: जी,
0: है ना, आपका फेवरेट क्या है, आप वो सारा कुछ, मतलब पूरी उनकी यात्रा
1: एक से बढ़कर एक
0: वो हुए, प्लस कहीं कहीं कोई चला गया अचानक तो उसके लिए छुट्टी भी हो तो सब लोग एक फोन पर, पूरी टीम विविध भारती की स्टूडियो में हाजिर,
1: और
0: पूरा प्रोग्राम शुरू हो गया, तो ये सब वो एक अनुभव जो है वो विविध भारती में हुआ और कहीं नहीं हो सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो विविध भारती में वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा हमेशा रहा कि चाहे मौजूदा कलाकार हो चाहे ट्रिब्यूट्स हो, जी जान के साथ लोगों ने काम किया। एक चीज जो क्रिकेट का आपका शौक, उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा, एक बहुत जुनून रहा है आपको क्रिकेट का, मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हो रहा है तो आपने स्पेशल प्रोग्राम शुरू कर दिया था और मैंने वो चुनौती निभाई थी कि रोज सुबह एक बुलेटिन देना है।
0: क्रिकेट का शौक बहुत अरसे से रहा और शायद ये हमारा राष्ट्रीय खेल शुरू से रहा है
1: जी,
0: तो थोड़ा बहुत खेला भी, लेकिन देखने का शौक जो है वो, ये तो वो जमाना था, वो दीवानगी का वो आलम था कि इसके लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी तक ली है मैच देखने के लिए
1: जी जी,
0: तो ये भी हुआ है, और खासतौर से जब हम वर्ल्ड कप जीते 83 में,
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बाद तो कोई कमाल ही हो गया मतलब, और जब जयपुर में आकाशवाणी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट था, स्पोर्ट्स भी था, देखता था
1: जी,
0: तो पाकिस्तान इंडिया का मैच, इंडिया इंग्लैंड का मैच, ये सब देखा और आनंद आया।
1: बिल्कुल, विविध भारती के दौर में भी क्रिकेट पर हमने बहुत कार्यक्रम किए आपके दौर में, और मंथन किया जब पाकिस्तान गई थी इंडिया की टीम, और ऐतिहासिक दौरा था, दिलीप साहब को रिकॉर्ड किया उस जमाने में, और उन्होंने शुभकामनाएं भेजी इंडिया की टीम को, तो एक जुनून उससे मैं वाकिफ हूँ।

0: एक जरूरी बात रह गई है और वो है रेखा जी से आपकी मुलाकात की बात।
1: रेखा से, रेखा का यूं है कि वो हम लोग एमए में साथ थे,
0: जी जी,
1: एमए हिंदी लिटरेचर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो एक ही क्लास में थे और हम दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। मैं जैसे मैंने बताया, हमारे पिताजी पीएनटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी मुलाजिम के बेटे बेटा, वो उस तरह से परिवार में पला बढ़ा, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत समृद्ध थे। लेकिन जो रेखा की जो फैमिली है वो सिंधी कम्युनिटी है, वो लालवानी रहे हैं, है मतलब, तो वो बिजनेस में थे जापान में, हमारे फादर इन लॉ, दोनों ब्रदर इन लॉ हांगकांग मनीला, तो वो उनका बैकग्राउंड ही अलग था, मतलब उनका आर्थिक स्तर भी बहुत अलग था
0: जी,
1: तो कोई संभावना नहीं थी इसकी, लेकिन वो जो होता है वो होता है। तो जब उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत पहचान गीतकार के रूप में, थोड़ी पत्रकार के रूप में सब होने लगी थी, लिखने वाले के, तो और अट्रैक्शन भी हो ही गया था और हम लोगों में मिलना जुलना सब कुछ है। लेकिन शादी तक की बात, ये उनका साहस था
0: जी जी,
1: प्रपोज तो नेचुरली मैंने ही किया था, लेकिन मैं, हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था और विलोम था एक तरह से, तो उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने कहा ठीक है। और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है
0: जी,
1: तो घर में बता के तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है।
0: ओके,
1: घर में तो वहां तो राजी होने का सवाल ही नहीं उठता कि वो मान जाए। तो अच्छा, उस वक्त हमारे इन-लॉ, फादर इन-लॉ जापान में रह रहे थे, ये हमारी जो सास है मदर इन-लॉ जो है वो उनके साथ ये रह रही थी, सब कुछ, दोनों भाई बाहर थे, तो घर का कोई पुरुष यहाँ मौजूद नहीं था, और माँ को भी ये बताने की और इस हालत में वो उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे समाज में शादी करते हैं।
0: अरे बाप रे।

0: आर्य समाज में तय हुआ शादी। हम मेरे कोई निकट के मित्र 5-7, और उस वक्त भी मतलब मैं क्योंकि अपने कॉलेज के ज़माने से अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से लिखने पढ़ने और थिएटर का जो माहौल था, तो अपने लेक्चरर्स का चहेता बन गया था, मतलब ये था
1: जी,
0: तो वो सब
1: जी.
0: आगे आगे करते थे, तो मेरे 2-3 जो लेक्चरर्स थे वो शादी में आए।
1: अरे वाह,
0: आर्य समाज की शादी में,
1: क्या बात है।
0: तो वो उन्होंने संभाला और सब कुछ हुआ। अच्छा हुआ ये कि मैं शादी के बाद वो अपने घर चली गई।
1: अरे
0: मैं अपने घर चला आया।
1: जी जी जी।
0: तो उन्होंने कहा कि अब मैं बता सकती हूँ कि हम मैंने शादी कर ली है। और तो अब तो
1: कुछ हो नहीं सकता,
0: होंगी नहीं कि सबकी। तो हमारे जो लेक्चरर्स थे तो नेचुरली वहां से रेजिस्टेंस होना था कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी को बुलाते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने वो दौड़े दौड़े जापान से लौट के आए। फिर उन्होंने सब बता दिया सब कुछ, तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे बात करेंगे, उनको बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा कि मानेंगे। तो मुझे यहाँ से ले जाओ।
1: अरे बाप रे,
0: ये इनकी हिम्मत बता रहा हूँ मैं अब। तो मुझे ले जाओ यहाँ से। तो मैं अपने 2 लेक्चरर्स के साथ घर गया हूँ उनके।
1: गजब।
0: और हमारे फादर इन लॉ जो मौजूद थे, तो हाँ हाँ ये बेटी चाय वाय पी सब कुछ। तो उन्होंने वही कहा कि थोड़ा हमें वक्त दीजिए ना, हम ढंग से करते हैं, इस करेंगे उसको। लेकिन ये फिर मुझे अलग ले गई, बोले नहीं
1: ये नहीं हो रहा है,
0: ये नहीं होने देंगे। मैं भी चलूंगी।
1: गजब।
0: मैं भी चलूंगी। तो फिर उन्हीं के साथ हम लोग बाहर आ गए और हम लोग निकल आए। और फिर मैंने अपने घर वालों को भी तब बताया।
1: जी जी जी।
0: जब उनको लेके आया कि मेरी शादी हो गई है
1: और ये है।
0: तो इस तरह से ये पूरी कहानी हुई। और इसके पीछे मेरी तो जो है सो है।
1: हाँ।
0: सारा साहस इनका है।
1: क्या बात है,
0: ये उस जमाने में।
1: जी शानदार शानदार। तो ये अद्भुत कहानी रही है और ये हमारे सुनने वालों के साथ शेयर हुई, तो ये भी एक दिलचस्प है। सबसे अच्छी मुलाकातें वो होती हैं जिनमें आगे की गुंजाइश छूट जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, 2 एपिसोड में उनको समेटना बड़ा मुश्किल था। आगे फिर मिलेंगे और कुछ बहुत सारी बातें आपके साथ की जाएंगी। चलते चलते आपसे कुछ सुनना चाहेंगे।
0: मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ।
1: जी जरूर इरशाद।
0: ये रोजमर्रा का सच हम सबके साथ, किसी दिन जिंदगानी में
1: किसी दिन
0: करिश्मा क्यों नहीं होता।
1: वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: किसी दिन जिंदगानी में करिश्मा क्यों नहीं होता, मैं हर दिन जाग तो जाता हूं, जिंदा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन मेरी एक जिंदगी के
1: कितने
0: हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता।
1: वाह वाह वाह।
0: मेरी एक जिंदगी के कितने हिस्सेदार हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में मेरा हिस्सा क्यों नहीं होता। और 2 छोटी छोटी बहर के शेर
1: इरशाद।
0: एक तो ये शेर के,
1: एक आंसू
0: कोरे कागज पर गिरा।
1: वाह।
0: एक आंसू
1: कोरे कागज
0: पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या
0: एक आंसू कोरे कागज पर गिरा और अधूरा खत मुकम्मल हो गया।
1: क्या बात है।
0: और ये शेर आखिर में,
1: गम छुपाना
0: कोई मजाक नहीं, गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। क्या बात क्या बात।
0: गम छुपाना कोई मजाक नहीं, देर तक मुस्कुराना पड़ता है।
1: क्या बात है क्या बात है। सर इतनी सारी बातें हुई, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी गजल सुनाए जो आपके इस पूरे रचनात्मक सफर की रिप्रेजेंटेटिव हो, जो आपके मन की हो, जिसे आप जरूर सुनाना चाहें।
0: यूनुस, ये गजल मैं इसलिए खास महसूस करता हूं अपने क्रिएटिव सफर की, कि रामपुर की एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, रजा लाइब्रेरी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो उसमें रिसर्च का नामी गिरामी लोग तो आए, बहुत अच्छी महफिल थी। तो उसमें ये गजल जो मैंने पढ़ी
1: जी,
0: तो इतना प्यार मिला, तरह मुशायरा था जो मेरा पहला अनुभव था।
1: जी जी।
0: मतलब किसी
1: लाइन होता है।
0: लेकिन ये गजल मुझे वहां 2 बार पढ़नी पड़ी।
1: क्या बात है।
0: इतना प्यार मिला। तो वो हासिल मुशायरा साबित हो गई।
1: वाह।
0: तो इसलिए मेरे लिए वो जो है बड़ी यादगार गजल रही। तो मैं वो उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ।
1: इरशाद इरशाद।
0: अब क्या बताएं

0: अब क्या बताए, टूटे हैं कितने, कहाँ से हम खुद को समेटते हैं, यहां से
1: क्या बात
0: वहां
1: है,
0: से
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हम खुद को समेटते हैं, यहां से वहां से हम अब क्या बताएं तू। और ये शेर में जो खास सुनाना चाह रहा हूं,
1: इरशाद
0: इसमें एक लफ्ज है, शब्द है शराब।
1: जी,
0: एक होता है शराब और
1: और
0: एक होता
1: ये
0: है
1: होता है
0: शराब, जिसे
1: शराब।
0: मृगमरीचि का
1: जी
0: मिराज जिसे उर्दू इंग्लिश में
1: यस,
0: बोलते हैं, कि रेगिस्तान में पानी जैसा होता है, दिखता है, होता नहीं
1: होता नहीं,
0: है ना मरुस्थल में।
1: आग का धोखा है।
0: हाँ, पानी का धोखा, आग का धोखा, वो सब रहे। तो ये जो इस्तेमाल किया, उस पर पूरी जो महफिल थी उसने प्यार दिया। अब क्या बताएं, टूटे हैं कितने, कहां से हम अब तो शराब ही से बुझाने लगे हैं प्यार।
1: वाह वाह, अब तो शराब
0: अब
1: से
0: तो
1: ही।

0: कहां से हूं।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो आगे की बातचीत के लिए प्यास बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी बातें की।
0: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस, और पूरे विविध भारती परिवार को मेरी तरफ से धन्यवाद, आभार, और अपने पूरे परिवार में फिर एक बार अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए और पुराने श्रोताओं से मिलने के लिए, मिलाने के लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया।
2: ये था जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं और अब समय है हमारे युवा श्रोताओं के खास कार्यक्रम युववाणी का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी
1: ऑन 102 एंड 103.6 एफएम पर। आज के इस युववाणी के सफर में आपके साथ हैं आपके दो रेडियो दोस्त, मैं हूं कुणाल
0: और मैं हूं निकिता। तैयार हो जाइए क्योंकि आज का युववाणी का सफर जो है हमारा वो होने वाला है बेहद खास।
1: आज हम आपको लेकर चलेंगे युववाणी स्पेशल जिंदगी एक्सप्रेस ट्रेन में और साथ में एंजॉय करेंगे खूबसूरत सा सफर।

0: दोस्तों एक ऐसा सफर जहाँ खिड़कियों से सिर्फ आपको नज़ारे नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभव, किस्से, संघर्ष और भी बहुत कुछ दिखाई देंगे।
1: जहाँ पर हर स्टेशन कोई नई सीख देगा, हर मोड़ कोई नई कहानी सुनाएगा और हर मुसाफिर अपने साथ कुछ यादें भी ले जाएगा और छोड़ भी जाएगा।
0: तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज की ये जिंदगी एक्सप्रेस लेकर आई है कुछ सोचने वाले पल, कुछ मुस्कुराते से स्टेशन और कुछ यादगार बातें।
1: तो युवाणी में साथी श्रोतागण कृपया ध्यान दें, जिंदगी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर युवाणी से रवाना होने वाली है। इस सफर में आपके साथ होंगे सोच के नए स्टेशन, इतिहास की खिड़कियां, प्रकृति की मिठास, साहित्य की खुशबू, मंजिलें और ताजा खबरों के पड़ाव।
0: और दोस्तों इस ट्रेन

0: में जो है आपको किसी भी तरह के खर्च वाले टिकट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जरूरत है बस एक अच्छी सी मुस्कान की। तो अपने सपनों का सामान संभाल लीजिए, उम्मीदों की जो टिकट है वो अपने साथ रखिए, क्योंकि जिंदगी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म को छोड़ने वाली है।
1: तो सफर शुरू करते हैं, और इस सफर में खूबसूरत गानों का साथ ना हो तो सफर अधूरा लगेगा ना। तो लीजिए सुनते हैं ये गाना और एंजॉय करते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि कुणाल सफर हो और गाने ना हो ये तो गलत बात है।
1: बिल्कुल।

0: आ गया, हमें पता ही नहीं चला है ना। कुनालिस स्टेशन का नाम क्या है जरा बताना तो।
1: ओ, इसका नाम है सोच विचार स्टेशन।
0: जी हाँ दोस्तों, और इस स्टेशन का माहौल जो है ना थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि देखो किसी के हाथ में शॉपिंग बैग है, कोई मोबाइल में इतना खोया हुआ है कि ट्रेन के आने की आवाज तक नहीं सुन पा रहा है।
1: हाँ, ये तो तुमने एकदम सही कहा निकिता, पर आजकल जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो गई है। लोग चीजों का इस्तेमाल तो कम कर रहे हैं, दिखावे के लिए उपभोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल कुणाल, मैं इस बात से सहमत हूँ, और ये बात मैंने भी महसूस की है कि लोग जो है ना वो चीजों का इस्तेमाल कम और उपभोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं।
1: बिल्कुल, हर दिन हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कहीं पे कुछ देखते हैं मोबाइल चलाते हुए, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हमें कुछ ऑफर दिख जाते हैं, कर जाते हैं, तो हमारे दिमाग में डेली चलता रहता है कि नया कुछ चाहिए, कभी नया फोन चाहिए, कभी नए कपड़े, कभी नई चीजें। तो भले ही पुरानी चीजें जो है अभी भी अच्छी हालत में होगी,
0: बिल्कुल,
1: पर फिर भी हमें कुछ ना कुछ नया चाहिए।
0: और ये जो आदत है ना कुणाल, ये धीरे धीरे हमारी जरूरत को एक नए अंदाज में बदल देती है, और उसका नाम है दिखाव। और हम भूल जाते हैं कि ये जो चीजें हैं ना ये हमारी सुविधा के लिए होती है, ताकि हमारा काम आसान हो, लेकिन ये नहीं होता कि हम उस चीज को प्रतिस्पर्धा के रूप में लें, यानी कि उसके पास ये चीज है मेरे पास नहीं है तो मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए, मेरे पास ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तुमने एकदम सही कहा निकिता। और अगर हम उपभोग की जगह पर उपयोग करें और ये सीख जाएं, तो ना सिर्फ पैसों की बचत होगी बल्कि हम हमारे पर्यावरण को भी हम ज्यादा सुरक्षित रख पाएंगे।
0: जैसे कि पानी। अब देखो ना, कई लोग बिना जरूरत नल खुला छोड़ देते हैं, या फिर बिजली जो है लाइट्स और पंखे चलते रहते हैं, भले ही कमरे में कोई हो ना हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चले ही छोड़ जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा कई बार मैंने भी नोटिस करा है कि जैसे हमारे ऑफिस में अगर कोई चली जा चुका है तो वहाँ पे फिर भी लाइट पंखे चालू रहते हैं।
0: और कई बार तो हमारे घर में भी ऐसा होता है कि हाँ। जैसे कि हम किसी रूम से बाहर निकले, हमारा काम खत्म हो गया, तो हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है, हमारी लाइट्स ऑन रहती है, पंखा ऑन रहता है, कूलर हम लोग चालू छोड़ देते हैं, भले ही हमें थोड़ी देर के लिए जाना हो, लेकिन हम ये महसूस नहीं करते कि उस थोड़ी सी देर में कितना कुछ फर्क पड़ेगा।
1: हाँ, और अगर आप हम भी कभी भी कहीं पर भी देखें चालू, तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, शायद हमें बंद कर देना चाहिए। हमें कभी कभी हिचकिचाहट होती है कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बंद, तो
0: हमें मुझे तो लगता है कि ये चीज हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
1: ये हमें जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और खाने की बर्बादी भी काफी बड़ी समस्या है।
0: बिल्कुल,
1: थाली में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए वही खाना मेहनत और उम्मीद दोनों होता है।
0: ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। हम लोग बर्थडेज में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, हम लोग किसी शादी में जाते हैं, या फिर कोई हमें इनवाइट करता है हम वहाँ जाते हैं, तो हम बहुत सारी जगह मैंने ऐसे देखा है लोग करते भी हैं कि प्लेट में जैसे जितने भी आइटम्स हैं वो थोड़ा थोड़ा करके रख लेते हैं उन्हें, जबकि इस बात का एहसास कहीं ना कहीं होता है, भले ही वो छोटा सा हो, लेकिन होता है कि ये चीज शायद मैं इतना फिनिश नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी वो उसे ले लेते हैं। एट द एंड क्या होता है, वो चीज वेस्ट होती है और वो डस्टबिन में ही जाती है।
1: बिल्कुल, ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि भरी की भरी प्लेटें ऐसे ही जाती हैं।
0: बिल्कुल, और वो खाने का तो अन्न का तो अनादर है ही, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि वो जो अन्न हम फेंक रहे हैं, जो वो वेस्ट जा रहा है, वो किसी ऐसे इंसान की भूख मिटा सकता है जिसे उसकी वाकई में बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: और लोगों के पास एक तरीके से हम देखें तो जैसे कि जरूरत की जितनी भी सामानों की हमारे पास लिस्ट होती है उतना सामान होता है, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही सामान होता है, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है पता नहीं क्योंकि मेरे पास इसमें से भी और कुछ कमी तो है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम वैसा ही है जैसे कि लोगों की अलमारी पूरी तरह से भरी रहती है, लेकिन फिर भी जब उनके पास कुछ पहनने का मौका आता है तब वो ये बोलते हैं मेरे पास तो पहनने के लिए कुछ है ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये तो मतलब कह सकते हैं यूनिवर्सल प्रॉब्लम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: लेकिन अगर हम कुणाल पहले की बात करें ना, तो पहले का जमाना ना बड़ा अच्छा होता था हमारा। नोटिस किया तुमने कि पहले लोग ना चीजों को बड़ा संभाल संभाल कर रखते थे, किताबें हम एक से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते थे, अगर वो बुक हमने पढ़ी है तो हमारे छोटे भाई बहन है तो वो बुक उनके भी काम आएगी, और फिर जैसे कपड़े भी होते थे हमारे तो वो छोटे भाई बहनों तक पहुंचते थे, और खाने की बात हमने की तो खाने का जो दाना होता था ना, एक एक दाना, वो भी बर्बाद नहीं किया जाता था, कितनी रेस्पेक्ट करते थे उस समय हम। और आज एक ऐसा दौर है जहाँ पर हम चीजों को कहीं ना कहीं समझदारी से उपयोग में नहीं ले रहे हैं।
1: और अब अगर हम अब का टाइम देखें तो मोबाइल थोड़ा सा पुराना क्या हो गया, कुछ ना कुछ नया उनको

0: चाहिए मोबाइल में.
1: बिल्कुल, हर बार ऐसा होता है ना कि आज ये नया मोबाइल फोन आया है तो मुझे ये अच्छा है, इसमें अच्छे फीचर्स है, हाँ. तो मुझे ले लेना चाहिए, ऐसे मन में थॉट्स आते हैं लोगों के.
0: आते हैं. और खाने का स्वाद से ज्यादा तो फोटो के लिए हम मोबाइल ले रहे हैं.
1: हमने बात की ना दिखावा,
0: हाँ.
1: जो ये आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला है ना कि अच्छी लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल, तो उसके चक्कर में लोग क्या करते हैं कि अब ये बंदा वहां गया है, इसने किसी रेस्टोरेंट में ये वाला फूड ऑर्डर किया है जो कि दिखने में काफी अच्छा है, और कह सकते हैं कि मतलब जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी में है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मैं भी जाऊं और उसकी फोटोज जो है, वीडियोस जो है, मैं भी सोशल मीडिया पे अपलोड करूं. तो यही कुछ मतलब आज के टाइम पे हो रहा है.
0: बिल्कुल, इस सब में ही हमारा सबसे ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है. और हम ये भी देखें कि कभी हम फोटो मोबाइल स्क्रॉल करते हैं लेकिन अपने सपनों को समय नहीं दे पाते.
1: बिल्कुल, जबकि हमें करना भी तो यही चाहिए ना कुणाल, कि हमें अपनों को टाइम देना चाहिए, अपने सपनों को टाइम देना चाहिए, और वहीं स्क्रोलिंग, लगातार स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, तो इसमें कहीं ना कहीं हम अपना 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे तो बर्बाद ही कर देते हैं, तो फिर कहाँ हम अपने और अपने सपनों को टाइम दे पाएंगे. लेकिन मुझे लगता है ये छोटी छोटी सी आदतें हैं ना जो काफी बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है. जैसे कि पुरानी किताबें हमारी है तो हम चाहें तो पुरानी किताबों को दोबारा से हम पढ़ भी सकते हैं या फिर किसी को दान भी कर सकते हैं, जैसे वो उसके काम आ जाए. कपड़े हमारे पास हैं तो पहले तो सोच समझ कर खरीदें, और अगर आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो दोबारा इस्तेमाल किए जा सके तो कोशिश करें इस्तेमाल करने की, और आप भी उन्हें डोनेट भी कर सकते हैं ताकि कोई जरूरतमंद उन्हें पहन सके.
0: बिल्कुल,
1: प्लास्टिक का यूज आप कम से कम करिए. और सबसे बड़ी बात, हम जब खाने की बात कर रहे थे, खाने की वेस्टेज की बात कर रहे थे, तो खाना भी हमें सोच समझ कर थाली में लेना चाहिए, और उतना ही खाना है जितना हमसे वो खत्म हो सके.
0: बिल्कुल, और बिना मतलब की स्क्रॉलिंग हमें पूरी तरह से बंद करनी चाहिए.
1: ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही है, क्योंकि जब हमारे पास फ्री टाइम होता है हम क्या करते हैं, हमारा फोन निकाला और बस स्क्रॉलिंग यही हम करते हैं.
0: क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता जो ज्यादा नीचे खरीदता है, बल्कि वो है जो उपलब्ध चीजों का सही उपयोग करना जानता है.
1: और कुणाल, अब मुझे लगता है ना कि ये चीज हमें समझनी होगी, हमें हमारी जरूरत को समझना होगा कि किस चीज की हमें जरूरत है, वो सबसे मतलब सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरत की चीज है या नहीं है या फिर बेकार की है. और दूसरी सबसे बड़ी चीज, हमारे पास जितने भी संसाधन है उनकी हमें कद्र करनी चाहिए. अब देखो, पानी है हमारे पास, लिमिटेड है, तो अगर हम उसको ऐसे ही वेस्ट करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हमारा ही होगा, हाँ. है ना. ऐसे ही हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज हैं, हमारी लाइट है, ये भी हमारे पास कहीं ना कहीं हम अच्छे से अगर इसका यूज करें तो आने वाले लंबे समय तक हम इसका उपयोग कर पाएंगे. तो इसीलिए दोस्तों, आज से हम समझेंगे कि उपभोग नहीं, सही तरीके से और सदुपयोग, ये आदत हमें अपनानी है.
0: बिल्कुल, और निकिता एक होता है ना कि वांट वर्सेस नीड, मतलब एक हमारी इच्छाएं होती है, हमारी मन करता है कि मैं ये भी ले लूं, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, पर हम हमारी इच्छाओं पर फोकस न करके हम ये देखें कि मुझे जरूरत कितने की है. जैसे मुझे सिर्फ अभी 3 शर्ट्स चाहिए तो मैं सिर्फ 3 शर्ट्स ही लूं इस टाइप की. ऐसा नहीं कि मुझे ये भी अच्छी लग रही है,
1: ये भी अच्छी लग रही है
0: तो मैं ये भी कर लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं.
1: ये चीज गलत है.
0: ये उस टाइम पर होता है हमारा दिमाग ऐसा. हमारा
1: जब हम किसी शॉप पर जाते हैं ना तो हमारा जो मतलब माइंड कह लो, हमारा मन कह लो, वो एक चीज से कभी संतुष्ट नहीं होता.
0: वो मन कभी संतुष्ट होता ही नहीं है.
1: और मुझे लगता है ना कि अब हमें बेहतर भविष्य की शुरुआत के लिए समझदारी अपनानी ही होगी.
0: बिल्कुल,
1: और फिलहाल ना मुझे ये भी लग रहा है कि जो हमारी जिंदगी एक्सप्रेस की गाड़ी है ना, इसे हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहिए और इस सफर में एक खूबसूरत सा गाना और सुन लेना चाहिए.
0: बिल्कुल, तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत.

0: दोस्तों, हमारी जिंदगी एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है, वो है इतिहास जंक्शन।
1: दोस्तों, खिड़की से बाहर देखिए, रेत हवेलियां और इतिहास की झलक दिखाई दे रही है।
0: क्योंकि जिंदगी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ किले पर।

0: कीजिए रेगिस्तानी रेत के समंदर में एक लाल गुलाब। बड़ा ही आश्चर्यजनक होगा ना कि भला रेगिस्तान में गुलाब कैसे, क्योंकि इतिहास के पन्नों में कई किलो का जिक्र है। और आज हम आपको ले आए हैं राजस्थान की उस सुनहरी धरती पर, जहाँ एक ऐसा किला सीना ताने खड़ा है जिसे दुश्मन कभी फतह नहीं कर पाए।
1: बिल्कुल दोस्तों, राजा महाराजाओं द्वारा अक्सर किले पहाड़ियों पर ऊंचाइयों पर बनाए जाते थे, ताकि दुश्मन की सेना उनके किले तक आसानी से न पहुंच सके। जिस पर और जिस किले की हम बात कर रहे हैं, ये किसी पहाड़ी पे नहीं, ये एकदम समतल जमीन पर बना हुआ है। और इसकी खास बात यह है कि तब भी से कोई भी जीत नहीं पाया।
0: क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना जूनागढ़ के किले की, तो जूनागढ़ का किला बीकानेर में स्थित है और बीकानेर शहर इसी के चारों ओर बसा हुआ है। जूनागढ़ शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है पुराना महल। और हुआ यूं दोस्तों कि 20वीं शताब्दी में एक नया महल, लालगढ़ महल बनवाया गया और शाही परिवार उस नए महल में शिफ्ट हो गए। तो ये पुराना महल होने की वजह से इसका नाम चिंतामणि से बदलकर जूनागढ़ कर दिया गया।
1: बिल्कुल। और दोस्तों, इस महल का निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह जी द्वारा करवाया गया था। इसकी पूरी देखरेख और पर्यवेक्षण राजा राय सिंह जी के प्रधानमंत्री करण चंद जी द्वारा की गई। दोस्तों, राजा राय सिंह अकबर के करीबियों में से एक थे और राजा राय सिंह शासन प्रशासन के कार्यों से देश भर में अलग अलग जगहों पर जाते रहते थे। तो अलग अलग जगहों पर जाने की वजह से उन्होंने अलग अलग जगहों की वास्तुकला को भी देखा, उसका अच्छे से ऑब्जर्व किया, उससे उनका अच्छा ज्ञान हो गया और उस ज्ञान का उन्होंने इस किले में पूरी तरह से इस्तेमाल किया।
0: और इस किले में दुनिया भर के अलग अलग वास्तुकला का भव्य समायोजन देखने को मिलता है। ये किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से मिलकर बना है।

0: तो इसलिए ये रेत के समंदर में गुलाब जैसा दिखता है। तो अब समझ में आया ना दोस्तों कि जो रेगिस्तान में गुलाब की बात में कर रही थी वो क्या थी।
1: और इस किले का निर्माण पुराने पत्थर के बने किले की जगह पे हुआ है, जिसका राव बीका द्वारा, जो कि बीकानेर के संस्थापक थे, उन्होंने उसका निर्माण करवाया था।
0: और आगे चलकर बीकानेर के अलग अलग शासकों ने इसमें निर्माण करवाया, जिसमें राजा कर्ण सिंह जी ने कर्ण महल बनवाया, महाराजा अनूप सिंह जी ने जनाना और कर्ण महल में दीवाने आम जुड़वा कर इसे अनूप महल नाम दिया। महाराज सूरत सिंह जी ने कांच की कारीगरी करवाई जो कि बेल्जियम से मंगवाई गई थी।
1: यही महाराजा डूंगर सिंह जी की बात करें तो उन्होंने बादल महल का निर्माण करवाया था, जो पूरी तरह से नीले रंग का बना है और उसमें एक वाटर सिस्टम भी लगाया है, जिससे ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है और वो बादल जैसी एकदम फील आती है। और ये रेगिस्तान में जो भीषण गर्मी होती है ना, उससे बचने का एक तरह का तरीका मान लेते हैं।
0: और दोस्तों, इस किले की खूबसूरती को अगर हम शब्दों में बयां कर पाए तो ये तो कहीं ना कहीं नामुमकिन है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें बताई नहीं जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। तो इस किले को आप लोग अपने जीवन में एक ना एक बार जरूर देखें, इसका भ्रमण करें, क्योंकि इसी से हम अपनी विरासत, कला और संस्कृति को जान पाएंगे और उससे हमेशा जुड़े रह पाएंगे।
1: बिल्कुल निकिता। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारे सफर में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: दोस्तों, हमारे इस युवाणी के खास जिंदगी एक्सप्रेस की जो तीसरे स्टेशन की बात करें तो वो है नेचर हॉल,
1: जहाँ हमें मिलती है प्रकृति की सबसे मेहनती यात्री जो है मधुमक्खियाँ।
0: छोटी सी मधुमक्खी लेकिन खेती, फूलों और पर्यावरण के सफर की बहुत बड़ी साथी। और ये देखो ना, नन्ही सी है पर कितनी मेहनती है ये मधुमक्खियाँ, है ना
1: दोस्तों। ये छोटी सी मेहनती मधुमक्खियों का शहद जितना मीठा होता है, एक बार अगर इनका डंक लग जाए तो हम ये सब भूल जाते हैं।
0: लेकिन ये मधुमक्खियाँ हमारे लिए जो है पर्यावरण के और इस पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज है विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है।
0: और ये दिन जो है ना दोस्तों, ये आधुनिक मधुमक्खी पालन के अग्रणी एंटोन जंसा की जयंती का प्रतीक है।
1: दोस्तों, एंटोन जंसा स्लोवेनिया में मधुमक्खी पालकों के एक परिवार से हैं, जहां मधुमक्खी पालन एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है, जिसकी एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। एंटोन ने यूरोप के पहले मधुमक्खी पालन स्कूल में दाखिला लिया और मधुमक्खी पालक के रूप में पूर्णकालिक काम किया। उसकी पुस्तक डिस्कशन ऑन बी कीपिंग भी जर्मन में प्रकाशित हुई थी।
0: और इस बार का जो विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 हम मना रहे हैं, ये हमारा मधुमक्खियों पर परस्पर निर्भरता, स्थायी कृषि और परागणों के स्वास्थ्य पर जोर देता है। और इसीलिए इस बार की थीम भी यही है कि लोगों और धरती के लिए साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी जो हम सभी को सहारा दे।
1: बिल्कुल, साल 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा की थी कि 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रथम विश्व मधुमक्खी दिवस 2018 में मनाया गया था। दोस्तों, पर हम आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि मधुमक्खियों में ऐसा क्या है जो हम बाकी सभी कीटों को छोड़कर इन्हें इतना महत्व दे रहे हैं।
0: महत्व देना जरूरी है क्योंकि मधुमक्खियां सबसे महत्वपूर्ण परागणों में से एक है, जो खाद्य और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि और जैव विविधता सुनिश्चित करती है। मधुमक्खियां जलवायु परिवर्तन को कम करने और पर्यावरण के संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।
1: यही नहीं दोस्तों, दीर्घावधि में मधुमक्खियों का संरक्षण और मधुमक्खी पालन क्षेत्र गरीबी एवं भूख को कम करने में मदद कर सकता है, साथ ही एक स्वस्थ पर्यावरण व जैव विविधता सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।
0: और इसके अलावा सतत कृषि और ग्रामीण रोजगार सृजित करने की दृष्टि से भी मधुमक्खी पालन महत्वपूर्ण है। परागण द्वारा वे कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं और इस प्रकार खेतों में विविधता, बहुरूपता बनाए रखते हैं। और इसके अलावा वे लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं और किसानों की आय का महत्वपूर्ण स्रोत भी ये है।
1: और इसीलिए हमारी भारत सरकार भी इस पे काफी ध्यान दे रही है ना। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मीठी क्रांति की महत्वाकांक्षी पहल की है। मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद

0: ट्रेंड शुरू किया है।
1: और दोस्तों जो हमारे घर में चीनी है ना, एक तरीके से वो मीठा जहर है और उसे आप अपने शहद से बदल सकते हैं और अपने स्वास्थ्य और हमारे किसान दोनों को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारे जो किसान लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं उनकी आय के स्रोतों को बढ़ाने में मदद मिलेगी
0: और उनको एक तरह का प्रोत्साहन भी मिलेगा कि क्योंकि हम हमारे डिमांड बढ़ रही है यानी कि तो वो ज्यादा उसको प्रोड्यूस करेंगे।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो शहद उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये एक तरीके से एक चेन के रूप में काम करेगा। अगर हमसे शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ये सबको फायदा देगी।
0: बिल्कुल,
1: और हमारा जो नेचर है वो तो अच्छा होगा ही,
0: हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा, हमारे किसानों की भी आय बढ़ेगी और इससे हमारे देश को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा क्योंकि हमारे उत्पाद बाहर भी तो एक्सपोर्ट होते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो कहीं ना कहीं हमारे भारत को, हमारे देश को भी इससे फायदा होगा।
1: तो फायदे की बात तो है, लेकिन एक और फायदे की बात ये रहेगी कि अगर हम इस सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और बढ़ चले एक खूबसूरत

0: प्रोत्साहन भी मिलेगा कि क्योंकि हम हमारे डिमांड बढ़ रही है हनी की, तो वो ज्यादा उसको प्रोड्यूस करेंगे।
1: बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो शहद उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे और ये एक तरीके से एक चेन के रूप में काम करेगा। अगर हमसे शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ये सबको फायदा देगी।
0: बिल्कुल,
1: और हमारा जो नेचर है वो तो अच्छा होगा ही,
0: हमारा पर्यावरण भी अच्छा होगा, हमारे किसानों की भी आय बढ़ेगी और इससे हमारे देश को भी कहीं ना कहीं फायदा होगा क्योंकि हमारे उत्पाद बाहर भी तो एक्सपोर्ट होते हैं ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो कहीं ना कहीं हमारे भारत को, हमारे देश को भी इससे फायदा होगा।
1: तो फायदे की बात तो है, लेकिन एक और फायदे की बात ये रहेगी कि अगर हम इस सफर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं और बढ़ चले एक खूबसूरत से
0: गाने की ओर।

0: कुणाल, हमारा जो अगला स्टेशन होने वाला है वो कौन सा है?
1: हमारा अगला स्टेशन हमारा चौथा जंक्शन है जिसका नाम है कविता चौक।
0: जहाँ पे शब्दों की खुशबू कहीं ना कहीं हवाओं में घुली हुई है।
1: और यहाँ याद किए जा रहे हैं प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी। दोस्तों, जिन्होंने झंगूर की झनकार को और पल्लवों की कोमलता को, पहाड़ों की खामोशी और झरनों के संगीत को शब्दों में ढाला है, आज उसी प्रकृति के सुकुमार कवि को नमन करने का दिन है।
0: क्योंकि दोस्तों, आज हम मना रहे हैं भारत के महान कवियों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी की जन्म जयंती। उन्होंने अपनी कविताओं से हिंदी साहित्य में चार चांद लगा दिए थे।
1: दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 में कौसानी में हुआ। उनके पिता स्थानीय चाय के बागानों के मैनेजर थे और भूमिदारी भी थे, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत जी को कभी आर्थिक तौर पर कोई समस्या नहीं थी और इसी कारण से वे गांव में और प्रकृति की गोद में बड़े हुए। उनका गांव और प्रकृति के प्रति प्रेम हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है।
0: उन्होंने 1918 में बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं को पढ़ना शुरू किया और इनका पंत जी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा और 1926 में उन्होंने अपनी कविताओं का एक संग्रह पल्लव प्रकाशित किया।
1: उन्हें हिंदी साहित्य के सबसे बेहतरीन छायावादी कवियों में से एक माना जाता है। उनकी रचनाओं की भाषा हिंदी और संस्कृत भाषा की मिक्स थी। छायावादी कविताओं के अलावा उन्होंने प्रगतिवादी, समाजवादी, मानवतावादी और दार्शनिक कविताएं भी लिखी।
0: साथ ही श्री अरबिंदो जी का भी उन पर काफी प्रभाव था, जिसके बाद ही उन्होंने दार्शनिक रचनाएं लिखना शुरू किया।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने निकिता, उनकी इतनी कमाल की रचनाओं के लिए उन्हें 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1968 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वो पहले कवि थे। उन्हें यह पुरस्कार उनके संग्रह चिदंबर के लिए मिला था
0: और 1961 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि IIT रुड़की का जो कुल गीत है वो भी इन्हीं के द्वारा कंपोज किया हुआ है।
1: बिल्कुल दोस्तों, उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए हम उनकी एक छोटी सी कविता आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, जो कहीं ना कहीं हम सभी के बचपन को इतनी खूबसूरती से जो बयां करती है, कितनी खूबसूरती से उसमें हमारा बचपन संजो के दिखाया गया है और उनकी जो कह सकते हैं हम उनकी सोच, उनके विचार वो कितने अच्छे रहे थे, ये भी हम इसमें देख सकते हैं। कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे,
1: सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे,
0: रुपयों की कलदार मधुर फसलें खन की
1: और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा।
0: पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा,
1: बंधिया मिट्टी में न एक भी पैसा उगला,
0: सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए।
1: मैं हताश हो बाट जोता, जोता रहा दिनों तक,
0: बाल कल्पना के अल्पलर पांव डडे बिछा कर,
1: मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे,
0: ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था, क्योंकि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, छिपकर

0: पैसे बोए थे। आज जब कुणाल हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं ना, तो ये जो उनकी कविता संग्रह है ना, इन्हें खोलकर पढ़ना, समझना और फिर कहीं ना कहीं अपने जीवन से इन्हें जोड़कर देखना, एक बड़ा ही खूबसूरत सा ये एहसास है। जब इनकी कविताएं अपन अगर हम मिलकर समझने की कोशिश करें ना, तो काफ़ी गहरे गहरे से अर्थ हमें ऐसे समझ में आएंगे जो शायद हम साधारण भाषा में समझ भी ना पाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तुमने सही कहा निकिता। और मुझे इससे एक चीज़ ये याद आई कि जब हम हमारे स्कूल में हमारी हिंदी के किताबों में इनके चैप्टर्स हुआ करते थे, उस टाइम पर हम पढ़ते थे तो हमें इतना समझ
0: शायद
1: नहीं आता था।
0: हाँ, इतना समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज जब हम इन्हें पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कितनी गहराई से, कितनी खूबसूरती से जो इन्होंने शब्दों को अपनी कविताओं में उतारा है, वाकई काबिले तारीफ है।
1: बिल्कुल, इनका जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं हमें जो खूबसूरती है हिंदी साहित्य की वो अब समझ में आने लगी है।
0: तो क्यों ना कुणाल, आज हम इन्हें दिल से एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दें, नमन भी करें, और इनकी कविताओं के लिए इन्हें जितना सराहा जाए ना, उतना कम है।
1: तो निकिता, इसके लिए हम सुनते हैं एक प्यारा संगीत।
0: क्योंकि मुझे लगता है सफर में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और इनकी कविताओं में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का जो मैसेज है वो भी काफी खूबसूरती से दिया हुआ है।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों हमारी युवाणी स्पेशल जिंदगी एक्सप्रेस अब पहुंच चुकी है उस स्टेशन पे जहां पे हर दिन बदलती दुनिया की नई खबरें हमारा इंतजार कर रही है।
1: जी हाँ, करंट अफेयर्स जंक्शन, जहां खबरें सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि सफर की तरह महसूस होती है।
0: तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या कुछ खास है आज। सबसे पहले आपको बता दें, चीन के शंघाई में आयोजित आयरन मैन 70.3 किलोग्राम प्रतियोगिता सफलतापूर्वक पूरी करने वाले जयपुर के एथलीट आशीष बड़गोती बने हैं।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबद्ध संस्था DNDi द्वारा क्रीनग्रा यानी माइसेटोमा बीमारी की दवा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रायल जोधपुर में किया जाएगा।
0: और वहीं राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत राजस्थान स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंट जयपुर में स्थापित किया जाएगा।
1: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है।
0: और स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना की पहली कैट ए प्रशिक्षक बनी है।
1: RBI ने मई 2026 में बैंकों के लिए IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फंक्चुएशन रिजर्व को बनाए रखने का नियम खत्म कर दिया है।
0: और राजस्थान का पहला ड्यूअल सोर्स पावर सप्लाई वाला डाटा सेंटर सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थापित किया गया है।
1: हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है।
0: तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स।
1: चलिए दोस्तों हमारी एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, ये जो हमारी युववाणी की आज जिंदगी एक्सप्रेस का सफर हम तय कर रहे थे ना, ये अब कहीं ना कहीं अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने निकिता, पर आज के इस सफर में हमें बेहद बेहद मजा आया।
0: बिल्कुल, और ये जो स्टेशन है ना दोस्तों, ये हमारा लास्ट स्टेशन है, यानी कि हमारी मंजिल, खुशी, मुस्कान और अपने सपने। तो आपको करना क्या है, आपको पता है ना कि हमेशा अपनी मुस्कान का ध्यान रखना है, अपना और अपने दूसरों के साथ जितनी भी खुशियां हम खुद को दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं ना, ये हमेशा देने की कोशिश करनी है।
1: क्योंकि दोस्तों, जो खुशियाँ दे सकता है, जो खुश रह सकता है और खुशियाँ बांट सकता है, वो अपने आप में ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा विजेता है।
0: बिल्कुल, यानी कि सबसे बड़ा हीरो वो है। और आज का जो ये सफर हमने तय किया ना दोस्तों, ये जो हमारा सफर था पहली मंजिल से लेकर आखिरी मंजिल तक का, इसमें बहुत सारे पड़ाव देखे हमने, कुछ सीखा, कुछ जाना, बेहतरीन बातें भी की और कुछ अनुभव भी हमने जाने। तो मुझे लगता है ना कुणाल, ये जो आज का सफर था ना, ये हमारे सभी श्रोताओं को काफी पसंद आया होगा।
1: बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जिस तरह से हमने इस पूरे सफर को एंजॉय किया है, वैसे हमारे सभी श्रोताओं ने भी इस पूरे सफर को एंजॉय किया होगा।
0: तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो आज का सफर है आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ आज के इस सफर से आपके दोनों रेडियो दोस्त, मैं निकिता,
1: मैं कुणाल,
0: लेना चाहेंगे आपसे इजाजत।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। कुछ पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार

0: समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार

0: के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लीजिए फिल्मी संगीत का। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत गुरु रंधावा की आवाज में फिल्म नवाबजादे से, जिसे लिखा है गुरु रंधावा ने और संगीत दिया है गुरु रंधावा ने।

श्रुतो मिका सिंह की आवाज में जब वी मेट से ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कालमी ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, भी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म जब वी मेट से, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

0: मीट ब्रोस अनजान और कनिका कपूर की आवाजों में फिल्म रागिनी MS2 से ये गीत, जिसे लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है मीट ब्रोस अनजान ने।
1: I won't lie and tell you that I'll take it slow, but tonight no bites, 'cause the wife will know. Start it.

श्रोताओ आनंद लीजिए दिलेर मेहंदी और सुदेश भोसले की आवाजों में फिल्म मृत्युदाता से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

यो हनी सिंह की और सिमर कौर की आवाजों में फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी फिल्म से ये गीत, जिसे लिखा है हनी सिंह ने और संगीत दिया है यो हनी सिंह।

मिका सिंह और पंकज कपूर की आवाजों में फिल्म मौसम से गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और थोड़ी ही देर बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5,000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा है कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में रेलगाड़ियों में लगी आग की हालिया घटनाओं की जांच में कई मामलों में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता का पता चला है। सूत्रों ने बताया कि रेलवे ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और रेलवे सुरक्षा बल मामले की गहन जांच कर रहा है। इनमें राजस्थान की भी 2 घटनाएं शामिल हैं। पाली के अमरपुरा स्टेशन के पास एक घटना में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक कोच के अंदर कपड़े में आग लगाने की कोशिश की, जिससे आग लग गई। इसी तरह कोटा में राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग की शुरुआत भी बाथरूम क्षेत्र से शुरू हुई बताई जा रही है। भारतीय रेलवे ने आग लगने की हालिया घटनाओं के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। रेलवे ने कहा है कि अमरपुरा जैसी घटनाओं में रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को टालने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल की कड़ी में आज बांसवाड़ा के चुड़ादा गांव में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। वहीं कल सुबह गांव का पैदल भ्रमण कर लोगों से बातचीत करेंगे। गौरतलब है कि ग्राम विकास चौपालों के माध्यम से मुख्यमंत्री ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रहे हैं, साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कल डूंगरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे 84 क्षेत्र के धम्बोला गांव में ग्राम विकास चौपाल करेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज प्रमुख तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक मनोज गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद प्रदेश देश में पेट्रोल और डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति बनाए हुए हैं। सभी आउटलेट पर ईंधन वितरण सुचारू रूप से चल रहा है। श्री गुप्ता ने नागरिकों से घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण नहीं करने का अनुरोध किया है। साथ ही ईंधन उपलब्धता से संबंधित प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी के

ने केवल तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने को कहा है। बैठक में IOCL, BPCL, HPCL, GOBP और नायरा सहित प्रमुख तेल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे। इस बीच राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने आज प्रेस वार्ता में कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे यहां हालात बेहतर और नियंत्रण में है। श्री राठौर ने आमजन से अपील की कि वे पेट्रोल और

0: होना चाहिए कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
1: प्रदेश के आंगनबाड़ियों में अब बच्चों को उपमा की जगह पौष्टिक न्यूट्री पुलाव परोसा जाएगा। उपमुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने आज शासन सचिवालय में इस नए न्यूट्री पुलाव के सैंपल का स्वाद चखा। उन्होंने कहा कि ये पुलाव बच्चों के स्वाद के ज्यादा अनुकूल है। उपमुख्यमंत्री ने विभाग को इसे जल्द आंगनबाड़ियों में उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने नाश्ते में दिए जा रहे मुरमुरे के स्थान पर भी समान दरों में कोई अन्य बेहतर और पौष्टिक विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत विभिन्न नगरीय निकायों में करीब 5000 नए आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए हरेक लाभार्थी को स्वयं का पक्का आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए गठित राज्य स्तरीय सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इसके तहत कुल 125 करोड़ 60 लाख की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इन आवासों के लिए अंतिम मंजूरी केंद्र सरकार की 26 मई को होने वाली सीएसएमसी बैठक में मिलेगी। प्रदेश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की तैयारियों के तहत विभिन्न शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर नगर निगम द्वारा मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग की जा रही है। इसके तहत राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित कलाकृतियों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है, जिससे पुराने कचरा पॉइंट अब आकर्षक सेल्फी पॉइंट में बदल गए हैं। पाली नगर निगम द्वारा शहर को सुंदर बनाने के लिए सिटीजन फीडबैक अभियान चलाया जा रहा है। निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने नागरिकों से QR कोड स्कैन कर फीडबैक देने और शहर को बेहतर रैंक दिलाने में सहयोग की अपील की है। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में भी उपलब्ध होगी। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने आज जयपुर में आयोजित सारथी संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली, मुंबई और लखनऊ के बाद अब जयपुर में भी ये अनूठी सेवा शुरू होने जा रही है। ये आमजन को किफायती और सुरक्षित सफर का विकल्प देगी। श्री दत्त ने कहा कि इस सहकारी सेवा में कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं होगी, बल्कि टैक्सी चलाने वाले चालक यानी सारथी ही इसके वास्तविक मालिक होंगे। इससे चालकों को निजी कंपनियों की मनमानी और हिडन चार्जेस से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद टैक्सी चालकों ने भी इस स्वदेशी सहकारी पहल की सराहना की। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय ने कोटा मंडल के 3 रेलवे स्टेशनों को जंक्शन स्टेशन घोषित किया है। रेल प्रशासन की इस घोषणा के बाद अब गंगापुर सिटी, रामगंज मंडी और गुडला स्टेशनों को जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। नई रेल लाइनों और कॉर्ड तथा बाईपास के लाइन से शुरू होने से इन स्टेशनों का दर्जा बढ़ाया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन स्टेशनों के वर्तमान अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल कोड पहले की तरह यथावत रहेंगे, केवल उनके नाम के आगे जंक्शन शब्द जोड़ा गया है। राज्य में अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही हैं, वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों पर छाया के प्रबंध किए गए हैं और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लोगों के साथ साथ पशु और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह पीने

0: के पानी की व्यवस्था की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटों में 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म दिन रहा। वहीं बीकानेर में सबसे गर्म रात दर्ज की गई, जहां पारा 31.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। अलवर, कोटा, चित्तौड़गढ़, फलौदी, बीकानेर और चूरू में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। वहीं राजधानी जयपुर में तापमान 42.5 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री, वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत राज्य में 5000 से अधिक नए आवास बनाए जाएंगे। सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा अगले महीने से जयपुर में शुरू होगी और राज्य के अधिकांश भाग भीषण गर्मी और लू की चपेट में, अगले 3 दिन लू से राहत के आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चूरू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख श्रवण कुमार शर्मा ने तैयार किया है। चूरू जिले के तालछापर अभयारण्य और उसके आसपास के करीब 22 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। ये ESZ चाडवास, देवानी, रामपुर, सूरवास और छापर कस्बे में स्थित है। अभयारण्य में काले हिरणों और प्रवासी पक्षियों के कुदरती रहवास को खनन और प्रदूषण से बचाने के लिए ये अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार क्षेत्र में व्यावसायिक खनन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और भारी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध रहेगा। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। श्री सुराणा ने बताया कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के अंदर तक किसी नए होटल रिसोर्ट बनाने और व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने सभी विभागों से आपसी तालमेल के साथ काम करते हुए अभयारण्य क्षेत्र की जैव विविधता और कुदरती वातावरण के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिले में इन दिनों मकान सूचीकरण और गणना का काम चल रहा है। जनगणना 2027 के तहत जिले के 21 क्षेत्रों में प्रगणक घर घर पहुंचकर मकानों से संबंधित जरूरी जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। जनगणना के दौरान प्रगणकों को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जिला कलेक्टर ने भी नागरिकों से जनगणना कर्मियों को आवश्यक सहयोग देने और मांगी गई जानकारी सटीक तरीके से उपलब्ध कराने की अपील की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया है। जिन लोगों के पास खुद का आशियाना नहीं था, उन्हें इस योजना से काफी मदद मिली है। गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए विभिन्न किस्तों में 2.5 लाख रुपए तक की, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उनके बैंक खातों में दी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लक्ष्य 2028-2029 तक

0: बढ़ाया गया है। जिले में सुकन्या योजना बालिकाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इसके तहत नवजात से लेकर 10 साल तक की बालिकाओं का बैंक खाता खोला जाता है। इसमें कम से कम 250 रूपए और अधिकतम 1.5 लाख रूपए सालाना तक का निवेश किया जा सकता है, जो पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी के समय मैच्योरिटी राशि ली जा सकती है। जिले में 853 से अधिक बालिकाओं के खाते पोस्ट ऑफिस में खोले जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत जिले में 21 मई को आवेदन शिविर लगाया जाएगा। रतन नगर नगरपालिका सभागार में ये शिविर लगेगा। राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के तहत पात्र आवेदकों को 3,000 रूपए महीने का लाभ मिल सकता है। वित्त विभाग ने श्रमिकों, रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों और लोक कलाकारों को संबल प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की थी। चूरू में पिछले दिनों प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि शहर के अलग अलग व्यवसायिक क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर करीब 600 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग्स जब्त किए गए। उन्होंने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं और आम नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग पूरी तरह बंद करने की अपील की। इसके स्थान पर कपड़े, जूट और पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। चूरू में पिछले दिनों इनोवेटिव बूट कैंप आयोजित किया गया। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के आई स्टार्ट इंक्यूबेशन सेंटर में इस आयोजन में जिले भर के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विभिन्न सत्रों में विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का दक्षता कोर्स करवाया गया। भीषण गर्मी और लू के दौर से जिले भर में आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कई स्थानों पर पानी के परंपरागत स्रोत टाके, जोहड़ और तालाब सूखने से पानी की समस्या हो रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ ही चूरू जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला न चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज की नी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य में 5,000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश री पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर में आई शुरू भेला। और प्रदेश रा घनखर हलका माए लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन री शंका। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट जनगणना 2027 रा तहत जातिगत गणना करावन रा केंद्र सरकार रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कर दीनी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत री सदारत वाली पीठ कहो के पिछाड़ी तबकारी जनता रा भला सारू जतन करण बाबत सरकार ने वारी तादाद री जानकारी भेवनो जरूरी है। पीठ कहो के ओ मुद्दो सरकार रो नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आवे है। इन विच प्रदेश में जनगणना 2027 रा तहत मकाना री लिस्ट बनावन रो काम चाल रियो है। पाली जिला रा दूर दराज हलका और ढाणिया में प्रगणक घर घर जार HLO ऐप रे जरिए जानकारी भेड़ी कर रिया है। इन डिजिटल सर्वे रा तहत हर मकान री असली लोकेशन दर्ज करी जा रही है और जनताओं 33 सवालों रा जवाब लिया जा रहा है। प्रशासन जनताओं प्रगणका ने सही और पूरी जानकारी मुहैया करावन री अरज कीनी है। देश रा न्यारा न्यारा हलका माए लाडला दिना रेलगाड़िया माए लाई लागण रा वाकया माए सामाजिक तत्वा रा शामिल भेवन री ठा पड़ी है। आमाए राजस्थान री 2 घटनावा शामिल है। पाली रा अमरपुरा स्टेशन के नवी एक घटना माए एक अनजान जना रे एक डिब्बा माए कपड़ो बाड़बारी कोशिश करण रिठा पड़ी है, जिन कारण वहां डिब्बा माए लाई लागी ही। कोटा माए राजधानी एक्सप्रेस माए लागी लाई रेल रा घुसलखाना उसरू भेवन री शंका है। रेलवे मुसाफिरा ने सावचेत रहता थका शंका लायक हरकत री जानकारी

0: एलवीरा हेल्पलाइन नंबर 139 माथे संपर्क करण री राय दिनी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल रातेत आज बांसवाड़ा रा चुड़ादा गांव आए रात्रि चौपाल लगार गांव वाला सागे बातचीत कर रहा है। मारो काल समारे गांव रो पैदल दौरों कर लोगों बातचीत करण रो कार्यक्रम है। ध्यान जोग है कि ग्राम विकास चौपाल रे जरिए मुख्यमंत्री गांव वाला सागे सीधी बातचीत कर सरकार कानियों जनता रा भला सारू चलाई जा रही योजनावा रो फायदो मिलन रे बारा माए जानकारी हासिल कर रहा है। वारो काल डूंगरपुर जिला रा 84 हल्का रा धम्बोला गांव माए ग्राम विकास चौपाल लगावन रो कार्यक्रम है। पेट्रोलियम कंपनियां रे मुजब प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस रो जरूरी स्टॉक मौजूद है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज तेल कंपनियां रे नुमाइंदा सागे पेट्रोलियम उत्पादा और एलपीजी री उपलब्धता रे बारे में मीटिंग कीनी। कंपनियां रा राज्य स्तर रा समन्वयक मनोज गुप्ता बतायो कि सरकारी तेल कंपनियां प्रदेश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस री लगातार पूर्ति कर रही है। श्री गुप्ता जनताओं घबराहट माए गैर जरूरी ईंधन भेड़ो नी करण री अरज की नी। इन बीच प्रदेश में राज्यसभा सदस्य और भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो है कि दूजा देशों री तुलना माए भारत माए हालात बेहतर और काबू माए है। वह जनताओं जरूरत रे मुजब तेल री खरीदी करण री अरज की नी।
1: कोई स्टॉक खत्म नहीं है, बराबर मिल रहा है, वितरण व्यवस्था भी बराबर है, पेट्रोल पंप्स पर भी उपलब्ध है। फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए और आपके माध्यम से मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में संयमित तरीका अपनाएं, व्यवस्थित रूप से उपयोग में लें, आवश्यक काम सभी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जरूरी है वो सब काम करें, लेकिन व्यर्थ एक्सपेंसेस से बचें, फालतू अपव्यय से बचें, इसका जरूर ध्यान रखने की जरूरत।
0: प्रदेश रा आंगनबाड़ी केंद्र माए अब बच्चा ने उपमारी ठोड़ पौष्टिक न्यूट्री पुलाव खिलायो चावेला। उप मुख्यमंत्री और महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी आज जयपुर माए नुआ न्यूट्री पुलाव रो नमूनो चाख्यो। वे कहो कि प्रदेश रा बच्चा सारू ओ पुलाव स्वाद रे मुजब है। उप मुख्यमंत्री इनना बेगोई आंगनबाड़िया माए बच्चा ने दिया जावन वाला भोजन माए शामिल करण बाबत कहो। दिया कुमारी बच्चा ने नाश्ता माई मुरमुरा रिठौड़ी समान दर वाला दूजा बेहतर और पौष्टिक आहार रो विकल्प तैयार करन रा हुकम ही दीना। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रातेत राज्य माए करीब 5,000 नुआ मकान बनाया जावेला। इन रातेत हर पात्र जना ने खुद रो पक्को मकान बनावन सारू केंद्र सरकार री ओर 1.5 लाख और राज्य सरकार री ओर 1 लाख रुपया री सब्सिडी दी जावे है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 सारू बनाई जी राज्य स्तर री सैंक्शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी री मीटिंग माए अहलकारों जानकारी लीनी। ई योजना रा तहत 125,60,00,000 रुपया री सब्सिडी दी जावेला। प्रदेश माए स्वच्छ सर्वेक्षण रा तहत न्यारी न्यारी ठोड़ा साफ सफाई रा खास अभियान चलाया जा रहा है। जोधपुर माए नगर निगम री ओर खास गेला और जनता रे आवन जावन री ठोड़ा भीता माथे राजस्थानी संस्कृति और पर्यावरण ने बचावन रा संदेश जुड़ी चित्रकारी करी जा रही है। पाली माए शहर ने रूपाड़ो बनावन सारू नगर निगम री ओर सिटीजन फीडबैक अभियान चलायो जा रियो है। निगम रा कमिश्नर नवीन भारद्वाज जनताओं QR कोड स्कैन कर फीडबैक देवन री अपील कीनी है। जयपुर माए सहकारी मॉडल माथे आधारित भारत टैक्सी सेवारी शुरुआत आवता महीना रा पहला सप्ताह माए करण रो प्रस्ताव है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक आज जयपुर रा अपेक्स बैंक माए राखी जिया सारथी संवाद कार्यक्रम माए आ जानकारी दीनी। दिल्ली मुंबई और लखनऊ पाछे अब जयपुर माई जनता ने किफायती और सुरक्षित सफर रो सुबितो मुहैया करावन सारू आ सेवा शुरू करी जावेला। श्री दक कहो के ई सेवा माए कोई बाहरी कंपनी मालिक नहीं वेला जिन्हों ड्राइवरा ने गैर सरकारी कंपनियां रे मनमानियों छुट्टी।

0: मिलेला। पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल रा गंगापुर सिटी रामगंज मंडी और गुड़ला टेसना रे जंक्शन भेवन रॉयलांड की नो है। रेलवे रा अहलकारा ने मुजब अब आठ टेसना रा नाम सागे जंक्शन जोड़ियो चावेला। इन सारू जरूरी बदलाव रा हुकम जारी कर दिया चिया है। अरब मौसम प्रदेश माए पड़ रही जबरदस्त गर्मी बीच घनखट होना दिन रे बगत पारो 42-46 डिग्री सेल्सियस बीच जदके रात री बगत 26-31 डिग्री सेल्सियस बीच दर्ज करियो चाटियो है। जनता सागे जनावरा और परिंदा नई गर्मियों बचावन सारू न्यारी न्यारी ठोणा पीवन रा पानी री व्यवस्था करी ची है। मौसम विभाग आवता दिना कई ठोणा लू बाजन सारू चेतायो है। ए विच लाडला 24 घंटा माए श्री गंगानगर 46.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सागे राज्य माए सबू गर्म ठोर रहो। बीकानेर माए रात्रि बगत सबू बत्तो 31.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करी चियो। अलवर कोटा चित्तौड़गढ़ फलौदी बीकानेर और चूरू माए बत्तो बत्तो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। राजधानी जयपुर माए 42.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नापी चियो। ए बीच गर्मियों बचाव सारू प्रशासन री ओर न्यारी न्यारी ठोणा छाया रा प्रबंध करी चिया है और सड़का माथे पानी रो छिड़काव करियो चाटियो है। और ब्यूरो माणा खबर नवीस।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अस्पताल में लू रा मरीजा रा इलाज जुड़िया सगला जरूरी इंतजाम करण रा हुक्म दीना है। भरतपुर जिला माए सेवर रा सरसों अनुसंधान संस्थान री ओर मेरा गांव मेरा गौरव अभियान रा तहत रणधीरपुर गांव माए किसान संगोष्ठी राखी ची। इनमाए कृषि वैज्ञानिक किसाना ने खेती बाड़ी रा बेहतर तरीका, प्राकृतिक खेती और मिट्टी रो स्वास्थ्य बेहतर बनावन रे बारा माए जानकारी दीनी। खेती बाड़ी रा जानकार किसाना ने मिट्टी री ताकत बचार राखन सारू जैविक खाद, गोबर री खाद और ढेंचा सरीखी हरी खाद काम लेवन बाबत कहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। नंबर ओ जू सुन ले राव सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। संस्कृति मंत्रालय वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता सारू प्रविष्टियां जमा करावन री आखिरी तारीख 31 मई ताई बधा दीनी है। आहोड़ फिल्मा बनावन वाला रचनाकारा और जनता ने समकालीन प्रारूपां रे जरिए वंदे मातरम री भावना ने नुआ सिराऊं पेश करन री प्रेरणा देवे है। होड़ रील्स एआई आधारित फिल्मा और नानी फिल्मा री श्रेणिया माए फैला। हनुमानगढ़ जिला माए तलवाड़ा कने भूरानपुरा गांव माए स्वास्थ्य विभाग नकली दूध बनावन रो कारखानो पकड़ियो है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा बतायो के मौकाओं मोटी तादाद माए नकली दूध हर अमानक सामग्री नष्ट कराई ची। आखिर माए खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। सुप्रीम कोर्ट जाति आधारित जनगणना रा केंद्र रा फैसला ने चुनौती देवन वाली अर्जी खारिज कीनी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 रा तहत राज्य माए 5000 बत्ता नुआ मकान बनाया जावेला। सहकारी मॉडल माथे आधारित देश की पहली भारत टैक्सी सेवा आवता महीना जयपुर माए शुरू फैला। और प्रदेश रा घनखर हलका माए लू रा हालात, आवता 3 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहवन रा आसार। इस आगे प्रा

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं और अब समय है हमारे किसान भाइयों के खास कार्यक्रम चौपाल का। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

0: गांव गांव और गलियां गलियां में घूम रहे गोपाल, सुन लो बहन भाइयों आगी जी चौपाल। अजी घर में छालर बच गया जी और आंगन में तरपाल, एरी बची बड़ाओ ना आवाज रेडिया की आग्यो छ कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम को आनंद ले बड़ा संदा बण माया काना श्यामा बना के अडीसु घणी घणी राम राम। बण माया उंदाड़ो जोरा को पड़ रो छ, ताती ताती बाल चाल रही छ, तो स्वास्थ्य को जरा ध्यान रखाणो और ध्यान तो मैं आपको भी रखाना चाह जदि तो आज बुधवार का दिन लेकर आवा छ सजीव फोन इन कार्यक्रम, ताकि विभिन्न विषयों पर अगर आपको सवाल हो तो आप सीधा विशेषज्ञ से पूछ सको। अब आज भी बुधवार छ, तो आज कार्यक्रम जो सजीव फोन इन लेकर का आया था उको विषय छ अपना किसान भाइयों के लेखक कृषि विभाग की अडीसु कसी कसी योजनावा चल रही छ, और ये योजनावा जब विशेषज्ञ बतावे छ तो फिर सही जानकारी मिले छ। तो आज अपना स्टूडियो में आमंत्रित रिया छ विशेषज्ञ श्री अतीश कुमार शर्मा जी, जो छ संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कोटा में। तो स्वागत कराए आपको श्री अतीश कुमार शर्मा जी, आपको स्टूडियो में घणो घणो स्वागत। राम राम।
1: राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम।
0: शर्मा जी, जब बात कृषि विभाग की योजना वहां की आओ जब, तो सबसे पहले प्रश्न अपना मन माया का मन में सहज उठा जाए, कुछ की तो जानकारी माने हो जाओ जी जी। लेकिन कुछ की न हो पाओ, तो कसी कसी योजना अभार वर्तमान में कृषि विभाग के अडीसू चल रही है।
1: ये बड़े सौभाग्य का मौका है कि मुझे जो है कृषि विभाग की जो योजनाएं संचालित की जा रही है किसानों के हित में, उसके संदर्भ में मैं किसान भाइयों को मोटी मोटी जो जानकारियां हैं जो किसान के काम आने वाली है उनके संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि जहां तक खेती की बात आती है तो खेती में पानी का बहुत बड़ा महत्व है।
0: बिल्कुल।
1: तो राज्य सरकार के द्वारा, जैसा कि अपन मानते हैं कि भाई हमारे पास में जो वर्षा जल है और हमारे पास जो समुद्रों में जल है वो लगभग यूं माने के करीब 96% पानी तो हमारा खारा है।
0: बिल्कुल।
1: और 3% पानी हमारा ग्लेशियर में है और हमारे पास 1% पानी बचा जिसको हम हमारी फसलों में भी काम लेते हैं, उद्योगों में भी काम लेते हैं और दूसरे कामों में भी लेते हैं। तो पानी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास इनपुट है, आदान है। तो हम पानी को संरक्षण करने के लिए जो राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना है खेत की तलाई का।
0: अच्छा।
1: इसमें किसान भाई अपने किसी खेत के कोने में जहां पानी की आवक होती है उस जगह अगर 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा यदि वो खड्डा किसान भाई बनाएंगे तो इसमें सामान्य श्रेणी के किसान भाइयों को 63,500 रुपए का जो है उसको अनुदान मिल जाएगा। यदि लघु सीमांत श्रेणी का किसान भाई है तो उनको जो है 73,500 रुपए का छूट उनको मिलेगा। यदि अगर कोई प्लास्टिक लाइनिंग अगर उसमें लगाना चाहेगा किसान भाई तो उसको जो है 1,20,000 रुपए का जनरल कैटेगरी के लोगों को छूट मिलेगी और 1,35,000 रुपए की छूट एससी एसटी लघु सीमांत किसानों को मिलेगी। एक चीज और है, जहां जिन किसान भाइयों को एफआरए का पट्टा अगर राज्य सरकार के द्वारा उनको दिया हुआ है फॉरेस्ट अधिनियम के तहत जो है तो उनको 90% तक का भी इसमें छूट का प्रावधान है।
0: अच्छा।
1: 10% ही पैसा किसान भाइयों को लगेगा, तो ऐसे किसान भाई इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ में दूसरी महत्वपूर्ण योजना है सिंचाई पाइपलाइन की। सिंचाई पाइपलाइन जल स्रोत से पानी को खेत तक ले जाने के लिए एक अच्छी सुविधा है और इस सुविधा में 25-30% हमारे पानी की सीधी सीधी बचत हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो भी किसान भाई यदि इन योजनाओं का लाभ लेना चाहे, सिंचाई पाइपलाइन का है तो इसमें दो तरह के मेल पाइप जो यूज किए जाते हैं, एक तो एसडीपी पाइप होता है, इस पर जो है एक किसान भाई को जो 300 मीटर है अधिकतम 15,000 रुपए की छूट किसान भाइयों को दी जाती है, और लघु सीमांत श्रेणी का किसान है तो उसको

0: 18,000 रुपए की छूट दी जाएगी। यहाँ वही बात लागू होती है कि एफआरए का पट्टा है तो उसमें भी उसको छूट उसी अनुपात में दी जाएगी। दूसरा पाइप होता है हमारा पीवीसी का।
1: अच्छा,
0: पीवीसी पाइप एचडीपी पाइप जमीन के ऊपर रहता है और पीवीसी पाइप जमीन के अंदर गाड़ा जाता है इसको, तो इस पाइप को भी किसान भाई यूज लेते हैं, तो छूट वही है अधिकतम 15,000 या 18,000 रुपए तक की, 35 रुपए पर मीटर की इस पे छूट किसान भाइयों को दी जाती है, तो इसमें लंबाई उसकी बढ़ जाती है। एक रोलिंग पाइप आता है।
1: अच्छा,
0: लीफलेट रोलिंग पाइप आता है, तो उस पर भी 25 रुपए पर मीटर की छूट किसान भाइयों को दी जाती है। छूट की सीमा वही है 15,000 या और अधिकतम 18,000 रुपए लघु सीमांत एससी एसटी श्रेणी के किसानों को दी जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं आजकल डीबीटी फॉर्म में है, सीधा पैसा किसान भाइयों के खाते में जाता है और उनको आवेदन अपना ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन करने पर इन योजनाओं का लाभ मिल जाता है। अब कौन कौन से आवेदन हैं, जो दस्तावेज हैं, जो किसान भाइयों को ई मित्रा पे लेके जाने हैं?
1: बिल्कुल श्री अतीश कुमार जी, अपन आप बात करेंगे आगे। पहले बड़ मैं आपको तय बता दूं कि सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहे जो और आप स्टूडियो में सीधा अतीश कुमार शर्मा जी से प्रश्न कर सको जो कृषि विभाग की योजनाओं का विषय में, और फोन नंबर चाह आप 0744-294-1142। एक बात और याद रखना, जब आप फोन करो तो या तो रेडियो से दूर हो जाओ या रेडियो ने बंद कर दो ताकि आपको आपको जो प्रश्न है वो मां के लिए साफ सुनाई दे। बिल्कुल शर्मा साहब, आप
0: जी आवेदन की बात कर रहा था मैं कि किसान भाई
1: एक फोन लेना
0: जी।
1: हेलो
2: हेलो,
1: राम राम साहब, राम राम, नाम बताओ।
2: मैं बाबूलाल गुजर बोल रही हूँ मैडम, चंद्रपुर।
1: बिल्कुल, काई प्रश्न चार्ज
2: मारो प्रश्न ये जो मैडम जी हां बार तारबंदी को प्रोग्राम तारबंदी करा तो छूट मिलेगा ना मतलब मैडम
0: जी जी। बहुत अच्छी बात की आपने, तारबंदी राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो जंगली या आवारा जानवर से उनकी फसलों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने प्रावधान कर रखा है कि कोई भी किसान भाई चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो एससी एसटी हो कोई भी किसान अपना आवेदन कर सकता है ई मित्रा के माध्यम से। इसमें दस्तावेज जमीन की नकल है आपकी, जन आधार कार्ड है और आपका जो जमीन की नकल के साथ में आपका अप्लाई करना है आपको। और इसमें मुख्य रूप से एक बात और ध्यान रखनी है कि जिससे आपको तारबंदी करवानी है उस योजना के तहत 400 मीटर तक का एक किसान भाई को 100 रुपए पर मीटर या अधिकतम 40,000 रुपए तक का उसको अनुदान देने का प्रावधान है।
2: सर, अगर जो मैं चार भाई था
0: जी,
2: चार भाई का आदि की नकल लागेगी हमारी
0: नहीं लागेगी, आपके खुद की जमीन जो आपके हिस्से में आ रही है आप उसके हकदार हैं, आप अपने हिस्से में तारबंदी करा सकते हो, सामूहिक रूप से भी करा सकते हो चारों भाई, उसमें भी छूट का प्रावधान है। और यदि आप सिंगल रूप से भी कराना चाहते हो, एक किसान भाई के पास 0.3 हेक्टर जमीन अगर है तो वो किसान भाई अपने खेत की तारबंदी कर सकता है। तारबंदी में आपको बता दें जी 0.3 हेक्टर लगभग 2 बीघा के आसपास, 2-2.5 बीघा
1: अपनी तो कम से कम होनी चाहिए।
0: हाँ, इतनी जमीन किसान के पास होगी तभी वो तारबंदी करवाएगा।
2: सर 3 बीघा से 3 बीघा
0: 3 बीघा हो जाएगा, आप करा सकते हो, उसके लिए पात्र हो आप। अपना आवेदन जो है जैसी पोर्टल खुलने वाला है, अभी चालू हो गया है, सरकार की योजना है, आप आवेदन कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया दस्तावेज की आपकी जमीन की जो नकल है जमाबंदी वो 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं हो, आपकी बैंक की पासबुक और जन आधार कार्ड से आपका आवेदन ई मित्रा के माध्यम से हो जाएगा। मैं बात बता रहा था आपको कि एक किसान को जो है 400 मीटर तक छूट देने का प्रावधान है। खंबे की स्थिति, आप खंबे इसमें जो बात चल रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि खंबे आप इसमें लोहे के लगा सकते हो, सीमेंट के लगा सकते हो।
1: अच्छा।
0: और पत्थर के भी लगा सकते हो, जाली भी लगा सकते हो, तार भी लगा सकते हो। तार लगा रहे हैं आप तो 5 तार आपको समानांतर लगाने पड़ेंगे और 2 क्रॉस लगाने पड़ेंगे ताकि उसमें मजबूती रहे, बाकी 30-30 फीट पे आप जो इसको अपने खेत पर तारबंदी का काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हो गया ना आपके प्रश्न को जवाब?
2: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो कितनी अच्छी आपने जो है सबसे बड़ी समस्या है वो जंगली जानवर
0: जी जी,
1: उसे मुक्ति मिल जाओगी
0: बहुत ही। ये इस योजना की तरफ सरकार का काफी रुझान भी है और रुचि भी बढ़ रही है। अभी हम लोगों ने कोटा जिले में अगर बात करें तो 2.5 लाख मीटर
1: अच्छा
0: हम लोगों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान किसान भाइयों को टीबीटी किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो महत्वपूर्ण योजना है, किसान भाइयों की रुचि भी है इसमें।
1: हेलो हेलो, राम राम साहब,
2: राम राम साहब,
1: नाम बताओ।
2: जितेंद्र बोल रहे बाजर से।
1: बिल्कुल जितेंद्र जी, का प्रश्न
2: है? सर से पूछ रहे साहब, हमारे

0: सर ने बताया कि भाई 2.5 बीघा में तारबंदी करवा सकते हैं
1: जी, 0.3 हेक्टर, ठीक है।
2: आगे पूछो
0: सर, ये ग्राम सेवक जी से बात करी ना,
1: हाँ?
0: तारबंदी का बराबर,
1: हाँ?
0: तो वहां सर माँ से बोले कम से कम 9 बीघा जमीन वो बचाएगी।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें एक चीज और है, अगर मान लो आपके पास जमीन कम है ना, तो आप 3 आदमियों का न्यूनतम समूह बनाएंगे तो आपको और ज्यादा छूट मिलेगी।
2: बिल्कुल
1: 60% छूट उसमें मिलेगी आपको। क्या अगर आप 3 से 5 आदमियों का, 10 आदमियों तक का, जो भी आपके किसान है आपस में मिलकर के एक ज्वाइंट एप्लीकेशन ई मित्रा के माध्यम से कराएंगे तो आप पात्र हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से 0.3 हेक्टर जमीन आपके पास होनी चाहिए।
0: सर पास में दूसरा किसान न करावो चाहो तो फिर?
1: तो दूसरा न कराना चाहे तो आप आपके खेत में करा लो।
0: सर तो मना कर रहे
1: हैं। नहीं ये पहला था नियम, अब आप तो जमीन को आकार घटा दियो सरकार ने जो है, तो था जो है पात्र हो आप करी सको।
0: सर हमारी बात सुनो, अगर वो सर अगर मासूम मना करा तो फिर एक लेकर फिर कहीं करा?
1: आप कौन से ब्लॉक में रहते हो, कौन सी तहसील है आपकी?
0: तालेड़ा
1: है ना, तो बूंदी का कृषि विभाग का ऑफिस है ना, बूंदी में आप जार ये बात कह दो कि भाई ये कृषि पर्यवेक्षक जी हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहे, अदरवाइज तो आप अपना आवेदन कर दो, अपने आप ऑनलाइन आवेदन पहुंच जाएगा और उसके आधार पे आपकी प्रशासनिक स्वीकृति। इसमें तो ये है कि पहले आओ पहले पाओ, आवेदन अच्छा। कराओगे नंबर जिसका पहले है वो पहले आएगा और बाद वाले का बाद में आएगा,
2: मतलब जल्दी से जल्दी आवेदन करा
1: है। बिल्कुल
2: बिल्कुल हो गया, आपके प्रश्न को समाधान हो ना
0: जी।
2: तो डॉक्टर साहब जैसे मैंने एक प्रश्न करो कि भाई अगर कम जमीन छे तो 2-4 आदमी अपना आसपास का मिलकर भी वो भी करवा सके,
1: हाँ,
2: तो उसको उकी भी प्रक्रिया यही रहेगी या फिर उकी प्रक्रिया में कोई फिर कोई फिर बदल हो जाओगे?
1: कोई प्रक्रिया अलग नहीं है, सेम ही प्रक्रिया है, जैसे व्यक्तिगत रूप से कोई आवेदन कर रहा है वैसे सामूहिक रूप से भी आवेदन कर सकता है, उसमें सभी की नकल जमाबंदी की नकल लगेगी, बैंक का आधार कार्ड वो लगेगा जो डिटेल पूरा, और आधार कार्ड से उसकी एप्लीकेशन जो है जन आधार से ऑनलाइन हो जाएगी।
2: हेलो,
3: राम राम।
2: राम राम, कौन बोल रहे हो?
3: वो मंगार बोल रहे, महावीर।
2: महावीर जी बिल्कुल बिल्कुल, काई प्रश्न पूछ रहे हो?
3: मखार पानी जो
1: जी
3: जो 4,000 फुट पाइप लाइन गड़ा मिल जाए, 2015 में गड़ाई जी
1: जी
3: जी को आवेदन करो तो वो नो।
1: क्या हुआ, पैसा नहीं मिला आपको?
3: पैसा तो मिला ही पुनर भाई, आवेदन भी नो। और
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: मंगाल साहब, बूंदी का बड़े
1: बूंदी
2: बूंदी।
1: तो आप एक आवेदन अपना बूंदी के जो संयुक्त निदेशक कृषि बैठते हैं वहाँ आप एक एप्लीकेशन लगाओ और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आप पूरे उसके दस्तावेज लेके जाओ कि साहब मैंने ये कराया था। आपको 4,000 मीटर का तो नहीं मिलेगा, बट 400 मीटर तक, 300 मीटर तक का आपको उस पर लाभ मिल जाएगा। अगर SDP तो आपने PVC लिया है, PVC पाइप लिया है, तो आपने एक्चुअली क्या है, इसका नियम है, आवेदन करने के बाद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है और उसके बाद में आपको वो पाइप क्रैक करना होता है, तब जमीन में गाड़ना होता है। आपने अपनी मर्जी से ही पाइप जो जमीन में गाड़ दिया जी,
2: मतलब पहले से लगा रखी,
1: हाँ पहले से लगा रखी, तो उस पर अनुदान नहीं मिलेगा,
3: 2015
1: उस पर नहीं मिलेगा अनुदान।
2: अच्छा
1: जी,
2: तो जी ने पहले से कर रहे हो जो काम तो पहले न मिलोगे, बल्कि जो अब नयो करवो चाहो छे,
1: हाँ,
2: तो अनुदान पात्र वही छे?
1: पात्र वही होगा जो एप्लीकेशन कराएगा, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होगी, जांच करने के बाद, दस्तावेज जांच होने के बाद में, स्वीकृति के बाद में वो क्रय करेगा
2: जी।
1: क्रय करने के बाद में अगर PVC है तो जमीन में गाड़ेगा, और SDP काला पाइप है तो वो जमीन के ऊपर रख के उसका भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से करवाएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रश्न को जवाब जो दियो अपना, उम्र एक बात या भी छुपी हुई छे कि भाई पहले से न कराए हो बल्कि अब आर वर्तमान में जो काम करवा रहा है केवल अनुदान वहां के लिए मिलोगे। तो डॉक्टर साहब एक सहज सी बात यह आउ छे कि जो आपने कृषि विभाग की जितनी भी योजनावां छे तो पात्र कुण कुण छे
1: इसके लिए? जो है पात्र मुख्य रूप से जो मूल चीजें है कि वो खातेदार होना चाहिए,
2: अच्छा
1: किसान हो,
2: हाँ
1: अगर वो ज्वाइंट में है उसके नौशनल शेयर से भी अगर उसके हिस्से में जमीन आ रही है तो वो एक पटवारी से प्रमाण पत्र लेकर के उसके हिस्से की जो जमीन है उसके आधार पर भी विभाग की जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो फार्म पॉन्ड की हो, सिंचाई पाइपलाइन की हो।

0: तारबंदी की हो उनका वो लाभ ले सकता है।
1: एक प्रश्न ले लो। हेलो, बिल्कुल। अच्छा, आपने बताया कि ये अच्छा कोई जातिगत
0: ऐसा कुछ भी, किसान होना चाहिए। किसान किसी भी जाति का हो सकता है, वो जनरल हो, एससी एसटी हो, महिला हो, हर किसी किसान को जिसके पास जमीन है वो उसका पात्र है।
1: हाँ, अगलो प्रश्न मारो यही जगह भाई, आपने जो महिला किसान छे वहाँ के लिए भी कोई विशेष छूट या कोई विशेष योजना चला अपने विभाग
0: की? महिलाओं के लिए जिससे मैंने बताया कि जनरल कैटेगरी के लिए सब।
1: श्रोता ने लेना। हेलो
2: हेलो,
1: राम राम साहब।
2: राम राम साहब, राम राम।
1: प्रश्न करो, नाम बताओ।
2: साहब यहाँ बमुड़िया से बोल रहे थे, राकेश।
1: बिल्कुल राकेश जी, का प्रश्न छे?
2: प्रश्न यो छे साहब, जो स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ समझा मैं
0: जी।
1: अच्छा,
2: तो इसलिए कहीं करनी पड़ेगी
0: स्प्रिंकलर। अच्छा, फव्वारा सिंचाई जो है ना, पानी बचाने की बहुत अच्छी विधा है और सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत जो है इस योजना को संचालित कर रखा है और ये उद्यान विभाग के द्वारा आपकी योजना संचालित है। इसके लिए आपको अपना आवेदन ई मित्र के माध्यम से उद्यान विभाग में आवेदन करना है और आपको जैसे ही प्रायोरिटी आएगी आपको उसका लाभ मिल जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: अच्छा सर
0: जी,
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको।
1: बिल्कुल, आप महिला किसानों के लेकर विशेष
0: महिलाओं के लिए मैंने बताया कि जो एससी एसटी और जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी को जैसे किसी योजना में 50% अनुदान मिल रहा है तो 10% एक्स्ट्रा उनको एक एडिशनल बेनिफिट है।
1: अच्छा,
0: तो उनको 60% का छूट मिलेगा, चाहे वो किसी भी योजना का लाभ ले रही है उनमें उनको ये पात्रता दी गई है।
1: अच्छा,
0: साथ साथ में मैं और किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि अभी बच्चों के 12वीं के रिजल्ट आए हैं और बच्चियां जो है अब एडमिशन लेंगी 11वीं 12वीं में। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चल रही है महिला शिक्षा को बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में महिला शिक्षाओं को बढ़ावा देना। तो इसमें सरकार की मैं स्कीम है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि जो बच्चियां कृषि विषय लेकर के।
1: शर्मा जी, हेलो
3: हेलो,
1: राम राम साहब।
3: राम राम साहब,
1: नाम बताओ।
3: नाम जगदीश कुमार, जगदीश।
1: कशी टाम से, कसा गांव से बोल रहा जो?
3: कशी नैनवा, जिला बूंदी।
1: बिल्कुल, काई प्रश्न छे?
3: भाई ट्रैक्टर में लगे मैम जो लोन और।
0: हाँ, ये बात बिल्कुल सही पूछी है कि एक कृषि यंत्र वाली योजना है सरकार की। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो भी खेती में काम आने वाले औजार हैं, ट्रैक्टर से चलने वाले हों या स्वयं चलने वाले हों, उन सभी यंत्रों पर 40% से लेकर के और 50% की छूट है। जनरल कैटेगरी के लोगों को 40% और एससी एसटी लघु सीमांत किसान भाइयों को, महिलाओं को 50% की छूट है। अब ट्रैक्टर वाली बात है तो ट्रैक्टर के लिए सरकार ने अभी एक स्कीम निकाली है, कस्टम हायरिंग सेंटर।
1: अच्छा,
0: किसान भाई जो छोटे किसान हैं, महंगे कृषि यंत्रों को नहीं खरीद सकते हैं, तो वो किसी कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से वो अपने औजारों को किराए पर ले सकते हैं। अब कस्टम हायरिंग सेंटर कौन लगा सकता है? कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए जो पात्रता है वो सहकारिता क्षेत्र में, चाहे वो सहकारी समिति हो या कोई कृषक उत्पादक समूह हो, संगठन हो, ऐसे में अगर कोई वो अपना सीएससी स्थापित करना चाहता है तो उनको 80% तक का, उसमें ट्रैक्टर भी शामिल है, तो वो ट्रैक्टर पे भी छूट उसको मिल जाएगी और ट्रैक्टर से चलने वाले औजार हैं उन पर भी छूट मिलेगी। व्यक्तिगत रूप से कोई नवाचारी या उद्यमी किसान है वो अगर कस्टम हायरिंग सेंटर अपना लगवाना चाहता है अपने वहां पर, तो वो उनको 40% या अधिकतम 12,00,000 रुपए तक की छूट किसान भाइयों को राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है। तो ये सुविधा है कस्टम हायरिंग सेंटर्स में, वो ट्रैक्टर अन्य स्कीम में नहीं ले सकता, लेकिन इस स्कीम के तहत वो पात्रता रखता है।
1: तो मतलब जो कृषि यंत्र है वहाँ पर भी अनुदान।
0: सरकार की बहुत अच्छी योजना चल रही है फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ाने के लिए। कोई भी औजार हो आजकल तो हर इम्प्लीमेंट को ले रही है, चाहे बुवाई से लेकर के कटाई तक, मढ़ाई तक का सारी चीजों को शामिल कर रखा है। तो किसान भाई स्कीम का जो आवेदन है वो वही ई मित्रा के माध्यम से होना है।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: किसान भाई आपको बता दूंगा, सजीव फोन इन कार्यक्रम चालू है। श्री अतीश कुमार शर्मा जी जो छे संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार, आज अपने साथ स्टूडियो में मौजूद छे और जानकारी दे रहा छे कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में। आपने जो फोन आया जो उससे पहले आप बता रहे थे जो अपनी बच्चिया 11वीं 12वीं में एडमिशन ले होगी वहाँ के लेकर का योजना।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि मैं जो स्कूल में अध्ययन छात्राएं जो कृषि विषय लेकर के पढ़ना चाहती है तो उनके लिए सरकार ने 11वीं और 12वीं इन दोनों साल में जो बच्चियां पढ़ रही हैं ग्यारहवीं की।

0: लेकर 2 साल का कोर्स होता है इसका, तो 15,000 रुपए तक का इनको प्रतिवर्ष
1: अच्छा
0: प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर उच्च अध्ययन करना चाहती है छात्रा जो है कृषि विषय लेकर के बीएससी कर रही है तो अच्छा। 4 साल का कोर्स है तो 4 साल तक उसको 25,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। उससे भी अधिक अगर उसको शिक्षा ग्रहण करनी है, स्नातकोत्तर की एमएससी करना है, उसको पीएचडी करना है, तो उसको प्रतिवर्ष 2 साल तक का कोर्स होता है, 40,000 रुपए प्रतिवर्ष उसको प्रोत्साहन राशि कृषि विभाग उनको उपलब्ध करवाता है और अपना ऑनलाइन सिस्टम है, सीधा बच्चियों के खाते में ये राशि प्रोत्साहन की डीबीटी की जाती है।
1: अच्छा
0: जी,
1: मतलब अगर ज्यादा कृषि के बारे में, खेती के बारे में आगे बढ़वो चाहो, जो भविष्य बनावो चाहो, जो तो सरकार भी आपने सहायता कर रही है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा शर्मा जी, बात जब आउजे का आपन आवेदन आपने बता दियो कुन कुन पात्र छे, अभी की प्रक्रिया का यूं होगी आवेदन की, कहां जार आवेदन करा, कशा आवेदन करा, फिर आपन ताई पतो कशा चाल लगो का आपनो आवेदन स्वीकार हो गयो, तो या थोड़ी
0: इसके, इसके लिए प्रक्रिया यह है कि जिस विद्यालय में पढ़ रही है जहाँ कृषि विषय है, स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन उनकी SSOID से अपना उनका आवेदन होगा और वो आवेदन ऑनलाइन होने के बाद में उसमें यही है कि मार्कशीट चाहिए उसकी जो परीक्षा पास की उसके पहले वाली, फेल नहीं हुई होनी चाहिए, राजस्थान अच्छा। की मूल निवासी हो और स्कूल का एक सर्टिफिकेट लगेगा उसमें कि ये बच्ची इस विद्यालय में अध्ययनरत है और एप्लीकेशन फॉरवर्ड होकर हमारे कृषि विभाग पर आ जाएगी और हम सीधा उसकी जांच करके और उनको जो है इसकी डीबीटी उनके खाते में कर दी जाएगी जो है।
1: बिल्कुल।
0: अभी पिछले साल आप देखेंगे तो करीब 2.25 करोड़ रुपए हम लोगों ने छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे 11वीं की, 12वीं की हो, बीएससी की हो, उन छात्राओं को हम लोगों ने प्रोत्साहन राशि इस बार मुहैया कराई है जो है। ये बहुत अच्छी योजना है और काफी पॉपुलर हो रही है छात्राओं के लिए। इसमें एक फायदा ये भी है कि अगर कृषि विषय लेकर पढ़ रहे हैं तो वो नौकरी की तो गारंटी ये है कि प्रायोरिटी मिलती है उनको। आज देखिए हर जगह महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है तो, और नहीं लग पाती तो अच्छे ढंग से खेती भी कर पाने में संपन्न, हाईटेक एग्रीकल्चर भी वो कर पाती है, खेती भी कर पाती है जो है।
1: शर्मा जी, आज विश्व मधुमक्खी दिवस भी
0: जी,
1: तो आपने मधुमक्खी पालक जो भाई जे वहाँ के लेकर कोई योजना या कोई ऐसी जानकारी आप देते हो?
0: देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत NHB के तहत जो है उद्यान विभाग के द्वारा मधुमक्खी हमारा एक मित्र कीट है।
1: बिल्कुल,
0: मित्र कीट है और ये किसानों का मित्र है, ये भी एक फार्मिंग है। अगर बी फार्मिंग कोई कर रहा है तो ये हमारी फसल में उत्पादन को भी बढ़ाता है और उससे जो शहद उत्पाद होता है उससे हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो हॉर्टिकल्चर विभाग के माध्यम से किसान भाइयों को ये आज उम्मेदगंज में इसका विश्व शहद दिवस पर भी एक सेमिनार भी आयोजित की गई थी, उसमें जानकारी उनको दी गई थी, मधुमक्खी पालन के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट की गई है। तो मैं तो किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि अगर खेती के साथ साथ वो मधुमक्खी पालन भी करना चाह रहे हैं तो उद्यान विभाग से वो जुड़े और उसका लाभ लें।
1: अच्छा शर्मा जी, जब बात विभिन्न योजनाओं की आउच है तो कुछ छोटी मोटी योजना की जानकारी तो अखबार का माध्यम से मिल जाओ, अपना कार्यक्रम का माध्यम से मिल जाओ, लेकिन किसान भाई अगर जो विस्तृत जानकारी ले वो चाहता हो,
0: इसके लिए जो है किसान भाइयों को हम लोग अखबारों के माध्यम से तो निकालते ही रहते हैं, चौपाल कार्यक्रम भी होता है हमारा जो है, हर गुरुवार को कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है, उस कार्यक्रम को जन कृषि ज्ञान धारा,
1: अच्छा
0: कृषि के अंदर कार्यक्रम है, 3 बजे से स्टार्ट होता है और हर गुरुवार के दिन कोई भी किसान भाई कहीं भी किसी भी सेंटर पे अपने मोबाइल पे यूट्यूब पर भी वो जानकारी ले सकता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होते हैं, हम समय समय पर उनको जो है बुला करके ट्रेनिंग भी देते हैं। इसके अलावा कुछ योजनाएं और भी महत्वपूर्ण है, जब जिस खेत खाली हो गए अभी किसान भाई अपने खेतन की जो है मिट्टी की जांच करा सकते हैं, यदि वो अपने मिट्टी की जांच कराएंगे और जांच रिपोर्ट के आधार पे वो अपने खेतों में खाद डालेंगे तो उनकी लागत में कमी आएगी, पैसा बचेगा उनका और सॉइल का जो हेल्थ कार्ड है वो हमें पता लग पाएगा हमें हमारी जमीन बीमार है या स्वस्थ है। तो आप इन दिनों में अपने खेतों के मिट्टी के नमूने ला करके हमारी जो प्रयोगशाला है तबेला हाउस कोटा में है, सागवत में है, कृषि विज्ञान केंद्र पर भी है, नंदा फार्म भी है, तो आपका केवल शुल्क 5 रुपए लगेगा, सरकार का 100 रुपए लगेगा लेकिन आपको केवल 5 रुपए जमा करा के और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ में अभी जैसे सोयाबीन का समय चल रहा है, कोई भी किसान भाई पिछले बार बरसात में भीग गया था, अपने बीज का सैंपल लेकर के अगर हमारे कृषि विभाग के माध्यम से जांच करवाएगा तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट
1: अच्छा
0: बीज परीक्षण प्रयोगशाला से उनके सोयाबीन के बीज की जांच भी करवा देंगे। एक चीज और मैं किसान भाइयों को करना चाहूंगा कि अभी सीजन आने वाला है बुवाई का, तो किसान

0: भाइयों को मेरा आग्रह है इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, कि किसान भाई अपने खेतों में सोयाबीन का जहाँ उत्पादन ले रहे हैं, तो एक बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट का खेतों में बुआई के पहले ही अगर खेत में मिला देंगे तो हमारे खेतों में सोयाबीन का उत्पादन अच्छा होगा। साथ साथ में डीएपी का एक अच्छा विकल्प है, एक बैग यूरिया का और तीन बैग डीएपी सिंगल सुपर फॉस्फेट के डालेंगे तो हमें डीएपी पर आत्मनिर्भर नहीं मतलब रहना नहीं पड़ेगा, हमको हमारे पास एक विकल्प मिल जाएगा। दूसरा, मैं किसान भाइयों को ये चीज और अवगत कराना चाहूंगा कि अभी धान की बुवाई अधिकांशतर किसान भाई उसका एक पडल बनाकर के खेती करते हैं। मैं कहूंगा कि किसान भाई इस बार डीएसआर डायरेक्ट सीड की सोइंग अगर करेंगे तो उससे न केवल हमारा खर्चा बचेगा बल्कि हमारे पानी की बचत होगी, लागत में कमी होगी और उत्पादन में कोई खास कमी आने वाली नहीं है। समय की बचत होगी, हम लोग जब जैसे ही बरसात होगी और तुरंत उसकी सोइंग कर देंगे। तो किसान भाइयों से मेरा एक अपील है कि वो डायरेक्ट डीएसआर सिस्टम पे जाएंगे तो अच्छा लाभ उनको मिलेगा। सोयाबीन के रेफरेंस में ये और मैं अवगत कराना चाहूंगा किसान भाइयों को, बीज फैक्ट्रियों में नहीं बनता है, बीज किसानों के खेत पे पैदा होता है। तो किसान भाई जिनके पास बीज है उस बीज को स्पाइरल सीड ग्रेडिंग से ग्रेडिंग करके और अपने फॉर्म पे ही वो बीज की जांच कर सकते हैं। इसके लिए एक टाट बोरी लें, उसमें 100 दाने डालें और उसमें अगर छाया में रख दें उसको, आप देखेंगे 3-4 दिन में उसमें अंकुरण हो जाएगा। गिने उसको, 70 दाने अगर उगे हुए हैं तो हमारा बीज बोने के लायक है।
1: बिल्कुल
0: 50% से कम अंकुरण आ रहा है तो हम बीज को नहीं लें, दूसरा बीज काम में लें।
1: अच्छा शर्मा जी, अब आजकल जो है ना बात जैविक खेती, आधुनिक खेती और उन्नत खेती की चल रही है, प्राकृतिक खेती की चल रही है,
0: प्राकृतिक खेती
1: विषय में भी कोई योजना चल?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारा स्वास्थ्य जो खतरे में है, हम चाह रहे हैं कि हमारी जमीन का स्वास्थ्य सुधरेगा तो हमारा स्वास्थ्य सुधरेगा, और जमीन का स्वास्थ्य सुधरने का पैरामीटर है हमारी जमीन में कार्बनिक पदार्थ। आज 65% मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ 0.5% से कम आ चुका है। तो हम सरकार की योजना है, चाहे वो परंपरागत कृषि जैविक कृषि योजना PKY हो या नेचुरल फार्मिंग है, मिशन चल रहा है इसके ऊपर, हम लोग किसान भाइयों के क्लस्टर्स के रूप में चला रहे हैं और हर साल नेचुरल फार्मिंग के तहत हम एक किसान को 4,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि उनको दे रहे हैं कि वो अपने खेत पे 0.4 हेक्टर यानी एक एकड़ में वो खेती करेगा तो हम 4,000 रुपए का उनको प्रोत्साहन राशि देंगे। इसी तरह से हमारे जो जैविक परंपरागत कृषि विकास योजना है PKBY, इस योजना के तहत भी एक साल में किसान भाई को 9,000 रुपए तक का भी इसमें सहायता दी जा रही है, बशर्ते कि किसान भाई स्वयं अपने लिए जैविक खेती करे और अगर एक्सेस है तो वो उसको अपने पड़ोसी को, दूसरे किसानों को उसको दे, ताकि उसका परिवार भी स्वस्थ रहे और दूसरे जहाँ जैविक उत्पाद है उनको भी, दूसरे लोगों को भी मिल जाए, क्योंकि किसान अन्नदाता है, वो अच्छा उगाएगा तो दूसरे जो नई खेती करते उनको भी अच्छा चीज मिलेगा। सरकार की महत्वपूर्ण योजना है दोनों, और ये हमारे जिले में आप देखेंगे कि जैविक खेती का क्रेज बढ़ रहा है। आज हम देखें तो करीब हमारा 4-5% जो रकबा है, 2,65,000 में बुआई होती है, तो करीब 4-5% एरिया हमारा जैविक में कन्वर्ट हो गया है। किसानों ने एक मिशन बना लिया है और मूड बना लिया है कि हम लोग अपने इस मिशन को पूरा करेंगे, और सरकार का भी मिशन है, भारत सरकार का भी मिशन है कि आने वाले विकसित भारत 2047 तक हम इसको आज 4% है उससे लेकर के 25% तक हम पहुंचाएंगे, और इस मिशन में हम कामयाब होंगे, किसानों का रुझान बढ़ा है। आज भी हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैम थी उन्होंने इस चीज पे काफी जोर दिया है, विजिट भी किया था यहाँ पर गोयल ग्रामीण संस्थान का, और किसानों से सीधी रूबरू बातें भी की है, तो उनके उत्पादन में कोई ज्यादा कमी नहीं आती है। यदि लगातार किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं तो कुछ समय बाद प्रोडक्शन अच्छा मिलने लग जाता है,
1: मतलब जो अब तक को नुकसान हुए उसकी भरपाई भी
0: हो जाती है,
1: हो जाए।
0: शुरू में 1-2 साल का डिफरेंस आता है, उसके बाद वो रिकवर हो जाता है, बस आते हम हर साल उसमें गोबर का खाद डालें, हरी खाद डालें अपने खेतों में।
1: बढ़वाओ कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहे जो, और आपके ताई बता दिया का आज श्री अतीश कुमार शर्मा जी जो संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कोटा में है, माना आपन का ताई कृषि विभाग की कई योजनाओं की जानकारी दी। लेकर शर्मा साहब आपको घनो घनो धन्यवाद।
0: धन्यवाद सब, राम राम किसान भाई।
1: लियो बनवायाओ घड़ी की सुया खरी जगह बैशा होना कार्यक्रम समाप्त हो रहे तो आपसे फिर मिलंगा, खाल नई नई जानकारियां कर ला रहा और अच्छी अच्छी बात कर ला रहा, काम की बात कर ला रहा, तो दियो आज्ञा चाला चा, राम राम।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनिए विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में आयोजित संगोष्ठी की रेडियो रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं नवीन कुमार चचैया जी।

0: श्रोताओं, आज दिनांक 20 मई 2026 बुधवार को कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा परिसर अंतर्गत विश्व मधुमक्खी दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि माननीय विधायक लाडपुरा कोटा श्रीमती कल्पना देवी, अध्यक्ष पद पर कुलगुरु कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉ. कमला डुकवाल और विशिष्ट अतिथियों में डॉ. एमसी जैन निदेशक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय कोटा, निदेशक प्रसार शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉ. महेंद्र सिंह, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय कोटा डॉ. एसके जैन, क्षेत्रीय निदेशक कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा डॉ. भवानी शंकर मीणा और परियोजना प्रभारी अखिल भारतीय मधुमक्खी अनुसंधान परियोजना डॉ. एचपी मेघवाल मंचासीन उपस्थित रहे। प्रस्तुत है इस संगोष्ठी की क्षेत्र संकलित रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। आगंतुक अतिथियों के करकमलों से माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डॉ. राजेंद्र कुमार यादव ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया। अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और मधुमक्खी के क्रियाकलापों पर प्रकाश डालते हुए आप हैं परियोजना प्रभारी अखिल भारतीय मधुमक्खी अनुसंधान परियोजना डॉ. हरि प्रसाद मेघवाल।
1: ये कार्यक्रम आयोजन करने का मकसद ये है कि मधुमक्खियां बचनी चाहिए, सेव द बी। फर्स्ट जो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया वो 2018 में मनाया गया था। भूमिहीन किसान भी इसको कर सकता है। खेती की कोई शाखा प्रभावित नहीं है। आजकल यंत्रों से खेती होती है, तो खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर सकता है। कंपटीशन नहीं है इसमें, प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी भी व्यवसाय के साथ, इसको किया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि मौसम खराब होता है तो अपने किसानों का जीव मुट्ठी में आ जाता है कि अब क्या होगा। मधुमक्खी पालन में ऐसा है कि अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है या हल्की सी बारिश होती है तो मधुमक्खी सारी अंदर आ जाती है कॉलोनी के। प्राकृतिक आपदा का उसको बिल्कुल खतरा नहीं है। इसको अच्छा इजीली हैंडल करेंगे तो महिला बच्चा कोई भी कर सकता है। शुरुआत में ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी 4000 रुपए की आती है। अगर 25 कॉलोनी से शुरू करता है तो 1,00,000 रुपए में वो अपना धंधा शुरू कर सकता है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आया था और ब्रिटिश सरकार के टाइम की बात है। 1936 में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के पास में एक जगह नगरोटा भगवान, वहां पे मधुमक्खी पालन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। और फिर भारतीय मधुमक्खी को पाला और देश आजाद होने के बाद 1962 में एपिस मेलिफेरा को लाए थे वहां पे। और उसके बाद में 1962-63-64 में उन्होंने सफलता हासिल करी और उसके बाद पूरे देश में आज ये एपिस मेलिफेरा को पाला जा रहा है। इसीलिए मधुमक्खी पालन अनुसंधान के अपने देश में 18 केंद्र है, जिसमें राजस्थान में कोटा है। ज्यादा इसमें औजारों की तरह आवश्यकता नहीं है। मधुमक्खी पालन भी एक व्यवसाय का दर्जा दिया गया है, पर व्यवसाय के जैसे इसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के औजार नहीं खरीदने पड़ते हैं। केवल इतने से 5-10 हजार के औजारों से मधुमक्खी पालन शुरू किया जा सकता है। ये उनकी कार्य क्षमता है, मतलब डिफरेंट विभिन्न उम्र के हिसाब से वो सारा काम खुद करती है। 19 दिन तक अंदर का काम करती है, 19 दिन के बाद में वो बाहर का काम करती है। अपन को उसको खड़ने की जरूरत नहीं है, उनकी पूरा मन से सारी एक्टिविटी रहती है, वो खुद अपना आप काम करती है। आपको तो केवल फूलों के पास में रखनी है मधुमक्खी। फूलों से मकरंद लेके आती है, उसमें 20% मीठा होता है। फिर वहां आके पंखों से हवा करके उस पानी को उड़ा के और उसको शहद में कन्वर्ट कर देती है। फिर वैक्स निकाल के सील कर देती है। ये इसके पंख इतने तेज फड़फड़ाती है, ये जैसे पंखे की तो 500-700 RPM होती है, इसकी 1200 RPM। 1 सेकंड में 20 बार पंख को फड़फड़ा के और ये पानी को उड़ा के शहद में परिवर्तित कर देती है और ऐसे ये सील कर देती है। फिर इसको अपन निकाल सकते हैं। कच्चा शहद उनका 150 रुपए किलो बिक रहा है, तो वो यहाँ प्रोसेस करने के बाद में 30 रुपए के लगभग का उनका खर्चा आएगा सारा बोतल गाड़ी मिला के, और इसको वो 300-400 रुपए किलो में बेच देते हैं। फिर ये हमने 2018-19 से शुरू किया था और हर साल हमारे

में 20 से 50 साठ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोसेस करवा के अपना शहद अपनी मार्केटिंग करते हैं अपने नाम से। ये हम शहद ऐसे प्रोसेस करके ऐसे पैकिंग करके बेच सकते हैं, ये वैक्स भी बेच सकते हैं, वैक्स भी निकलता है उससे, शहद का 2% वैक्स निकल जाता है। और ये मास क्रीम रेयरिंग करके और रॉयल जेली भी बना सकते हैं, सुना में रानी बना के उसको भी बेच सकते हैं। एक बार हमने 2 प्रशिक्षण करवाए जिसमें एक बार तो हम 16 ले गए थे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के मधुमक्खी पालकों को 25-25 का बेच एक बार पंजाब ले गए थे। इससे क्या मधुमक्खी

0: रिस्ट्रिक्शन करवाई, जिसमें एक बार तो हम 16 ले गए थे हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के मधुमक्खी पालकों को 25-25 का बेच एक बार पंजाब ले गए थे। इससे क्या मधुमक्खी पालकों की एपायरी स्ट्रॉन्ग होती है, रानी नहीं रहती है तो वो अंडा अच्छा देती है, शुरुआत में 1500 से 2000 अंडा देती है। तो ये मास क्यों रेयरिंग पे भी हमने यहाँ पे किसानों को प्रशिक्षित किया है। और ये हमारी कुछ रिकमेंडेशन है जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में इंक्लूड हुई है, कि नहीं तो पहले किसानों को यह भ्रांति थी कि मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है और उनकी उपज में कमी कर देती है, पर हमने प्रैक्टिकल करके यहाँ पे देख लिया कि ये परागण वाली फसलों में उपज बढ़ाती है परागण के द्वारा। ये हमने एक टेबल में दिखाने की कोशिश करी, ये इनमें इतना प्रतिशत तक उपज बढ़ा देती है, ये मतलब 70% तक भी उपज बढ़ा रही है ये मधुमक्खी के पॉलिनेशन के द्वारा।
1: विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषकों को अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने हेतु प्रेरित करते हुए आप हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, निदेशक प्रसार शिक्षा कृषि विश्वविद्यालय कोटा।
2: अपने साथ दूसरे साथियों को जोड़ें और जो सरकार की स्कीम है एफपीओ उसका सदुपयोग करें, और जब भी जो है हमारा जो 3-4 महीने का जो समय आता है जब मधुमक्खियां हमारी बहुत सारी मर जाती है या ये जो बिजनेस है हमारा नेगेटिव चला जाता है, तो उसको हम लोग जो भी पहाड़ी क्षेत्र है जहां भी ले जा सकते हैं वहां ले जाएं। ये पहला आग्रह मेरा सभी साथियों से है, जो चीज जहां पैदा होगी वहां उतने ही ग्राहक आएंगे। उसके एग्जांपल सब जगह अवेलेबल है, कोटा का धनिया दुनिया में सबसे महंगा है, अमरूद सवाईमाधोपुर का अमरूद सबसे महंगा है, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि मुझे शहद चाहिए तो कोटा जाना चाहिए। तो हमारे जो साथी है विशेष आग्रह है मेरा जो इस काम को कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, इस काम को करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, जिससे कि हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी शहद किसको कहां चाहिए, भाई कोटा में जाइए शहद के लिए, उस दिन हमें अच्छे भाव मिलेंगे। उसके लिए विश्वविद्यालय पूरा प्रयासरत है, आपका शहद प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ कोटा में भी है, झालावाड़ में भी है, वहां करौली में भी है, सब जगह है, और हमारे वैज्ञानिक लोग भी इस काम के लिए प्रयासरत है। मेरे साथी जो मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि दूसरे लोगों को जोड़े, और उनको जो माइग्रेशन की समस्या थी कि बिना माइग्रेशन के मधुमक्खी पालन नहीं हो सकता है, सब लोग जानते हैं, तो माइग्रेशन में सहयोग करेंगे तो हमारे आने वाला समय जो कोटा है, कोटा डोरिया है और कोटा स्टोन के साथ साथ कोटा शहद के नाम से भी जाना जाएगा।
1: मधुमक्खियों के माइग्रेशन से जुड़ी हुई बात और परागण के विषय में बताते हुए आप हैं डॉक्टर MC जैन, निदेशक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय कोटा।
3: हनी 100% प्योर फूड के रूप में हम ले सकते हैं इसको, इसमें खाली फैट नहीं होती है, बाकी कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सारी चीजें होती है। तो एक भोजन के रूप में पूर्ण भोजन की संज्ञा अपन हनी को दे सकते हैं। और जैसा इन्होंने बताया कि एक सामाजिक प्राणी, एक सामाजिक जीव है, ये जीव हमें शहद का उत्पादन करता है। क्योंकि वैसे भी मैं बता दूं आपको कि कोटा संभाग हमारा एक ऐसा संभाग है, हम बहुत भाग्यवान हैं कि कोटा के अंदर जो इसके आवश्यक चीजें हैं, चाहे पानी की बात करें हम, चाहे फ्लोरा की बात करें, चाहे दूसरी क्लाइमेट की बात करें, तो मधुमक्खी को पालन को काफी शूट करती है। यहाँ पे पानी भरमार है, यहाँ पे फ्लोरा भी समय समय पे पर्याप्त मात्रा में रहता है, और मधुमक्खी पालन के लिए बहुत उपयुक्त जलवायु यहाँ पे है, इसलिए हम मधुमक्खी पालन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा व्यवसाय है जो किसान भाई जिनके पास जमीन नहीं है वो किसान भाई भी मधुमक्खी पालन करके शहद प्राप्त कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में इतना जरूर कहना चाहूंगा हमारे वैज्ञानिकों को भी मैं, कि हम अभी तक खाली किसानों को यही बता पा रहे हैं, कन्विंस यही कर पा रहे हैं कि शहद की तरफ शहद उत्पादन करें, लेकिन जैसा आपने अभी बताया कि इसके कई सारे बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, रॉयल जेली है, वैक्स है, बी वेनम है, और भी कई सारे इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पादन भी हम सिखाएंगे, उनका उत्पादन भी किसानों को अगर आएगा तो निश्चित रूप से ये जो आपका व्यवसाय है ज्यादा फायदा ज्यादा मुनाफा देने की स्थिति में आएगा। क्योंकि हनीबी की कई सारी चर्चाएं अभी आप लोगों ने की यहाँ पे कि जब फ्लोरा होता है तो हम वहां पहुंचा देते हैं, उसके बाद उसको माइग्रेशन की जरूरत होती है, जहां फूल नहीं होते हैं वहां फूल वाले में ले जाते हैं। एक बहुत छोटी सी बात आपको बताऊं मैं कि हनीबी का जो माइग्रेशन होता है वो कैसे किया जाना चाहिए और क्या होना चाहिए। हनी जो प्रोसेसिंग है या हनी जो पालन है उसमें एक चीज है 3 फीट एंड 3 माइल, 3:3 का एक नियम है। क्योंकि जब हनी बीज अपनी कॉलोनी छोड़ के मकरंद कलेक्ट करने के लिए बाहर जाती है तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है।

0: करती है, उसको ये पता नहीं होता है कि घर वापस पहुंचना होता है, वो एक मानसिकता बना के जाती है, एक रूट तय करके जाती है, उस रूट के माध्यम से वापस वो पहुंचती है। तो अगर आपने हनी कॉलोनी को 3 फीट से ज्यादा खिसका दिया है तो वो हनी कॉलोनी के पास वो मधुमक्खी वापस नहीं आ पाएगी, और अगर 3 मील से ज्यादा खिसका दिया है तो उसका फिर माइंड सेट चेंज हो जाएगा, उसका जो रूट है वो चेंज हो जाएगा, 3 माइल के बाद वो अपनी कॉलोनी पे पहुंच जाएगी। मेरा कहने का मतलब है इन बिटवीन 3 फीट और 3 माइल के बीच में अगर आप कॉलोनी को माइग्रेट कर रहे हो तो मधुमक्खियों के लिए घातक होता है। हम इसके बीच में मधुमक्खी को बॉक्स को हम माइग्रेट नहीं कर सकते 3 फीट और 3 माइल के बीच में, 3 माइल से ज्यादा दूरी जनरली करते ही हम, तो वो अपना रूट नया तय कर लेती है और वापस मधुमक्खी कॉलोनी तक आ जाती है, और जब 3 फीट इधर उधर करते हैं तो तब भी वो कॉलोनी में वापस आ जाती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पॉलिनेटर्स, ये मधुमक्खी एक बहुत अच्छा पॉलिनेटर है। अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया ना हो तो हमारे फल व बीज नहीं बनेंगे। कई सारी फसलें ऐसी है जिनमें मधुमक्खी पालन एक पॉलिनेटर का काम कर रहे हैं। स्पेशली मैं आपको बता दूं कि उद्यानिकी फसलें, चाहे फलदार पौधे हो, चाहे सब्जियां हो, चाहे दूसरे जितने भी हैं, स्पेशली जितने भी टेम्परेट फ्रूट्स हैं जिसमें एप्पल है, पियर है, इनमें मधुमक्खी पालन का बहुत बड़ा रोल होता है, और लगभग 35% परागण हमारी उद्यानिकी फसलों में कद्दू वर्गीय सब्जियां हुई है, या जो जितने भी दूसरी सब्जियां हैं या फलदार पौधे हैं, आम है, आज आम का उत्पादन आपका आधा रह जाएगा अगर मधुमक्खी नहीं होगी तो उद्यानिकी फसलों में तो वैसे भी मधुमक्खी पालन का या मधुमक्खियों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस वर्ष की थीम भी यही है कि टुगेदर पीपल, टुगेदर विथ बी, प्लेनेट को, हमारा जो संसार है, हमारा जो लोग हैं उनको हम सस्टेन कर सकते हैं अगर मधुमक्खी पालन करेंगे तो। मधुमक्खी पालन के साथ ही ये संभव होगा, उत्पादन और उत्पादकता तभी बढ़ेगी। हम दूसरी चीजों की कई बार बात करते हैं, इरिगेशन की बात करते हैं, फर्टिलाइजर की बात करते हैं, लेकिन परागण की बात अधूरी रह जाती है। तो आप लोगों को इस दिन आपको ये शपथ लेनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस डे है, अवेयरनेस लाई जा रही है, जागरूकता लाई जा रही है लोगों में कि मधुमक्खी पालन करना दोहरा फायदा है, फसलों की उपज भी बढ़ाती है और साथ ही साथ आपको इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे हनी है चाहे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, उनसे भी किसान की आमदनी का एक जरिया बन सकती है।
1: संगोष्ठी में पधारे मधुमक्खी पालकों में से कुछ मधुमक्खी पालकों ने अपने अनुभव इस प्रकार साझा किए।
2: मेरा नाम नरेंद्र कुमार मालव, यहाँ से मेरा गांव 45 किलोमीटर दूर है, और मधुमक्खी पालन की ऐसे ही हम जैसे हैं वैसे ही हमने एक ट्रेनिंग करके यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में और मधुमक्खी पालन का शुरुआत किया। मैंने शुरुआत में मधुमक्खी पालन से 5 बक्से खरीदे, और 5 बक्से खरीदने के बाद उससे हमें 80 किलो शहद उत्पादन हुआ, और धीरे धीरे हम अधिकारियों के यहाँ इनके टच में रहे और मधुमक्खियाँ जिंदा रही, और मधुमक्खियाँ से लगभग जो फसल परागण में है उनमें भी 70-80% होता है, और लगभग हमें इस व्यवसाय करते करते लगभग 2004 से शुरुआत किया था, 20-22 साल मधुमक्खी पालन का। एक बात और है, हमने हमारी फार्म पे एक निशुल्क ट्रेनिंग प्रोग्राम रख रखा है, कोई भी अगर नया किसान यहाँ ट्रेनिंग करने के बाद कोई आता है तो हम उसको जब तक वह परिपूर्ण यानी कि वह सक्षम नहीं हो जाता है तब तक हम उसको वहाँ सिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, सरकार के माध्यम से हम सोलन भी गए थे, यहाँ से हमारा बेच यहाँ भेजा था, उसके मार्फत से हम ग्राफ्टिंग क्यून भी तैयार करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो मधुमक्खी का जो सर बता रहे थे कि इनका शुरू में अपन सीजन में यानी कि शहद तैयार करते हैं तो अच्छा लगता है, बाद में दिक्कत आती है, तो एक अगर अपन रानी तैयार करेंगे बक्सा से तो 40-45 दिन का समय निकल जाता है, तो अगर अपन ग्राफ्टिंग रानी तैयार करेंगे तो वह 10-12 दिन में तैयार हो जाती है। तो जो अगर एक मधुमक्खी अपन को 20,000 अंडे रोज देगी, 2,000 अंडे रोज देगी, तो वो 20 दिन अपना बच जाएगा, तो कितनी मधुमक्खियां अपन उससे तैयार करें। तो जो ग्राफ्टिंग क्यून है इसका ये फायदा होता है, और जो किसान की शहद की जो भ्रांतियां कि शहद जम जाता है, तो अमूमन जो सरसों का शहद है वो जमता है, अमूमन दूसरा शहद कम जमता है, और अपना जो हिंदू

0: हिंदुस्तान है इसमें शहद कम खाते हैं, और शहद का अगर अपन महत्व देखें तो इसको पंच अमृत में भी इसको शामिल किया गया है। और अगर मधुमक्खियाँ नहीं रहेगी तो आने वाले समय में जो मानव है, ये भी वैज्ञानिकों ने कहा है कि 4 साल में मधुमक्खियाँ नहीं रहेगी तो इंसान भी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। हम भी एक बेरोजगार थे तो इसी राह पे ये हमने काम शुरू किया, मधुमक्खियाँ रहेगी तो ये पर्यावरण पॉल्यूशन में कोई ये व्यवसाय है, इस व्यवसाय से पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं फैलाता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो हम सभी किसान भाइयों से सभी से अनुरोध है कि घर पे 10-5 पेड़ फूलों के लगाएं ताकि जो मधुमक्खियाँ हैं जो आज हीट वेव बो रहा है किन्नी हो, इनसे पोलन मिले और मधुमक्खियाँ अपनी या जो बाहर की जंगली मक्खियाँ रहें वो तैयार हैं, एक दो पेड़ फूल पेड़ रहेंगे तो अच्छा भी लगेगा और मधुमक्खियों का जीवन भी चलेगा। टर्न और मधुमक्खी पालन से हमारा 20-25 लाख रुपए सालाना ये तैयार हो जाता है। और हमारा ये जो खेती है हमारी परंपरा खेती, उससे भी हम ज़्यादा कमाते हैं मधुमक्खी पालन से। और हम यहाँ से जब से आए हैं हमने आज तक यूनिवर्सिटी का पीछा नहीं छोड़ा है, हमें कहीं न कहीं नई नई तकनियाँ मिलती रहती है। आज भी हम अब ये कह रहे हैं, जब हम यहाँ से 25 साल पहले आते थे तो गांव से हमारा वहाँ 15 किलोमीटर कोई रास्ता नहीं था, हम पैदल पैदल आके सीम ले आते, वहाँ से बस में बैठते और कृषि विज्ञान केंद्र में एक ट्रेनिंग। कोई भी कार्य करेंगे लगन के साथ करेंगे तो 100% सही होगा।
1: मैं किशन प्रजापति पूनम कॉलोनी में रहता हूँ। लगभग 2007-08 से मैंने काम चालू किया था। एक बार दूरदर्शन पे देख रहा था मधुमक्खी पालन, तो वहीं से मेरे को इसकी थोड़ी सी इच्छा जागृत हुई। और फिर यहाँ के किसानों से, जैसे अंतिम चौधरी है, अपने रामपाल जी गुजर है, ये काम करते थे, तो हॉर्टिकल्चर जाके मैंने उसकी जानकारी ली, सब्सिडी से अनुदान से मधुमक्खी खरीदी, हमने खुद अपनी फर्म बना के अब किसानों को हम भी मधुमक्खी उपलब्ध कराते हैं। और इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको इन्वेस्ट एक बार करना होता है, अगर आपने सीजन में मक्खियाँ ले ली तो लगभग डबल हो जाती है अपने सरसों धनिये पे। अगर 100 कॉलोनी ली तो आपको 200 कॉलोनी होना स्वाभाविक है। इसमें एक और समस्या ये नहीं आती है कि आपने कोई चारा डालना है, कुछ डालना है, इनको खोलना है, बांधना है, ये अपने आप ही सारा काम करती थी। एक बार रख दो आप मक्खी को तो अपने आप ही 3 किलोमीटर की रेंज से अपना जो खाने पीने का साधन है वो ले आती है। खाने पीने में इनको पराग, जो अपने पिंकी पैरों के पास में एक टोकरी बास्केट होती है उसमें पराग कन्वर के लाती, गोली बना के मकरंद अपने सूंड में लेके आती है और उसमें भर देती है। तो इनका क्या है कि सिस्टम जो रानी मक्खी है जो एक दिन में 2 से 2.5 हज़ार अंडे देती है। रानी का कार्यकाल 2.5 से 3 साल होता है, वो एक बार मेट होती है, पूरी जिंदगी उनका काम अंडे देने का होता है। और एक बॉक्स में एक रानी होती है, 3 तरह की प्रजाति होती है, उसमें ड्रोन, श्रमिक और रानी। रानी सिर्फ एक होती है, श्रमिक होते हैं जिनके डंक होते हैं, रानी के ड्रोन के डंक नहीं होते, वो कभी भी डंक नहीं मारते। और श्रमिक ये वर्कर भी कहते हैं इनको, श्रमिक कहते हैं, वही पूरे अपने कार्यकाल, इनकी ज्यादा कार्यकाल नहीं होता श्रमिक का, इनका ज्यादा ज्यादा 45-50 दिन का कार्यकाल होता है जिसमें अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। लेकिन उस टाइम में अपना इनके उम्र के हिसाब से कार्य बटा होता है। छोटे बच्चे होते हैं वो छतों की साफ सफाई करेंगे, जो बड़े हो जाते हैं फिर वो बाहर जाके निकल के आते हैं, तो इनकी एक सामाजिक प्राणी है ये। और रानी अंडे उसी हिसाब से देती है, अगर सामने से माल आ रहा है ना उसी हिसाब से अपने बच्चे या अंडे देती हो। अगर माल नहीं आ रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही, वर्कर कितना सामान ला रहे हैं उसी हिसाब से अंडे देती है। जब ये पोलन और ये मकरंद खत्म हो जाता है ना तो रानी अंडे देना ही बंद कर देती है। उसको मालूम है अगर मैं दूंगी तो इसको खाएंगे क्या है, इसको व्यवस्था कैसे बैठेगी, भंडारण उतना ही करती है रानी, इतनी समझदार है। और रानी एक ऐसा जीव है जो अपनी इच्छा से अनिश्चित क्रिया से नर और मादा अपनी इच्छा से दे सकती है कि मेरे को नर कब देना है, मादा कब अंडे देने, तो अपनी इच्छा से वो दे सकती है। एक ऐसा जीव है, इसके बारे में भी माधव साहब ने बताया कि ये जब नहीं रहेगी ना तो सृष्टि जो अपनी प्रजाति है ये भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी परपराकरण सबसे ज्यादा परपराकरण की क्रिया मधुमक्खी से होती है। फल अन्न सब्जियां जो बनती है ना जो पराकरण की क्रिया से बनते हैं, तो जब सब चूच खत्म हो जाएगी तो अपना भी सृष्टि खत्म होना तय है। तो इसलिए इसको बचाना, सेव करना, पालन करना, ये अपने स्वभाव में आना चाहिए।
2: आपस में समूह बनाकर काम करेंगे तो एकता और

0: और आय भी बढ़ेगी। मधुमक्खी पालन के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, यह किसान और पर्यावरण दोनों की साथी हैं। और कृषि विश्वविद्यालय से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित करती हुई आप हैं माननीय विधायक लाडपुरा कोटा श्रीमती कल्पना देवी।
1: हाड़ोती क्षेत्र ऐसा है जहां इतना पर्याप्त पानी है कि ये राजस्थान का एमरल्ड कहलाता है, एमरल्ड ऑफ राजस्थान, मतलब पन्ना एमरल्ड। इतना ग्रीन, इतना हरियाली यहाँ है कि कोई कमी नहीं है पानी की। तो ये जो मधुमक्खी का जो कार्य है, पालन है, तो हर वेट लॉस प्रोग्राम में शहद तो इंक्लूडेड है ही। चीनी मतलब चीनी कम करो, उसके बदले गुड़ या शहद का सेवन करो, तो आने वाले समय में शहद की डिमांड केवल बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाहे वो दवाई के रूप में लो, चाहे फैशन के रूप में लो, चाहे टेस्ट के लिए लो, एक ऐसा चीज है जिसका डिमांड कभी कम नहीं होगा और आय आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे माधव जी ने बताया कि पहले 4 बक्से से शुरू करा और देख लो भाई जचती है कि नहीं जचती है, कितने पैसे और आए आपके 4 बक्से से। मुझे लगता है जैसे ही आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, अपने आप ही आप माधव जी के जैसे बक्से बढ़ाते रहोगे और आप भी इनके जैसे लखपति बन जाओगे। और इसका ये मतलब नहीं है आपका जो दूसरा खेती है आप उसको छोड़ दो, खेती का काम करो। और जिस किसान के पास जमीन भी नहीं है वो भी ये खेती कर सकता है, ये कितनी बड़ी बात है। तो ये नहीं है मेरे कितने बीघा, उसके कितने बीघा, नहीं है बीघा तो भी कर सकते हो। ये एक उन लोगों के लिए भी एक रास्ता है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। और एक छोटी समस्या के लिए जिसका बहुत आसानी से आप लोग समाधान निकाल सकते हो, अगर बारी बारी में आप लोग बाहर जाओ, तो रोटेशन करके आप लोग बारी बारी जाओ, तो थोड़ी ना एक आदमी 4 महीने के लिए बाहर जा रहा है, आपको सहमति बनानी पड़ेगी। और ये तो जिंदगी में हर चीज में सहमति और आपसी मेल जोल करके कार्य करने का एक पद्धति तो सब जगह है, सिर्फ शहद की बात नहीं है। बोला है अभी बता रहे थे पॉलिनेशन में कितना इनका उपयोग है कि आम की खेती में उसके पैदावार में 50% पैदावार कम हो जाएगा अगर मधुमक्खी नहीं है। तो ये जो छोटी सी प्रजाति है वो किसान की कितनी अच्छी साथी है, किसान की भी साथी है, पर्यावरण की भी साथी है, कितना काम कर रही है पर्यावरण के लिए भी और किसान भाइयों के लिए भी। तो हम सब का दायित्व भी बनता है कि हम भी इस मधुमक्खी को कैसे सुरक्षित रखे और इसको बढ़ावा दे, ताकि न केवल किसान भाइयों का, पर जब पर्यावरण का लाभ होता है तो हम सबका भी लाभ होता है। क्योंकि अगर पर्यावरण ही खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। अभी दोनों ने कितने अच्छे से कहा कि हम सिखाने के लिए तैयार है, हम अपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए तैयार है, सब कुछ। तो अपन भी अपना अहंकार भूले और सीखने के लिए अपना मन खोले, दिमाग खोले, अच्छे से सीखे, तो आप ही का फायदा होगा, आपके परिवार का फायदा होगा। तो जितना लाभ आप लोग यहाँ कृषि विश्वविद्यालय से ले सकते हैं, जानकार किसान से ले सकते हैं, वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उसका लाभ लेंगे।
0: घर की महिलाएं भी पुरुषों के साथ काम में हाथ बटाएं तो परिवार की आय भी बढ़ेगी। इस अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ आप हैं कुलगुरु कृषि विश्वविद्यालय कोटा डॉक्टर कमला डोकवाल।
1: इंसान और इस ग्रह को अगर हम सही रखना चाहते हैं तो हमको मधुमक्खियां रखनी होंगी। तो हमें मधुमक्खियों को शांत भी बनाना है, उनको खाना भी देना है, उनके लिए सारा ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरह की जो भी टेक्निक है मिघवल साहब जो है वो आपको बताते रहते हैं, तो उस टेक्निक का प्रॉपर ध्यान रखें। और हम ये बात करते हैं कि ये जो मधुमक्खी पालन है ये उन किसानों के लिए है जिनके पास जमीन नहीं है, जिनकी जमीन हम ये बोलते हैं ना बहुत छोटी है, उससे बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है, तो वो एक तरह से अपना अगर साइड में हम कुछ काम करना चाहते हैं तो वो उसका काम अच्छे से कर सकते हैं। बाकी

0: आपको हम जैसे बीच बीच में समन्वित खेती प्रणाली होती है जिसके तहत आपको बताते हैं कि अगर हमको जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करनी है तो पशुपालन के बिना नहीं हो सकती है। तो हमको पशुपालन हमारा जीने का आधार भी है, और जिस घर में या जहां आसपास में पशु रहते हैं वहां की जो व्यक्ति होते हैं उनका एक पॉजिटिव, या हम ये कहें कि उनकी बॉडी जो होती है वो रिचार्ज अपने आप होती रहती है और अच्छा काम करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो हमने जितनी भी पढ़ाई करी तो हमें लगता है कि हमारी पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को उसका फायदा मिलता रहे। इसी तरह से जब हम किसी भी फायदे को जब हम पैसे से जोड़ते हैं तो ज्यादातर हम ये क्या कहते हैं कि वो पुरुषों का काम है ना। लेकिन अगर घर में कुछ काम करना है, जैसे मैडम का ये रहता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, एक ध्येय है कि जब तक घर की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, घर की महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, तो हमारा परिवार भी जो है वो थोड़ा सा आगे उतना विकास नहीं कर पाता है, बच्चे उतना संस्कारित नहीं हो पाते हैं। तो हमें दोनों को साथ मिलकर के ये काम करना है। और इस विश्वविद्यालय से जो भी आपको किसी भी प्रकार के सहयोग की किसी भी कार्य में जरूरत हो तो आप बिल्कुल यहाँ पे सहर्ष पधारें, हमें बताएं। जय हिंद, जय भारत।
1: कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए, और अंत में डॉक्टर बीएस मीणा, क्षेत्रीय निदेशक कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज कोटा, ने सभी आगंतुक अतिथियों को धन्यवाद दिया।
2: मान्य विधायक महोदय लाजपुरा क्षेत्र से, आपने जो हमारे किसान भाइयों को, हमारे वैज्ञानिकों को जो अनुग्रहित किए आपके अमूल्य सुझाव से, वह हम आगे भी उसको ध्यान में रखेंगे, काम में लेंगे। हमारे कुलगुरु महोदय जिनके हम मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिक यहाँ सभी उपस्थित है, इनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी आगे भी हमारे इसी प्रकार के कार्यक्रम को सफल बनाते रहेंगे। किसान भाई यहाँ पर उपस्थित है, कुछ कृषक महिला भी आई हुई है, तो आप लोग कभी भी ऐसा मत सोचना कि हम किसी भी कृषि को मांग बो, जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय चाहे कृषि विज्ञान केंद्र बोर्ड करना चाहो, चाहे यहाँ पर आओ आप, और अभी आज जो यहाँ पधारे उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और आप आगे भी इस कार्यक्रम से जुड़े, जैसा कि जो हमारे मेघवाल जी का जो आगे ज्यादा इस मधुमक्खी में अपन कुछ कमा सके, बड़ी बड़ी कंपनियां थे जो अपना शहद ना थोड़ा जो बेचा था ना, तो उन्हें प्रॉफिट में बिकवाने दिए, तो अपने एक कहीं भी भारत सरकार से कहीं भी ऐसी करे कि एक किसान की रेट डिसाइड हो जाओ ताकि किसान उसको राह वहां दे दे। मेरे अनुसंधान के सारे इस उम्मेदगंज कैंपस के अनुसंधान के टीचिंग स्टाफ, हमारे एमएफ के जो भी वैज्ञानिक है, मेरे जो भी जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो कॉन्ट्रेक्टर पर लगे हुए बेचारे कंधा से कंधा मिलाकर आज हम उनके कंधों पे ही काम कर रहे हैं कि आजकल ज्यादातर उन्हीं से हमारा सारी सेवा मिलती है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय भारत।
1: यह थी विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा पर आयोजित संगोष्ठी की क्षेत्र संकलित रिकॉर्डिंग पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। इसका निर्देशन तेजराम मीणा, संयोजन हिमांशु नामा, और प्रस्तुति सहयोग रहा नवीन कुमार चचैया का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में आयोजित संगोष्ठी की रेडियो रिपोर्ट, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे नवीन कुमार चचैया जी। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे फिल्मी संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

श्रोताओं कार्यक्रम में आपका स्वागत है और कार्यक्रम में पहला गीत विनोद राठौड़ की आवाज में फिल्म बाजीगर से, जिसे लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फिल्म खुद्दार से गीत, जिसे लिखा है राहत इंदौरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

साधना सरगम की आवाज में फिल्म विजय पथ से गीत जिसे लिखा है जमीर काजमी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सागर से, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है आर.टी. बर्मन ने।

श्रोताओं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाजों में फिल्म रॉकी से ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मेरे जीवन साथी से गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म मैं हूं ना से गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत ही समाप्त होता है। अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही समय में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार संध्या सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और

0: दर में अगले दो से तीन दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
1: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
0: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की CBI हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

0: का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक डॉलर के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM 102 और 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.3 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। श्रोताओं, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के हमारे खास कलाकार हैं कुनान गांजावाला। तो हो जाइए तैयार इस खास प्रस्तुति के लिए, फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत कुणाल गांजावाला की आवाज में, फिल्म क्रिस से, जिसे लिखा है विजय अकेला ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

कुणाल कांचावाला और ऋचा शर्मा की आवाजों में फिल्म सिंघम से ये गीत, जिसे लिखा है स्वानंद किरकिरे ने और संगीत दिया है अजय अतुल ने।

अगला गीत कुणाल गांजावाला, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म पार्टनर से गीत, जिसे लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

कुणाल गांजावाला और सुमिधि चौहान की आवाजों में फिल्म इंसान सी गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

कुणाल गांजावाला की आवाज में फिल्म मर्डर से ये गीत, जिसे लिखा है सैयद कादरी ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

अगला गीत कुणाल गांजावाला, शंकर महादेवन, सोनू निगम, हरिहरन, रूप कुमार और विजय प्रकाश की आवाजों में फिल्म लक्ष्य से ये गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: I experienced that too. I experienced that too. Oh my.
1: कुणाल कांजावाला और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म काल से गीत, जिसे लिखा है शब्बीर अहमद ने और संगीत दिया है सलीम सुलेमान ने।

कुणाल गांजावाला, सुमिति चौहान और आर्या की आवाजों में फिल्म फिर हेरा फेरी से गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

कुणाल गांजामाला, सोनू निगम और आकृति कक्कड़ की आवाजों में फिल्म चुपके चुपके से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

कुणाल गांजावाला जयेश गांधी की आवाजों में फिल्म अक्सर से गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ हम आपको नमस्कार करते हैं और हमें इजाजत दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी वादे के साथ लौटेंगे अगली बार। दीजिए आपके खास दोस्त ईशान को इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब आप आनंद लीजिए विविध भारती के कार्यक्रमों।

0: सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा बन जाता है। तब
1: भूल गया सब कुछ, भूल

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, पर हाँ मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।

मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोज

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्ही ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राण वायु है। ये तो उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार और थोड़ी ही देर बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व

0: विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organization at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
2: यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैज कंग्रेचुलेटेड प्राइम मिनिस्टर